आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस

0: रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ मातृवंदना से।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए सुनिए संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये रचना।
1: इट इज सेड दैट कबीर वाज मिरेक्युलस। कबीर टुक दिस एज हिज मंत्र।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए भर्तृहरि के वैराग्य शतक से पाठ।
1: भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता।

0: ना, हमने विषयों को भोगा नहीं, उल्टे विषयों ने ही हमको भोग दिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि तप ने ही हमें तपा दिया। हमने समय नहीं बिताया, किंतु समय ने ही हमें नष्ट कर दिया। इतना होने पर भी तृष्णा हमारी कम नहीं हुई, बल्कि हम वृद्ध हो गए। क्षान्तुम् न क्षमया गृहोचित सुखम् त्यक्तं न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह शीतवात तपन क्लेशान तप्तं तपः ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमित प्राणैर्न संभो पदं तत्तत् कर्म कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैफलैर्वञ्चितम्। क्षमा किया किंतु हमने असक्त होकर संसार का सुख छोड़ा, तब जब हम विवश हो गए। सर्दी गर्मी आदि सहन की किंतु तप न किया। धन का ध्यान किया किंतु भगवान का कभी ध्यान नहीं किया। हमने कर्म तो वो किया जो मुनियों द्वारा किए जाते हैं, किंतु हम फलों से हमेशा वंचित रहे। वलिभिर्मुखमाक्रांतम् पलितैरंकितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। मुंह में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। किंतु तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो अब भी युवा होती जा रही है। येनैवाम्बरखण्डेन संवीतो निशिचन्द्रमाः तेनैव च दिवाभानुः अहो दौर्गत्यमेतयोः। एक ही आकाश को नापने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हैं और दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, किंतु कोई भी इस आकाश को नापने में सफल नहीं हुआ। अवश्यम या तारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत् स्वयममून् व्रजन्तः स्वातन्त्र्याद् अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा इहेते श्रम सुखमनन्तं विदधति। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा तो मनुष्य उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देता? क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो हमें दुख होगा, और जब स्वयं ही उसे हम छोड़ देंगे तो हमें महासुख की प्राप्ति होगी। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वे कवि सबसे श्रेष्ठ हैं जो अनेक रसों में निष्णात हैं, ऐसी काव्य की रचना करते हैं जिससे अपने कीर्ति से उन्हें न तो बुढ़ापे का भय होता है न मृत्यु का भय होता है। ऐसे कवि हमेशा संसार में अमर होते हैं।
1: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रहे थे भर्तृहरि के वैराग्य शतक से पाठ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान।
2: एपिसोड 193 193

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। इसमें जमीन की सीमांकन की प्रक्रिया विषय पर जानकारी दे रहे हैं सौरभ कश्यप।
1: लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीमांकन के लिए चाहता है, सीमांकन के लिए आधार होता है कि उस व्यक्ति का वहां पे सर्वप्रथम तो कब्जा होना चाहिए। दूसरा आधार ये होता है, उस व्यक्ति को चौहद्दी का नॉलेज होना चाहिए कि उसके साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन किसान है करके, इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर प्रक्रिया में हम जाएंगे तो सीमांकन के लिए एक आवेदन लगेगा, साथ में उसमें टिकट लगता है, औसत 10 रुपए का टिकट उसके ऊपर लगता है, और साथ में खसरावार उसका अगर सीमांकन कराना है तो उस व्यक्ति का B1 में जो नाम है वही आवेदक रहेगा। आवेदक के साथ साथ उस खसरे के अनुसार उसको, उस आवेदन के अनुसार उस व्यक्ति को टैक्स पटाना पड़ता है। एक तरीके से टैक्स यूजुअली 50 से 100 रुपए के बीच में रहता है जमीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो टैक्स फिर हेड पे पड़ता है। उसके बाद फिर संबंधित व्यक्ति चालान पटाने के बाद, चालान बैंक में या तो जमा करे या तो ट्रेजरी ऑफिस में जमा करे, चालान की प्रति को संलग्न करेंगे और साथ में अपनी भूमि के दस्तावेज जो कि B1 हो गया और नक्शा, ये दोनों दे के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जैसे करते हैं तो उस आवेदन को दर्ज किया जाता है A12 हेड में। आवेदन को दर्ज करने के बाद फिर एक ज्ञापन निकलता है RI के लिए तहसीलदार के माध्यम से कि अमुक अमुक व्यक्ति है, ये उसका खसरा है, और उसकी सीमांकन रिपोर्ट सीमांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करे करके। RI जैसे वो ज्ञापन उनके पास आता है, RI के माध्यम से उस भूमि के आसपास एडजेसेंट जितने फार्मर्स हैं उनके लिए एक इश्तिहार निकलता है, नोटिस निकलता है। नोटिस के माध्यम से उनको बताया जाता है कि इस दिनांक को सीमांकन प्रस्तावित है, आप सब यहाँ पे उपस्थित रहें करके। तो ये नोटिस जरूरी होता है कि आसपास के लोग उपस्थित रहें क्योंकि वो भी एक आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। उसके बाद फिर पटवारी और RI दोनों का जो गठित दल है उसके माध्यम से सीमांकन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। जरीब से यूजुअली नापा जाता है, एक जरीब 67 स्क्वायर फीट के अनुसार होता है, 20 मीटर के आसपास, तो उसे अनुसार पे नापा जाता है। अब सीमांकन प्रोसेस जैसे होता है तो वो सीमांकन प्रतिवेदन आता RI के माध्यम से तहसीलदार के पास है। तहसीलदार एक प्रति किसान को देते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध करते हैं। ये पूरा सीमांकन का प्रोसेस होता है। लेकिन इसके लिए सबसे प्रमुख बात यह है, उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति सीमांकन का प्रतिवेदन दे रहा है, उनका वहां पे कब्जा होना चाहिए, या उस व्यक्ति को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आसपास और कौन कौन व्यक्ति हैं। बिना पर्याप्त जानकारी के कई बार सीमांकन करना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर क्योंकि गांव के परिवेश में हमें तो सबको पता होता ही है। इसमें जो हमारे राजस्व से संबंधित है वो हम उसी की ही बात करें। सबसे पहले तो एग्रीस्टैक, क्योंकि अभी के टाइम में डिजिटल जो पूरा एक परिवेश बना है, एक पूरा इकोनॉमी ही डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो हर किसान को एक फार्मर ID बनाना बहुत आवश्यक है। उसका मेन कारण ये है कि ग्रामीण परिवेश में कभी भी सोसाइटी में मिडिल मैन लोग का इंटरफेरेंस बहुत होता था, बीच के लोग जो किसान से अलग दाम पे खरीदते थे और उसके बाद फिर इधर बेचते थे।

0: लेकिन जब से डिजिटल क्रांति आई 2016-17 के बाद से, तो अभी फेस ऑथेंटिकेशन और थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होता है। तो वही व्यक्ति धान बेच पाता है जिसका वो खेत है, जिसके नाम पे वो खेत है, बिना उसके वो नहीं बेच पाता। उसी तर्ज पे अगर हम देखें तो अगर फार्मर आईडी बनता है, वो व्यक्ति नहीं भी अगर रह पाए, नहीं भी अगर अपना जमीन की जानकारी बता पा रहा है, तो भी फार्मर आईडी के माध्यम से हम भुइयां को पूरा फेच कर सकते, भुइयां का डेटा को फेच कर पाएंगे और धान खरीदी में वो चीज़ उपयोग में लाया जाएगा। फार्मर आईडी में ही कि अब किसान के साथ फोटो भी खिंचाना पड़ता है। एक पटवारी अगर फील्ड में जा रहा है तो किसान और उसके खेत के साथ उसे फोटो भी खिंचाना पड़ रहा है। तो ये एक पारदर्शिता की तरफ पहल है। दूसरा चीज होता है कि फार्मर आईडी के माध्यम से हम पीएम किसान में भी रजिस्टर कर सकते हैं। पीएम किसान के अनुसार हर एक किसान को एक मिनिमम एक सपोर्ट प्राइस उसको एश्योर किया जा रहा है, 6000 एक वर्ष का, वो भी 3 किश्तों में। तो इसके लिए एक तरीके से किसान के लिए ये चीज़ फायदेमंद होता है कि अगर वो एक आईडी बना रहा है उससे समायोजित और योजनाओं में भी उसको लाभ मिल रहा है।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विषय था जमीन की सीमांकन की प्रक्रिया और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सौरभ कश्यप। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10 बजे सुनिएगा कर्नाटक गायन में MSN मूर्ति का कर्नाटक वायलिन वादन और स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में वंचितों को वरीयता सुनिएगा रात 9:25 पर। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। और देश की वाणी आकाशवाणी में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक खटवार। बच्चों के कार्यक्रम किसलय में सुबह 8:30 पर बच्चों की डायरी का विषय होगा कोई भूखा ना सोए ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही होगी शिक्षा और संस्कार हमारी धरोहर इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती मंजू चौरसिया और होंगे क्रम प्रेरक प्रसंग और बाल गीत। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिएगा साप्ताहिक खेल समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच संतोष चंद्राकर से भेंट वार्ता। प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। आकारहीन घरौंदे परिवार नियोजन पर आधारित ये नाटक सुनिएगा सुबह 10:30 पर। लेखक और प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री उमा शंकर पंडा और प्रस्तुति सहायक प्रभा डामोर। दिन के 11:05 पर समय होगा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश का। आप मन के गीत दोपहर 12:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में दोपहर 1:30 पर आज की बात का विषय होगा खाद्य पदार्थों को व्यर्थ बर्बाद न करें और होंगे क्रम आपकी रसोई से और गीत संगीत। साथ ही टिप्स में चर्चा के विषय होंगे आय अर्जन हेतु स्वरोजगार घर पर ही और बच्चों की पढ़ाई खेल खेल माँ। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आज मेरी बारी है मैं आज आप सुनेंगे रूपल आसुदानी को। साथ ही होंगे

0: तरह ने। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में आज सुनिएगा बिलासपुर जिले की चिट्ठी। कानून की बात में शाम 6:30 पर संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से होगी बातचीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की होगी। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल मा ट्राइकोडर्मा विरडीले रोग प्रबंधन। और आज की सलाह का विषय होगा वर्षा जल संरक्षण एवं शून्य भू परिष्करण। और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर के साहू। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा 9:15 पर, 10:00, 1:05 पर, 2:00, 2:30 पर, 7:00, 8:00 और 9:15 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं।

0: श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्वलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक

0: परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षो में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं नमस्कार। तमाम सुनने वालों का कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में स्वागत, अभिनंदन। और आज का सफर आप तय करेंगे दीपा के साथ।

से जागती रविवार की सुहानी सुबह, पुरवाई के झोंके, आम्र वाटिका में गूंजती कोयल की मधुर कूक, ऋतु परिवर्तन की आहट, नव श्रृंगार किए प्रकृति मानो स्वयं बाहें फैलाए आतुर है स्वागत में, और ऐसे में मन अनायास ही गुनगुनाने लगता है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी की ये यात्रा शुरू हुई थी 8 जून 2025 को। पूरे एक साल के सफर में आकाशवाणी के लिए समर्पित अनेक प्रसारकों और कलाकारों से हमने बातें की, उनकी यादों के पन्नों को पलटकर अतीत की कई उपलब्धियों के साथ आकाशवाणी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों को याद किया। आज इस श्रृंखला की ये आखिरी कड़ी है। ये कड़ी जरूर अंतिम है, मगर हमारे सुधी श्रोताओं के अपार स्नेह के साथ आकाशवाणी की ये स्वर सरिता अनवरत बहती रहेगी मधुर ध्वनि तरंगों के संग। तो देश की वाणी आकाशवाणी के इस समापन कड़ी में आज की हमारी खास मेहमान हैं, बड़ी ही मीठी आवाज की धनी, जिनके नाम से आकाशवाणी रायपुर के श्रोता बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप हैं आकाशवाणी की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक, आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: कल्पना जी, आपका ये जो नाम है ना, आकाशवाणी रायपुर के श्रोताओं के जहन में आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ गूंज रहा है, आज भी उन्हें याद है, और जब भी वे आपके इस नाम को याद करते हैं उस दौर के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम उन्हें याद आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी रायपुर से आपका जो जुड़ाव है ये कितना पुराना है?
1: अब ये कहो कि मेरा रेडियो से संबंध बहुत पुराना है। जब मैं पढ़ा करती थी ना दीपक, तभी मैं सोचा करती थी कि मैं जाऊंगी तो रेडियो में ही जाऊंगी। तो मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और रेडियो में मैंने आकाशवाणी रायपुर ज्वाइन किया 75 में।
0: तो उस समय आप किस रूप में यहाँ आते थे, मतलब नियमित उद्घोषिका के रूप में आप ज्वाइन की थी या फिर किसी और कार्यक्रम में आती थी?
1: ना, पहली बार मुझे यहाँ पर सहायक केंद्र निदेशक थे महेंद्र, तो उन्होंने मुझे एक कहानी पढ़ने के लिए बुलवाया था
0: जी।
1: वो कुंतला गोयल जो अंबिकापुर की थी, अपने जमाने की बहुत वरिष्ठ कहानीकार थी, बहुत साहित्यकार थी, वो ऊंची बहुत ऊंची साहित्यकार थी, तो उनकी कहानी उन्होंने मुझसे पढ़वाई थी और उसका रिहर्सल उन्होंने अपने सामने करवाया था। तब दीपक मुझे कहानी कैसे पढ़ी जाती है ये मालूम हुआ कि कहानी पढ़ने का भी एक ढंग होता है रेडियो में।
0: ये किस सन की बात होगी?
1: तब मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, ये बात है 74 दिसंबर की।
0: बहुत पुरानी बात।
1: मेरा अपॉइंटमेंट जनवरी में हुआ था 75 में, और शादी हुई मेरी दिसंबर में।
0: बहुत पुरानी बात है कल्पना जी। तो इस कहानी के बाद सीधे आप अनाउंसर बनकर आकाशवाणी में आ गई?
1: हाँ जी। तो इस कहानी के पीछे भी एक वाक्या जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: मैं कहा करती थी ना कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और लकीली जगदलपुर, ग्वालियर और रायपुर के लिए जगह निकली थी उद्घोषकों के लिए, और इसका इंटरव्यू हुआ था आकाशवाणी भोपाल में। तो वहां पे जितने भी उम्मीदवार थे वहां पर गए, और वहां से हमें चयनित किया गया रायपुर के लिए, और हमसे पूछा भी गया था कि अगर आपको हम ग्वालियर दे दें या जगदलपुर दे दें तो क्या आप जाएंगे? तो हमने बड़ी शान से कहा कि सर, हम नौकरी करने के लिए निकले हैं, तो हम तो जाएंगे। अगर आप ग्वालियर भेजेंगे तो हम ग्वालियर चले जाएंगे, आप जगदलपुर भेजेंगे तो हम जगदलपुर चले जाएंगे। मगर मुझे उन्होंने रायपुर ही दे दिया।
0: तो कल्पना जी, उस दौर में जब आपने जनवरी 1975 में उद्घोषक के पद पर यहाँ आकाशवाणी रायपुर में अपने कार्यों की शुरुआत की, तो यहाँ पर और कौन कौन लोग हुआ करते थे?
1: अरे, हमारे जमाने के मतलब बहुत ही प्रवीण उद्घोषक हुआ करते थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं नाम बता रही हूँ दीपक तुम्हें, आदरणीय किशन गंगेले जी, आदरणीय लाल राम कुमार सिंह जी और आदरणीय मिर्जा मसूद जी। इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इनसे मैंने सच में बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा।
0: ये तो तीनों आकाशवाणी रायपुर की वो त्रिमूर्ति हैं जिन्हें प्रसारण में लेजेंड माना जाता है आकाशवाणी रायपुर के प्रसारण के लिए, तो इनके साथ में कौन कौन से प्रोग्राम आप किया करती?
1: मैंने सबके साथ सभी कार्यक्रम किए हैं, और जैसे आपके पत्र, आपके मीत, ये गीत, अजी सुनिए, और जब मिल बैठे हम, और मैं बिंदिया, मैंने ना बहुत सारे कार्यक्रम भूल रही हूँ, हाँ एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था किसलय उस
0: जी,
1: समय
0: जी जी। अच्छा कल्पना जी, आप तो नाटकों में भी भाग लिया करती थी?
1: हाँ नाटक में भी मैं काम किया करती थी, और बी हाई ग्रेड था मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरा, पहले तो बी हुआ करता, उसके बाद बी हाई ग्रेड इसको बोलते हैं अपन, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था।
0: कल्पना जी, जिस वक्त आप आकाशवाणी में आई उद्घोषक के रूप में
1: जी,
0: सन 1975 के बाद की अगर दौर की बात करें तो वो वाकई रेडियो का ही दौर था, और रेडियो के अलावा कोई और माध्यम लोगों के घरों में हुआ नहीं करता था, तो उस वक्त किस तरह का चार्म था रेडियो का, रेडियो के प्रति लोगों की रुचि, और रेडियो में जो प्रसारक हुआ करते थे उनके प्रति लोगों का जो लगाव हुआ करता था, उसके तो बड़े किस्से हुआ करते थे उस जमाने में। आपके साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी?
1: दीपक तुमने सच में बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया ये। जब मैं तब, तुम्हें पता होगा कि पहले ट्रांसमीटर से हमारा कार्यक्रम हुआ करता था, स्टूडियो नहीं बना था
0: जी,
1: है ना?
0: जी,
1: तो हम आपके मीत ये गीत पेश किया करते थे, जब हमारी ड्यूटी होती थी या यह होती थी तो बहुत से ऑफिस के सब लोग ना बाहर निकल जाया करते थे पान की दुकान पर
0: जी,
1: और सुना करते थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और श्रोता भी इंतजार करते थे कि आज कल्पना जी आने वाली है, वगैरह वगैरह जो भी हुआ करते थे। और दीपक,

0: अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत से लेटर भी, आशिकाना लेटर भी आते थे कुछ होता कुछ होता लिखते थे कि आप अपनी फोटो भेजिए, हम दिल से लगा के रखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, और बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप मेरी बहन के जैसे हैं, और किसी ने कहा कि मैं आपकी फोटो दिल से लगा के रखूंगा और मतलब अब मैं क्या बताऊं, मुझे श्रोताओं से बहुत बहुत बहुत प्यार मिला दीपक, बहुत प्यार मिला।
1: कल्पना जी, वो दौर ही वाकई रेडियो का एक सुनहरा दौर था, और उस समय में तो टेलीविजन लोगों के घरों में था भी नहीं। टेलीविजन तो 80 के बाद फिर लोगों के घरों में आया, जब हमारे यहाँ एशियाड 82 के बाद। अगर टेलीविजन के आने के बाद भी रेडियो का एक चार्म तो बना ही हुआ था, खासकर
0: अभी भी है जो शौकी है वो रेडियो के अलावा दूसरा कुछ सुनते ही नहीं है।
1: बिल्कुल। कल्पना जी, ये होता है ना कि एक उद्घोषक जब आकाशवाणी के कैंपस में अपने कार्यक्रमों में पूरी तरह से समर्पित होकर श्रोताओं के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश करते हैं, तो उस कार्यक्रम को सुनने के बाद में उनकी एक छवि बनती है श्रोताओं के मन में, चारों तरफ चारों दिशाओं में उनके नाम गूंजते हैं, उनके कार्यक्रम गूंजते हैं, और उसके बाद जो वो व्यक्ति जब आकाशवाणी कैंपस से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, किसी यात्रा में जाता है, किसी से मुलाकात होती है, और उस वक्त जब लोगों को पता चलता है कि मैं तो कल्पना यादव जी के सामने खड़ा हूँ, तो कैसा लगता था श्रोताओं को उस समय आपसे मिलकर?
0: दीपक, वाकई में तुमने जो ये यादें, सुनहरी यादें दिलाई ना, यकीन मानो मैंने रोंगटे खड़े हो गए हैं। कई वाक्य हैं ऐसे बहुत सारे, मतलब मेरे सामने ऐसे जिंदगी के लम्हे हैं जिन्हें मैं भुलाई नहीं भूलती। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा, तब मेरा बेटा 7-8 साल का रहा होगा
1: जी,
0: हम ट्रेन से आ रहे थे, तो एक आदमी, एक सज्जन जो है, मुझे बहुत घूरे जा रहे थे।
1: अच्छा जी।
0: तो बेटे को बहुत गुस्सा आया, वो मेरे पास आ गया, बोला माँ ये आपको क्यों घूरे जा रहा है, तब ये 7-8 साल का ही रहा होगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि बेटा हमें क्या मालूम है क्यों घूर रहा है। इतने में वो व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल्पना यादव हैं? मैंने कहा कि जी हाँ मैं कल्पना यादव हूँ। तो बोले कि हम आपके कार्यक्रम सुनते हैं, आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं क्या बोलूं, मतलब वो शब्द भी याद नहीं है और अपने मुंह से अब क्या बोलना उन शब्दों को, पर एक यादगार तो रहती है। एक वाक्य ये मुझे बहुत, मतलब बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगता है कि उस जमाने में, फिर बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कि देखो वो इसलिए मुझे घूर रहे थे।
1: अच्छा कल्पना जी, जिस वक्त आकाशवाणी रायपुर में एक से बढ़कर एक ड्रामा बना करते थे, झलकियां हुआ करती थी, पत्रोत्तर के कार्यक्रम में भी आप भाग लिया करती थी, और ट्रांसमिशन ड्यूटी भी आप किया करती थी, है ना? और ट्रांसमिशन ड्यूटी तो इंसान को वक्त का बड़ा पाबंद रहना सिखाती है,
0: बिल्कुल,
1: खासकर मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सुबह की सभा में, बिल्कुल जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक अनाउंसर जाग कर बिल्कुल सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक आकाशवाणी पहुंच जाता था। और इस ट्रांसमिशन ड्यूटी में भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बड़ी एडवेंचर क्रिएट करने वाली घटनाएं होती, कि आप, पता चल रहा है कि कई बार हम विलंब से पहुंचे और कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले पहुंचे, तो इस तरह की कभी कोई घटना आपके साथ घटी है क्या?
0: एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि मेरा घर तो बहुत पास था, जब ये स्टूडियो की बात है, जब अपना सिटी में ट्रांसफर हो गया था, ये वाला अपनी बिल्डिंग बन गई थी आकाशवाणी की
1: जी,
0: तो मेरी दीपक तुम यकीन मानो 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, ओपनिंग होने के पहले
1: जी,
0: मैं जिस ड्रेस में थी, जिस नाइट सूट में थी, मैं भागे भागे वहां पर गई ना, और उसमें ही मैंने ओपनिंग किया और पूरा शहनाई वादन वगैरह जो जो होता है अपना
1: जी,
0: पूरा ओपनिंग किया, और उसके बाद मैंने ड्यूटी ऑफिसर से बोला कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं घर से तैयार होकर आती हूँ। तब तक वो कार्यक्रम भोपाल से रेले हुआ करता था।
1: अच्छा, फिर आप घर गई वापस?
0: मैं घर वापस गई
1: जी,
0: फिर तुरंत तैयार होकर फिर मैं वापस आई।
1: कल्पना जी, हमने सुना है कि आपका जो परिवार है वो फौजी परिवार रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: दीपक, हमारी शादी की बात चल रही थी, 76 में हमारी शादी हुई, 74

0: से तो ये एक बार ऐसे देखने के लिए आए और इनको मालूम था कि मैं रेडियो में कैजुअल जाती हूँ और ये करती हूँ, तो ये गाना हरदम ये लगा दिया करते थे, पल पल तुम दिल के पास रहती हो, है ना। जब शादी हुई तो अब हम एक बार गए फील्ड पे, फील्ड पे स्टेशन में फैमिली नहीं रख सकते हैं दीपक
1: जी, जी।
0: मगर 2 महीने या 1 महीने के लिए फील्ड स्टेशन खोल देते हैं फैमिली को आने के लिए। तो हम लद्दाख गए, वहां पर जो हमारा मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया जिसकी कोई हद नहीं है, मेरी और कर्नल यादव की तो ऐसी बैंड बजाई उन्होंने और हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
1: अच्छा।
0: बोले मिसेज यादव, यदि वहां पे मिसेज यादव फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं
1: जी,
0: में मिसेज यादव, बोले मिसेज यादव ये जो है ना आपका कार्यक्रम जो आप रात को 10 बजे पेश करती हैं, कौन से दिन मनचाहे गीत हुआ करते थे ना
1: जी जी जी,
0: तो बोले कि ये ना ट्रांजिस्टर लेके घूमते रहता है इधर से उधर इधर से उधर। और वो वाकई में दीपक ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो कौन कौन से गाने बजाए ये लिस्ट भेजा करते थे हमारे लेकर।
1: अच्छा, वो पूरा हिसाब किताब रखते थे। अच्छा जी,
0: तो बहुत बहुत ही मतलब मजेदार। और मेरे साथी जैसे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा है
1: जी,
0: मंडलोई जी हैं और तेजिंदर सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये हम सब हम उम्र थे ना, तो इन लोग चिढ़ाया भी करते थे, कल्पना ये वाला गाना बजाना, हाय हाय ये मजबूरी
1: जी,
0: तेरी 2 टकिया की नौकरी पे मेरे लाखों का सावन जाए
1: जी,
0: ना
1: जी जी।
0: बहुत अच्छा समय था दीपक।
1: अच्छा कल्पना जी, ये बताइए कि कर्नल यादव साहब रेडियो के शौकीन जो हैं, वो आपकी शादी के बाद बने या पहले से थे?
0: शादी के बाद, जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना तो मुझे मालूम था कि मैं रेडियो में काम मतलब कैजुअल जाती हूँ, है ना। तो वो ना फिर एक बार आए रायपुर
1: जी,
0: तो वो ट्रांजिस्टर वगैरह साथ लेकर आए।
1: अच्छा।
0: कब बोलती है, कब क्या करती है, ये है। और फिर इनको लोग चढ़ाया भी करते थे, अरे यार तू तो फौज में जाता है ना, ड्रिल में भी ट्रांजिस्टर लेके जाया कर।
1: अच्छा।
0: इस तरह से ना बहुत अच्छा समय गुजरा।
1: तो ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी आपका शुक्रगुजार है कि शादी करके आपने एक श्रोता बढ़ा दिया।
0: बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे दीपक बहुत प्यार मिला, बहुत
1: जी,
0: प्यार मिला
1: जी,
0: मुझे
1: जी,
0: बहुत प्यार मिला।
1: कल्पना जी, हर आकाशवाणी के कर्मचारी के जीवन में, प्रस्तुतकर्ता के जीवन में एक दिन वो भी आता है जब उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है। हाँ। तो आपकी सेवा का जो आखिरी दिन था वो कौन सा था और आपको उस वक्त कैसा लग रहा था?
0: मैंने ना प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था, मेरे सर्विस के 10-12 साल थे
1: जी,
0: तो तब मैंने ट्रांसफर भोपाल करवा लिया था कि भोपाल में हम लोग सेटल होने वाले थे।
1: कितने साल रहे आप भोपाल में?
0: भोपाल में मैंने मुश्किल से 2.5-3 साल काम किया।
1: अच्छा,
0: मुश्किल से 2.5-3 साल।
1: तो भोपाल के बारे में भी कुछ बताएं हमारे श्रोताओं।
0: हाँ, बड़ी सुहानी यादें भोपाल।
1: अच्छा।
0: से भी मुझे मिली, रियली कह रही हूँ, बहुत सुहानी, हालांकि मैंने बहुत कम काम किया लेकिन प्यार भी मुझे बहुत मिला। और उसका फाइनल फेयरवेल जो होता है
1: जी,
0: मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इतने कम समय में मुझे भोपाल का भी बेहद प्यार मिला, बहुत प्यार मिला।
1: वो कल्पना यादव जी जिनकी आवाज वर्षों आकाशवाणी रायपुर में गूंजती रही, फिर यही खूबसूरत आवाज करीब 3 सालों के लिए भोपाल चली गई, आज उम्र के इस पड़ाव में जब आप आकाशवाणी की अपनी संपूर्ण यात्रा को याद करती हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: सच में जब तुम अभी ये बोल रहे हो ना, पूछ रहे हो मुझसे, तो यकीन मानो मेरी पोती मेरे सामने बैठी है
1: जी,
0: वो मेरी आंखों में मतलब मेरी आंखें डबडबा आई है। मतलब मैंने जिसने मैं ये सोचा था कि मैं करूंगी सर्विस करूंगी तो रेडियो में ही करूंगी, नहीं तो शादी तो होनी है और वो भी ऑफिसर से ही होगी ही होगी
1: जी, जी।
0: मतलब जो मैंने चाहा मुझे जिंदगी में वो सब कुछ मिला, वो सब कुछ मिला मुझे
1: जी, जी।
0: और मैं जो मेरे साथी इस दुनिया में है नहीं है उनको भी मैं बहुत याद करती हूँ, जो हमारे समय के थे वो तो तुम जानते हो दीपक
1: बिल्कुल
0: सब एक
1: बिल्कुल,
0: एक करके बिल्कुल, बिल्कुल, चले गए, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था,
1: जी,
0: जो
1: जी,
0: बताया
1: जी,
0: था
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: जो माहौल हमने देखा है, जो एक जो अपनापन था, मुझे गंगेले जी ने बहुत कुछ सिखाया, लाल राम कुमार सिंह जी ने खूब सिखाया, मिर्जा मसूद ने अलग सब कुछ अलग अलग सिखाया, तीनों उद्घोषकों से मैंने कुछ न कुछ अलग अलग अलग सीखा।
1: जी जी, तो इन दिनों कल्पना यादव जी का जो समय है वो कैसे बीत रहा है?
0: देखो, ये प्रतिभा मुझ में नहीं मालूम थी कि मुझ में है
1: जी,
0: कि मैं कुछ लिख सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ। मुझे पढ़ने का शौक शुरू से रहा है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी।
0: तो और पढ़ना भी पड़ता था थोड़ा बहुत, तो तुम तो जानते हो स्क्रिप्ट बनानी है या ये करनी
1: बिल्कुल,
0: है थोड़ा
1: बिल्कुल,
0: बहुत है ना
1: जी, जी।
0: तो और बस, अब तो मेरी पोती है, पोती के साथ समय बहुत अच्छा गुजरता है
1: जी,
0: और हम दोनों में खूब बातें भी होती हैं, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना उस तरह से हमारी बातें होती हैं।
1: अच्छा।
0: बहू बेटा है, उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजर जाता है
1: जी।
0: फौजी क्लब है, फौजियों के साथ हमारे पुराने संबंध है कर्नल यादव के, तो बस उनके साथ बहुत अच्छा संबंध गुजर जाता है। कभी रायपुर का चक्कर लग जाता है, कभी मेरठ का चक्कर लग जाता है
1: जी।
0: और भोपाल में तो रहना ही है बच्चों के साथ।
1: बिल्कुल, तो कल्पना जी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस खुशी के साथ आपने आकाशवाणी रायपुर की स्मृतियों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया है वो खुशी सदैव आपके चेहरे पर बनी रहें, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आकाशवाणी रायपुर को इस कार्यक्रम के लिए आपने अपनी ढेर सारी पुरानी यादों के साथ बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, देश की वाणी आकाशवाणी की इस लंबी श्रृंखला में हमारी कोशिश यही रही है कि हम देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े प्रसारकों और कलाकारों से उनकी सुनहरी यादें ताजा करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे श्रोताओं का जो स्नेह और उत्साहवर्धन हमें मिला है वो अविस्मरणीय है। इसके लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। तो अब अपने दोस्त दीपक हटवार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक खटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं नमस्कार रायपुर। देश की वाणी आकाशवाणी के साथ ही आइए अब खो जाते हैं इस गीत में।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात आरोग्य सबसे बड़ा सौभाग्य है, स्वास्थ्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए हर दिन हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषण के साथ साथ सुरक्षा भी बेहद जरूरी होती है। खाने में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। श्रोताओं, WHO के अनुसार खराब खाने की वजह से दुनिया भर में लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। वहीं रोजाना 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 340 बच्चे खराब क्वालिटी के खाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो एक चिंता का विषय है। और श्रोताओं, इसी महत्वपूर्ण विषय पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित और स्वच्छ भोजन हमारी सेहत और जीवन की आधारशिला है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति तक सुरक्षित और पोषक आहार पहुंचे। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया, विषैले पदार्थ, रसायन, अशुद्धताएं अनेक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, कैंसर और भी बहुत से रोग। साथ ही इसका उद्देश्य सरकारों, उत्पाद कंपनियों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को जागरूक करना है कि भोजन की पूरी प्रक्रिया उत्पादन से लेकर उपभोग तक में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। तो श्रोताओं, स्वच्छ, साफ सुथरा, ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ले, फिर रूखी सूखी रोटी भी अपना ही मज़ा देगी।

श्रोताओं, रेडियो संचार का एक बेहतरीन माध्यम है और आवाज़ वो जरिया है जिसके द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं। आवाज़ अगर साफ हो, सच्ची हो, तो दिल तक पहुंचती है। पर आज दौर ऐसा आ चला है कि आवाज़ के साथ छेड़छाड़ और छल भी किया जा रहा है और इसके दुष्प्रभाव से कई लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कुछ सेकंड्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति की लगभग हूबहू नकल संभव है। एआई से आवाज़ की नकल कर ठगी का नया जाल बिछाया जा रहा है, जो साइबर अपराधों की श्रेणी में एक नया तरीका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं और इसमें सबसे चिंताजनक तरीका है वॉइस क्लोनिंग का, यानी किसी व्यक्ति की आवाज की कृत्रिम नकल तैयार करना। इसके माध्यम से परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को धोखा देकर पैसे ऐंठने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। श्रोताओं, मुद्दे की बात यह है कि जब कभी ऐसे कॉल्स आए तो हम उसकी जांच जरूर कर ले, हो सके तो उस आवाज के व्यक्ति को फोन करके सत्यता जांच ले, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम बड़ी समस्या से बच सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझे, त्वरित बुद्धि का सही इस्तेमाल करे और ऐसे साइबर धोखे से बच के रहे, संभल कर रहे।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, मॉनसून केरल पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसकी आमद होगी। मॉनसून के स्वागत में किसानों की आंखें खुशी से भर उठती है। नदी नालों, कुओं, झरनों की प्यास बुझती है। पशु पक्षी भी आह्लादित हो उठते हैं। पर हमें यहीं पर एक समस्या की ओर भी ध्यान देना होगा। समस्या पानी की है। पानी, वो भी भूजल यानी धरती के नीचे के पानी की समस्या। इस वर्ष हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर की स्थिति काफी दयनीय रही। पानी का संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल का विवेकपूर्ण उपयोग हम पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते। जंगल बेतहाशा कट रहे हैं, पर उस अनुपात में पेड़ नहीं लगाए गए। श्रोताओं, ये बात हर मंच से कही जाती है, बार बार कही जाती है, पर फिर भी इसे बार बार कहना होगा कि हम सभी पेड़ लगाएं। पेड़ ऑक्सीजन का संचार करते हैं, पेड़ मौसम बेहतर करते हैं, पेड़ प्रदूषण कम करते हैं। और तो और श्रोताओं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो अभियान चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम। श्रोताओं, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या अल नीनो का असर, इन्हें अगर कोई कम कर सकता है तो वो है बेहतर पर्यावरण और लगातार लगते पेड़। तो श्रोताओं, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जल के संकट का सामना न करें, अगली गर्मियों में भूजल स्तर निम्नतर ना हो जाए, हमें ऐसी गंभीर बात पर सोचना होगा। श्रोताओं, हम हर स्तर पर हमें पहल करनी होगी। हम सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, सिर्फ यही एक उपाय हमें राहत दे सकता है। तभी तो हम ऐसे सुंदर गीत भी सुन सकेंगे।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, जो आपके लिए पेश किया आपकी रेडियो दोस्त दीपा ने। तो श्रोताओं, अब दीजिए इजाजत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिए और पेड़ जरूर लगाएं। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवार

0: अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया

0: संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
6: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
7: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
5: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
8: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely

बच्चों जय हिंद। सभी नन्हे मुन्नों को अरुणा दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों इस तपती गर्मी में अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं, नहीं नहीं अगर बाहर निकलने की बहुत जरूरत पड़ ही जाती है ना, तो अगर हमें एक मिनट के लिए भी अपनी साइकिल कहीं रखनी हो तो छाया खोजते हो, है ना भाई। तपती गर्मी में तो साइकिल नहीं रखेंगे हम, देखते अक्सर कहीं छाया मिल जाए और फिर वो छाया हमें मिलती है पेड़ के नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा पेड़ मिल जाता है जहां हम अपनी साइकिल गाड़ी रख सके, है ना। तो भाई कई बार ना पेड़ों के नीचे ही, और इन दिनों खास करके तो आपको राहगीर भी खड़े हुए मिल जाते हैं पेड़ों की छाया तले, कितनी ठंडक लगती है बच्चों, है ना। सचमुच पेड़ों का सबसे ज्यादा महत्व तो इन्हीं दिनों समझ आता है, और इसलिए तो हम यही कहेंगे बच्चों की खूब पेड़ लगाइए और अपनी धरती को हरा भरा कीजिए। और अगर इन पेड़ों में कोई पेड़ आम का मिल जाए और ऊपर से दो चार आम टपक पड़े तो उसे उठा लेते हो ना, फिर उस आम को चाहे कच्चा खा ले या चटनी बना ले या पना, सब कुछ बेहद सुकून देता है ना बच्चों। यानी कि पेड़ों से मिली हुई खाने की चीजें जो रहती है वो बिल्कुल सुरक्षित होती है, चाहे वो आम हो, सेब हो, अंगूर हो और भी बहुत कुछ, है ना। और ये सब सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है बच्चों। और भाई सुरक्षित खाना जो है वो तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। कई बार कुछ लोग थाली में ज़्यादा खाना खा ले लेते हैं खाने के लिए, है ना, और पेट भर जाने के बाद उस खाने को फेंकने की तैयारी में लग जाते हैं भाई, तो ये बड़े दुख की बात है बच्चों। हमेशा याद रखिए, अगर आपको भूख लगी है ना तो उतना ही थाली में ले जितनी की आपको आवश्यकता है, और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाए, खाने को बर्बाद न करें। आखिर कोई भूखा न सोए ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है बच्चों। और आज है 7 जून, क्या आपको पता है 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष 2026 का विषय है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यानी हमें शुद्ध और ताजा खाना तो खाना ही है, साथ ही उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो बीमार है या गरीब है, उन्हें भी ताजा शुद्ध भरपेट खाना मिले। जब भी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाए बच्चों तो फल जरूर साथ लेकर के जाए। हम अपने दोस्तों का तो खूब ध्यान रखते हैं, और ध्यान इस बात का भी रखना है कि कई बार खाने के अभाव में बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो कभी ऐसे बच्चों के बीच भी हमें खाने पीने की चीज़ें वितरित करना चाहिए, तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी, है ना। तो वादा करिए आप ऐसे अच्छे अच्छे काम ज़रूर करेंगे। और भाई अब आपसे बातें तो हो गई ढेर सारी, अब उन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की बारी है जो स्टूडियो में हाजिर है कुछ सुनाने के लिए। तो चलिए सुनते हैं बच्चों के मुख से।

0: नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते दीदी।
0: भाई बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे बीच आ चुके हैं और सभी आपको कुछ ना कुछ सुनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक ये जो सबसे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका?
2: अभिज्ञा अभिनव शुक्ला।
0: अभिज्ञा आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
2: पहली में।
0: वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि अभी आप अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को क्या सुनाने जा रही हो?
2: श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक।
0: अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। ये श्रीमद् भगवद गीता क्या है जानती हो आप?
2: हाँ।
0: क्या है
2: इसमें? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये जो आप सुनाने जा रही हो श्लोक, कौन से अध्याय के श्लोक है?
2: 12वां अध्याय के।
0: हाँ तो चलिए सुनाइए।
2: ओ

मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धि निवेशयो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्।

0: मुक्तो सच में प्रिया।
1: बहुत बढ़िया आपने सुनाया अभिज्ञा, तालियां हो जाए भाई अभिज्ञा के लिए। अभिज्ञा और क्या क्या आता है आपको, और ये आपने कहाँ से सीखा बताइए जरा।
0: संस्कार।
1: संस्कार शिविर, बहुत अच्छा। देखिए अभिज्ञा जो है अपनी छुट्टियों का कितना अच्छा उपयोग कर रही है और अपने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें समझ रही है, जान रही है। तो भाई ये सब चीजें समझना और जानने का तो अधिकार होता है, आप भी यह सब चीजें कर सकते हैं बच्चों। और अब आपकी एक और नन्ही दोस्त की बारी है, क्या नाम है आपका?
2: कलश कर्ण।
1: कलश आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो?
2: छठवीं में।
1: छठवीं में, अच्छा। तो आप भी तो अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए कुछ लेकर आई हो, है ना? क्या लेकर आई हो?
2: मैं पहेली लेके आई हूँ।
1: अच्छा पहेली, तो नन्हे मुन्ने बच्चों आप तैयार हो पहेली का जवाब देने के लिए?
3: हाँ दीदी।
1: हाँ तो चलिए आप पूछिए कलश।
2: मेरी पहली पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं फिर भी वह उड़ती है?
3: पतंग।
1: सही है कलश।
2: हाँ मेरी दूसरी पहेली ये है, एक पैर है काली धोती, बारिश में हर घर में होती।
3: छतरी।
1: सही है कलश।
2: हाँ
1: चलिए
2: आखिरी पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद गीली होती है और दूसरों को सुखाती है?
1: खुद गीली होकर दूसरों को सुखा देती है। हाँ बच्चों किसी को पता है इसका जवाब?
3: मुझे पता है।
4: मुझे पता है।
1: अच्छा तो बताइए क्या है जवाब?
3: तौलिया।
1: तौलिया भाई बिल्कुल सही जवाब है ना कलश।
2: हाँ
1: तो कलश के लिए तालियां बज जाए। अब आपके एक और मित्र हैं आपके सामने, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
5: अलक शर्मा।
1: अलक आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
5: मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ।
1: और क्या सुनाने जा रहे हो बच्चों को?
5: आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: अच्छा कौन सी कविता है?
5: मेरी कविता का शीर्षक है कौन।
1: कौन, चलिए सुनाइए।
5: अगर ना होता चांद रात पे हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते बादल न इंद्रधनुष सर्च पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलू ये सब प्रश्न उठाता कौन।
1: इतालिया अलख ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, इसमें प्रकृति पेड़ पौधे आसमान सब कुछ आ गया है ना। और अब बारी है आपकी अगली नन्ही दोस्त, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम है आद्या शर्मा।
1: आद्या आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
6: मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा और आज आप क्या लेकर के आए हो सुनाने के लिए अपने दोस्तों को?
6: आज मैं आप लोगों को अपना एक अनुभव बताने वाली हूँ जिसका नाम है गर्मियों की छुट्टियाँ और नानी का घर।
1: वाह भाई गर्मी की छुट्टी आते ही हर किसी को नानी का घर याद आता है ना। तो फिर चलिए सुनाइए क्या अनुभव रहे आपके नानी के घर में।
6: मैं और मेरा छोटा भाई हर साल अब गर्मी की छुट्टियों में अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जाते हैं। मम्मी, बड़ी मम्मी और मौसी तीनों बहनें एक साथ नानी के घर जाते हैं। मौसी की दो बेटियाँ यानी मेरी बहनें और बड़ी मम्मी के दो बेटे यानी मेरे भैया और हम दो भाई बहन, हम सब मिलकर इतनी मस्ती करते हैं कि वापस घर आने का मन ही नहीं करता है। वहाँ ना कोई पढ़ाई लिखाई की टेंशन होती है और ना जल्दी उठने की टेंशन होती है। हम रोज लेट सोते हैं और लेट उठते भी हैं। हर रात जब बड़े सो जाते हैं तब हमारे भैया लोगों का ढाबा शुरू हो जाता है, हम भी उनके साथ कुछ कुछ बनाने में मदद करते हैं और फिर हम बहुत पार्टी करते हैं। मैगी, पास्ता, सैंडविच, कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, वाह, इन सारी चीजों के साथ एंजॉय करते हैं। हमारी नानी घर में एक कुआं है जिसके पास हम बच्चों को जाना मना है। उसमें एक पंप फिट है जिससे हम वाटर वर्ल्ड वाली फीलिंग के साथ नहाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। हम बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं पर हमारी नानी हम सब बच्चों को बैठाकर पुरानी कहानियां सुनाती है। हमारी मम्मी अभी कम मजे नहीं करती है। मम्मी, नानी और तीनों बहनें दिन भर और देर रात तक भी खूब बातें करती हैं। पुरानी बातें भी याद करते हैं। हमारा मन करता ही नहीं है कि ये छुट्टियां कभी खत्म हो, पर नई यादें और किस्से बनाकर हम सब अपने घर लौट आते हैं और फिर अगली छुट्टियों में मिलने का वादा करते हैं। धन्यवाद।
1: भाई आद्या, आपकी बातें सुन के तो हमें भी अपने नानी का घर याद आ रहा है। हम भी बचपन में जाते थे और सब एक साथ एक गोले में बैठकर घेरे में बैठ के खूब आम खाते थे। तो भाई ये यादें तो हमेशा रहती है अपने दिल में, है ना। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इसके बाद आप अपना नाम बताइए।
7: तान्या करण।
1: तान्या, आप अपने दोस्तों के लिए क्या लेकर के आई हो?
7: पहेली।
1: पहेली पूछेंगी आप भी? तो नन्हे मुन्नो तैयार रहिए जवाब देने के लिए। चलिए पूछिए।
7: मेरी पहेली एक ये है, ना आके है ना कान, फिर भी देता सबको ज्ञान।
1: तो बच्चों सोचिए सोचिए क्या है।

0: शायद तक मुझे इसका जवाब पता है।
1: क्या हो सकता है बताइए?
0: मेरे ख्याल से इसका जवाब है किताब।
1: किताब, भाई हमें भी लग रहा है ये जवाब सही है। क्यों भाई, सही है? हाँ, और भी है पहेली?
2: मेरा दूसरा जवाब है,
1: दूसरी पहेली पूछने जा रही
2: है। चार पैर है पर चल ना पाए, घर में सबके काम ये आए।
1: चार पैर है भाई उसके,
3: लेकिन मुझे पता है।
1: पता है आपको?
4: मेरे को।
1: तुमको पता है? चलिए बताइए।
4: कुर्सी।
1: कुर्सी, कुर्सी सही है।
2: हाँ
1: हाँ, और
2: मेरी आखिरी पहेली का पहेली है, काला हूँ पर कौवा नहीं, लंबा हूँ पर सांप नहीं।
1: सोचिए सोचिए बच्चों, दिमाग लगाइए।
0: इसका जवाब है बाल।
1: बाल, क्यों भाई जवाब सही है?
2: यस मैम।
1: हाँ, तो फिर इन पहेलियों के लिए और उसके जवाबों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और भाई, अब आपकी ये जो सबसे नन्ही दोस्त है ना, आपको कुछ और भी सुनाने के लिए बड़ी उत्सुक है ना? श्लोक तो सुना दिए इन्होंने, अब और क्या सुनाने जा रही हो तुम?
4: पर्यावरण बचाओ।
1: हाँ, तो अभिज्ञा चलिए शुरू करिए, आपकी ये कविता है ना, चलिए सुनाइए।
4: हरा भरा हो देश हमारा, पर्यावरण है सबसे प्यारा, पेड़ लग

0: हरा भरा भारत हम गढ़ेंगे। पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, पेड़ लगाकर करें पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी अपनी जीवन की रक्षा, तभी होगी अपनी जीवन की रक्षा। जय प्रकृति जय पर्यावरण। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा अभिज्ञा, पर्यावरण पे आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो बताइए पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है?
0: 5 जून।
1: 5 जून, बहुत बढ़िया। तो आपने भी बहुत अच्छे से पर्यावरण दिवस मनाया है, आपकी कविता सुन के हमें लग रहा है। तो अब चलते हैं, सभी नन्हे मुन्ने एक बार और अपने लिए तालियां बजा दें।

0: बच्चों मजा आया ना आपको सब सुनने में? तो भाई आप नन्हे मुन्ने होते हुए बड़े अच्छे हैं, खूब अच्छे से सब कुछ सुनाते हैं और इसमें आपके संस्कार दिख पड़ते हैं और इन संस्कारों के साथ साथ आप पढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं, है ना? बड़ी मेहनत से अच्छे अच्छे नंबर भी लाते हो भाई। तो पढ़ने के साथ साथ संस्कार का होना बेहद बेहद जरूरी होता है बच्चों, और इसी पर आधारित सुनिए अब ये वार्ता, पढ़ने के साथ संस्कार कितने जरूरी होते हैं ये आपको बताया जा रहा है, है ना? तो सुनिए वार्ता, शिक्षा और संस्कार हमारी धरोहर। आपको इस बारे में बता रही है श्रीमती मंजू चौरसिया।
1: नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विषय पर बातचीत करेंगे, शिक्षा और संस्कार हमारी धरोहर। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा का महत्व। बच्चों, जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? स्कूल, किताबें, अध्यापक और पढ़ाई, है ना? लेकिन शिक्षा सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने का नाम नहीं है। शिक्षा वह ज्योति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, विद्या वीणा वादिनी है जो जीवन में मधुरता और ज्ञान भर देती है। शिक्षा हमें सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत में अंतर समझाती है और सबसे बढ़कर हमें एक अच्छा इंसान बना

0: करती है। हमारे देश के महान लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर सभी ने कहा कि शिक्षा केवल दिमाग नहीं दिल को भी छूनी चाहिए। बच्चे किसी भी समाज की नींव होते हैं और उनकी शिक्षा व संस्कार उस नींव की मजबूती तय करते हैं। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, यह वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन में दिशा देता है, और संस्कार वह सुगंध है जो इस दीपक की लौ को पवित्र और स्थायी बनाते हैं। बच्चों, हमारे देश में सदियों से गुरुकुल परंपरा रही है। वहां बच्चों को केवल पढ़ाना लिखाना नहीं सिखाया जाता था, बल्कि जीवन की कला भी सिखाई जाती थी। सत्य बोलना, दूसरों का आदर करना, प्रकृति से प्रेम करना और सबसे बढ़कर मानवता, ये सभी संस्कार शिक्षा का ही हिस्सा थे। आज समय बदल रहा है। तकनीक की दुनिया में बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि तकनीकी ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें नैतिकता और मानवता का संगम हो। यदि शिक्षा केवल कैरियर बनाने का माध्यम बन जाए और संस्कार पीछे छूट जाए तो समाज अपनी आत्मा खो देता है। माता पिता और शिक्षक दोनों ही बच्चों के निर्माण के दो स्तंभ हैं। घर पहला विद्यालय है और माँ पहली गुरु। माता पिता यदि बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करें, उन्हें सुने, समझें और सही गलत का भेद सिखाएं, तो बच्चे संस्कारों की राह पर चलना सीखते हैं। उसी तरह शिक्षक यदि ज्ञान के साथ जीवन के मूल्य भी बांटें, तो बच्चे सच्चे नागरिक बनते हैं। बच्चों में संस्कार केवल उपदेश से नहीं आते, वे हमारे आचरण से आते हैं। जब वे देखते हैं बड़ों में सत्य, निष्ठा है, सम्मान है और सेवा भावना है, तो वे वही अपनाते हैं। इसलिए हर माता पिता, हर गुरु और हर समाज सेवी को यह समझना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज के आचरण की प्रतिछाया है। हम सब मिलकर बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें विद्या के साथ विनम्रता हो, और ऐसे संस्कार दें जो उन्हें सच्चा मनुष्य बनाए, क्योंकि ज्ञान बिना संस्कार अधूरा है और संस्कार बिना शिक्षा निष्प्रभ। बच्चों, हमेशा याद रखिए, शिक्षा हमें ऊंचा उठाती है, संस्कार हमें इंसान बनाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, पूरे प्रेम और जिम्मेदारी के साथ। बच्चों, अब हम जानेंगे कि संस्कार क्या है। संस्कार वो बीज है जो बचपन में बोए जाते हैं और जीवन भर फल देते हैं। संस्कार हमें विनम्र, दयालु और जिम्मेदार बनाते हैं। जैसे जब हम बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, या जब हम पेड़ों को पानी देते हैं, जब किसी घायल पशु की मदद करते हैं, या जब हम अपने दोस्तों की गलतियों को माफ कर देते हैं, तो ये सब हमारे संस्कार ही तो हैं। संस्कार सिखाते हैं कि सफलता से पहले सदाचार जरूरी है और बुद्धिमानी से पहले मानवता। बच्चों, अब हम जानेंगे कि शिक्षा और संस्कार दोनों के मिलन से जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। बच्चों, शिक्षा और संस्कार दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा हमें उड़ान देती है, संस्कार हमें दिशा देते हैं। अगर शिक्षा पंख है तो संस्कार उसकी हवा है। अगर शिक्षा दीपक है तो संस्कार उसकी लौ है। अगर कोई बहुत पढ़ लिख जाए पर दूसरों से बुरा व्यवहार करे तो उसका ज्ञान अधूरा है, और अगर कोई संस्कारी है पर मेहनत नहीं करता तो उसकी अच्छाई भी सीमित रह जाती है। इसलिए हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ बाप और शिक्षक की। माँ पहले गुरु होती है। वह बच्चों को बोलना, चलना और व्यवहार सिखाती है। पिता जीवन के मूल्य सिखाते हैं, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम। शिक्षक बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानते हैं। वो केवल किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि चरित्र का निर्माण करते हैं। हमारे गुरुकुलों में पहले दिन ही बच्चों को सिखाया जाता था, सत्य बोलो, परिश्रम करो और दूसरों के हित में सोचो। यही शिक्षा के साथ संस्कार का सच्चा रूप था। बच्चों, आज समय बदल रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बच्चों की दुनिया बदल दी है। जानकारी के सागर में बहुत कुछ अच्छा है, पर उसी में भटक जाने का खतरा भी है। बच्चों को यह समझना होगा कि तकनीक हमें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन संस्कार हमें संभाले रखते हैं। कंप्यूटर सिखाता है कैसे करना है, पर संस्कार सिखाते हैं क्या करना सही है। इसलिए पढ़ाई के साथ शिष्टाचार, आदर और सच्चाई भी जरूरी है। आइए एक छोटी सी कहानी सुने। एक विद्यालय में दो छात्र थे, आकर्ष और आराध्य। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन आकर्ष के संस्कार गहरे थे। वह हमेशा बड़ों का सम्मान करता, जरूरतमंद की मदद करता। एक दिन परीक्षा में आराध्य को उत्तर याद नहीं रहे। आकर्ष उसके पास बैठा था, पर उसने अपनी कॉपी नहीं दिखाई। परीक्षा के बाद शिक्षक ने पूछा, तुमने मदद क्यों नहीं की? आकर्ष बोला, सर, नकल करना सही नहीं होता। अगर मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ तो उसे समझा कर पढ़ा सकता हूँ। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली शिक्षा है जो तुम्हें ईमानदार बनाती है। प्यारे बच्चों, हम सबका दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों को सहेज कर रखें। ये हमारी अमूल्य धरोहर है। जो बच्चा शिक्षा और संस्कार दोनों को अपनाता है, वही भविष्य में देश का सच्चा नागरिक बनता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी सोचता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, शिक्षा वह है जो हमें स्वतंत्र सोचने की शक्ति दे और जीवन को सुंदर बनाए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा है। तो बच्चों, याद रखिए, ज्ञान हमें ऊंचा उठाता है, पर संस्कार हमें स्थिर रखते हैं। शिक्षा हमें आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि संस्कारी, संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान, क्योंकि यही है हमारी सच्ची विरासत। शिक्षा और संस्कार हमारी धरोहर।
1: बच्चों, अभी आपने ये प्यारी सी बातें सुनी है ना। वार्ता थी शिक्षा और संस्कार हमारी धरोहर, और आपको सुना रही थी श्रीमती मंजू चौरसिया। और बच्चों, एक बात बताते हैं आपको, एक प्रसंग बताते हैं, प्रेरक प्रसंग है ना। एक बार एक नन्हा मुन्ना जो कि स्कूल तो रोज जाता था और पढ़ाई भी करता था, मगर उसे जो कुछ पढ़ाया जाता था ना, गहराई से वो समझ नहीं पाता था। फिर माँ ने बड़े धैर्य से घर पर ही उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, और जो कुछ भी पढ़ाना होता था उससे संबंधित कोई कहानी, किस्से वगैरह उन्हें सुनाती। और फिर भाई माँ की मेहनत रंग लाई और वो बालक अब बहुत होशियार कहलाने लगा और बहुत अच्छा हो गया, और वो सोते उठते कठोर साधना में तल्लीन हो जाया करता था। और बच्चों, आगे चलकर उसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। और सन 1878 में उसी ने बल्ब का आविष्कार किया और विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। और खुद उनका नाम जो था, वो जो प्रसिद्ध हुए, वो थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से हुए। तो समझ आया ना आपको कि मेहनत अगर करे तो कुछ भी हासिल हो सकता है। और नन्हे मुन्नो, आपके अंदर भी बहुत कुछ छुपा होता है और आप उत्सुक होते हो यहाँ आकर के सुनाने के लिए कोई कविता, कहानी, चुटकुले वगैरह, तो आप आइए हर गुरुवार सुबह 9:30 पर आकाशवाणी केंद्र में, और आप जो कुछ सुनाना चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी और उसका प्रसारण भी किया जाएगा। तो आप सादर आमंत्रित है।

बच्चों का कार्यक्रम किसले अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल संसार। इसमें सुनिए साप्ताहिक खेल समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच संतोषी चंद्राकर से भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है रमाशंकर।

श्रोताओ नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुश्ती की खिलाड़ी संतोषी चंद्राकर से। तो आइए शुरू करते हैं खेल संसार कार्यक्रम साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया है। 20 साल के प्रज्ञानानंदा इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर टूर्नामेंट के 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। टूर्नामेंट के आखिरी दिन प्रज्ञानंदा ने 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने क्लासिकल मुकाबला जीतकर 3 अंक हासिल किए और कुल 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 7 बार मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इटली के फेबियो कोबोली ने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है। फ्रेंच ओपन 2026 के मेन सिंगल सेमीफाइनल से पहले उनके विरोधी माटियो आर्नाल्डी ने अपना नाम वापस लिया, जिससे कोबोली को वॉकओवर मिल गया। 10वें सीड कोबोली का सामना खिताबी मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। भारतीय अंडर 18 मेन्स हॉकी टीम ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारत का सामना शनिवार को जापान से होगा। जापान के काका मिगाहरा में हुए मैच के तीसरे क्वार्टर के बाद भारतीय टीम 2-3 से पीछे चल रही थी। इसके बाद आखिरी 15 मिनट में भारत ने अटैकिंग गेम खेलना और पाकिस्तान पर लगातार 3 गोल दागकर मैच का रुख बदल दिया। भारत ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप की शुरुआत कजाकिस्तान पर 13-0 की बड़ी जीत के साथ की थी। इसके बाद जापान के खिलाफ 4-2 से हार मिली, लेकिन भारतीय टीम ने वापसी करते हुए साउथ कोरिया को 4-1 और चीनी ताइपे को 13-1 से हरा दिया। श्रीलंका के जेवलिन थ्रोवर रुमेश पथिरागे ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे एशिया में सबसे दूर जेवलिन फेंकने वाले दूसरे प्लेयर भी बन गए हैं। 23 साल के रुमेश ने रोम डायमंड लीग में 92.67 मीटर का थ्रो किया। वह 2026 में किसी भी प्लेयर का पहला 90 प्लस थ्रो में था। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पिछले साल 90.23 का थ्रो किया था। इससे पहले नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.67 मीटर का थ्रो किया था। भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग की शुरुआत होने जा रही है। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक PBL का आयोजन किया जाएगा। इस लीग में देश भर के मुक्केबाज शामिल होंगे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में मुक्केबाजों का ट्रायल चल रहा है। IBF वाराणसी के बाद अब 5 से 7 जून तक असम में मुक्केबाजों के बीच ट्रायल हो रहा है। इसके बाद 12 से 14 जून तक पंजाब में ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने 6 में से 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। पश्चिम बंगाल के अभय बर्मन और ऋतु मंडल ने पारंपरिक योगासन श्रेणी में गोल्ड जीते हैं। चैंपियनशिप में भारत का 122 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है।

0: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का आगाज रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। उद्घाटन मैच में रायपुर राइनोस ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजनांदगांव पैंथर्स को 90 रन के बड़े अंतर से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की। कप्तान अमनदीप खरे के शानदार शतक और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने रायपुर को एक तरफा जीत दिलाई। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में खेले गए मुकाबले में राजनांदगांव पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। रायपुर राइनोस के बल्लेबाजों ने शुरू से ही अच्छा खेल खेला। पहले बल्लेबाजी करते हुए रायपुर राइनोस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 228 रन बनाए। कप्तान अमनदीप खरे ने कप्तानी पारी खेलते हुए 55 गेंदों में 102 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए चलते हैं भेंटवार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुश्ती की खिलाड़ी संतोषी चंद्राकर से। श्रोताओं नमस्कार, खेल संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार में हर सप्ताह हम अपने छत्तीसगढ़ से जुड़े खिलाड़ियों को शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि नई नई प्रतिभाओं को हम यहाँ जगह दें और जानते हैं उनके खेलों के बारे में। खेलों में कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कोच होते हैं, संघ के पदाधिकारी होते हैं, जिनसे हम खेलों के बारे में सामयिक गतिविधियां और उनके इवेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। श्रोताओं, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं संतोषी चंद्राकर से। कुश्ती के खेल से जुड़ी हुई हैं और हाल ही में इन्होंने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में 28 से 31 मई को वियतनाम में आयोजित चैंपियनशिप में टीम को लेकर ये गई थी और वहाँ इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संतोषी चंद्राकर से। तो संतोषी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोषी, सबसे पहले तो हम कार्यक्रम में आपसे जानना चाहेंगे कि कुश्ती के खेल से आप कब से जुड़ी हैं?
1: सर, मैं कुश्ती के खेल से 2014 से जुड़ी हूँ। मैं स्कूल टाइम से, जब मैं क्लास 8 में थी तो मैं स्कूल तिलक स्कूल में पढ़ाई करती थी सर, उधर से मैं रेसलिंग के जानकारी मुझे हुई कि रेसलिंग होते हैं यहाँ। ट्रेनिंग के लिए मैं महात्मा गांधी स्कूल में ट्रेनिंग करने जाती थी सर। 2014 से 2026 तक मैं रेसलिंग में जुड़ी रही हूँ सर।
0: जी जी, तो आप रेसलिंग के खेल से जुड़ी हैं, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई रेसलिंग की? आपका पहला जो इवेंट था वो कहाँ आपने खेला और कैसे आपको बल मिला इस तरह खेलों में बने रहने का?
1: सबसे पहले मैंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम अंडर 17 चैंपियनशिप खेलने गई थी सर। उधर से मैं, मुझे लगा कि कुश्ती में जुड़े रहना है मुझे, या अगर कुश्ती में अगर कुछ हो सकता है, छत्तीसगढ़ में अगर कुश्ती के जगत में कुछ करना है तो इस चीज से जुड़े रहने के लिए हमें बाहर जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो सर, मैं 2015 से छत्तीसगढ़ से बाहर जाके ट्रेनिंग ले रही थी स्थाई सेंटर लखनऊ में। वहां से सर मैं ऑल इंडिया साई खेली, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। गोल्ड आते ही सर मुझे लगा कि नहीं, कुश्ती में मुझे और अच्छा से अच्छा हासिल करना है। तो मैंने सर 2021 में ट्रेडिशनल नेशनल सीनियर नेशनल हुआ, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आए थे सर। तो फिर उसके बाद सर मैंने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में से मैंने अपील किया कि क्या मैं कुश्ती के जगत में हमारे यहाँ भी कोच का होना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोच ना होते हुए मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना है। तो मैंने सर डिप्लोमा किया 2024 में। मैंने डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी स्कूल में ट्रेनिंग देती रही। 2026 तक मैं 2024 से 2026 तक महात्मा गांधी स्कूल में ट्रेनिंग दे रही हूँ सर।
0: तो अभी जो हाल ही में अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में 28-31 मई तक वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में आपने टीम का नेतृत्व किया है, इसके बारे में बताएं कि यहाँ जाने का अवसर आपको कैसे प्राप्त हुआ और इस प्रतियोगिता में आपकी जो अंडर 17 टीम थी वो उनका प्रदर्शन कैसा रहा?
1: हमारी टीम के प्रदर्शन तो सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम इंडिया चैंपियन बने थे। हमारे 10 प्लेयर्स गए थे, 10ों का मेडल थे सर। 2 गोल्ड आए थे, 3 सिल्वर मेडल आए थे, 5 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। ओवरऑल चैंपियन इंडिया के हुए थे सर। और मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है सर। इसमें हम बच्चे को ये देख रहे थे, बच्चे तो हम बच्चे से कभी पहले मिले ही नहीं थे सर। फर्स्ट टाइम उनसे मिले, उनके बारे में जाने कि कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, मानसिक रूप से उनको तैयार करना। अगर जापान के प्लेयर से अगर कुश्ती है तो उनको किस तरीके से अपने दिमाग अपने रणनीति बनाना है कि कुश्ती कैसे लड़नी है, ये उनको मोटिवेट कर रहे थे सर।
0: जी, यहाँ जाने की प्रक्रिया क्या थी?
1: सिलेक्शन का कोई प्रक्रिया नहीं है सर। मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया था, जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल कंपटीशन में कोच के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
0: तो असंतोष जी, आपने जो कुश्ती शुरू की तो कई इवेंट्स आपने खेले होंगे, उन इवेंट्स के बारे में बताएं जो इस 2026 के वर्ष में आपने अभी तक खेले हैं।
1: 2026 में 2025 के लास्ट दिसंबर में सर मैंने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया था अहमदाबाद में, उसमें सर मैंने ब्राउन्स की कुश्ती हार गई थी। आगे 2026 के सीनियर नेशनल खेलने की तैयारी के लिए जुड़े हैं सर। अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप भिलाई में आयोजित हुए थे, इसमें मैं कोच के रूप में नियुक्त थी सर।
0: तो संतोषी, जब एक कोच के रूप में आपने आप कोच के रूप में काम करती हैं, लोगों बच्चों को आप टीच करती हैं, उन्हें कोचिंग करती हैं, तो एक खिलाड़ी से कोच तक के सफर में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला कि अब आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं कुश्ती के लिए?
1: सर धीरे धीरे बेहतर होगा सर, एक साथ तो कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकता सर। मैं पहले एक खिलाड़ी के रूप में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती थी, आज अब प्रतियोगिता में कोच के रूप में जाती हूँ, अपने जो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग देती हूँ उनको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में देखना चाहती हूँ ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो।
0: जी, तो संतोषी आपने बताया कि आप लखनऊ में रह करके ट्रेनिंग आपने किया, फिर आप अयोध्या भी गई, तो इसके बारे में बताया कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या छत्तीसगढ़ में इन सुविधाओं की आपको कमी दिखती है?
1: सर थोड़ी बहुत तो सुविधा की कमी थी, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर ट्रेनिंग ली, क्योंकि हमारे यहाँ कोच जो जिस हिसाब से मुझे कोच की आवश्यकता थी, मुझे ट्रेनर की आवश्यकता थी, मुझे उस टाइम मिल नहीं पाए थे सर। तो मैं सोची कि बाहर जाके मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसलिए मैं बाहर जाके ट्रेनिंग ली और साइंस सेंटर में सर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, तो मैं उधर जाके ट्रेनिंग करने लगी सर।
0: जी जी, संतोषी जी, हमने अभी देखा है कि पिछले बीते माह 2026 में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है छत्तीसगढ़ में, पहली बार भारत का सबसे जो बड़ा इवेंट था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, उसमें कुश्ती भी एक खेल था, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि ये जो आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार किया गया, इसका क्या महत्व हो सकता है, खासकर यदि हम आपकी कुश्ती खेल के बारे में देखें तो?
1: छत्तीसगढ़ में सर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है सर, जैसे सरगुजा बस्तर तरफ जाके देखेंगे तो हमारे को अनेकों प्रतिभा मिलेंगे। तो सर इसी को देखते हुए ट्राइबल्स गेम का कॉम्पिटिशन हुए थे सर, हमारे यहाँ से जो 6 लड़कियां पार्टिसिपेट की थी सर, मैं उसमें कोच थी, तो सर मैंने देखा कि जो बच्चे ट्राइबल्स एरिया के थे वो बच्चे बहुत मेहनती थे सर, उनको एक ही चीज़ की कमी थी सर कि उनके पास एक बेहतर कोच होने की और एक सुविधा की जरूरत थी सर। अगर उनको उस सुविधा मिल जाती है तो सर, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो ना मेडल आने का था वो उसके जगह में उनका मेडल आते सर। मैं चाहती हूँ सर कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए।
0: और संतोषी, जब हम कुश्ती की बात करते हैं तो उस खेल के जो रूल्स होते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे इस खेल के रूल्स के बारे में, चूंकि आप कुश्ती की कोच हैं तो आप कोचिंग करती हैं, तो इसके रूल्स बताएं हमें कि कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, उनमें कितने देर का खेल होता है और क्या हार जीत के रूल्स होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में।
1: अंडर 17 में सर 2 मिनट 30 सेकंड ब्रेक, फिर 2 मिनट्स 4 मिनट्स की कुश्ती होती है। सीनियर लेवल में सर 3 मिनट 30 सेकंड ब्रेक, 3 मिनट्स 6 मिनट की कुश्ती होती है, जिसमें जीत सर पॉइंट के आधार पे भी होती है, चीट पट के आधार पे भी होती है। जैसे आप मेरे ओपोनेंट है सर, मैं कुश्ती लड़ रही हूँ, मेरे ओपोनेंट का 2 पॉइंट है, मेरा 4 पॉइंट है, तो सर जिसका 4 पॉइंट है वो विनर होंगे।
0: जी जी, और जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई और जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय जो खेल था जहां आपने कोच किया है, तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर आपके कितने मेडल्स हो सकते हैं और कितने इवेंट्स में अभी तक आपने भाग लिया है राष्ट्रीय स्तर पर?
1: राष्ट्रीय स्तर पर मैंने सर अनेकों राष्ट्रीय स्पर्धा पे प्रतियोगिता करी है, और सर अंतर्राष्ट्रीय पे तो फर्स्ट टाइम कोच के रूप में गई थी, और नेशनल में तो सर मेरा 3 मेडल है सर। जी,
0: और एक बेहतर कुश्ती का खिलाड़ी होने के लिए और खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी में क्या होना चाहिए?
1: खिलाड़ी में सर सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होनी चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि इस कुश्ती को कैसे जीतना है मुझे, रणनीति बनानी है।
0: तो संतोषी जी, कार्यक्रम में हम चले उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि खेलों को कितना जरूरी समझती हैं, चूंकि आप एक लड़की हैं, गर्ल हैं, तो खेलों का लड़कियों के बालिकाओं के जीवन में क्या महत्व है और बालिकाओं के अलावा और सभी के लिए खेलों का क्या महत्व है?
1: खेल सर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें नशा मुक्त से भी दूर रखते हैं, गलत चीजों से दूर रखते हैं। खेल चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, दोनों के लिए बहुत ही आवश्यकता है सर। खेल के थ्रू हम गलत रास्ते से दूर हो सकते हैं सर।
0: तो संतोषी जी, तो संतोषी जी, हम यदि कार्यक्रम में आपसे जानना चाहें कि आने वाले समय में कोई ऐसे इवेंट हो जहां आपको जाने का अवसर

0: मिल रहा हो, टीम ले जाने का अवसर मिल रहा हो, तो उसके बारे में बताएं।
1: अंडर 23 सर जिस नेशनल चैंपियनशिप होना है उसमें मैं कोच के रूप में प्रतिनिधित्व करूंगी। अभी डेट और जगह का निर्धारित नहीं हुए सर अभी।
0: तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं संतोषी जी। खेल संसार कार्यक्रम में आप आई और कुश्ती के खेल के बारे में और अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप वियतनाम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में आपने भाग लिया, इसके बारे में जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम खेल संसार अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहले ये संदेश।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिधि चौहान और क्लिंटन की आवाजों में फिल्म एक थी डायन से, गीतकार गुलजार और संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: मसान, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत स्वानंद किरकिरे की आवाज में, रचनाकार वरुण ग्रोवर और संगीत है इंडियन ओशन का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जावेद अली की आवाज में आइए अब सुने रकीब आलम का लिखा गीत। संगीत देवीश्री प्रसाद का है और फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने कैलाश खैर को। बोल कुमार के संगीत मीत ब्रदर्स का फिल्म है क्या सुपर कूल है हम।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और मीत ब्रदर्स को। गीतकार शब्बीर अहमद, संगीतकार मीत ब्रदर्स, फिल्म का नाम है वन नाइट स्टैंड।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत इसी सभा में आप सुबह 10 बजे भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं मथुरा प्रसाद निषाद और साथी। आइए कार्यक्रम में पहले सुनते हैं मथुरा प्रसाद निषाद, संत राम पारकर, गीता ध्रुव और साथियों के स्वर में केदार दुबे की रचना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने गीता ध्रुव और भागीरथी निषाद के स्वर में कर्मा गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे मथुरा प्रसाद निषाद, गीता ध्रुव, भागीरथी निषाद और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी और घरेलू गैस की कीमत में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 7 करोड़ रुपये की लागत से तेल नदी पर एनिकट निर्माण की स्वीकृति दी गई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि आज छात्र मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, कोप्पल, अनंतपुरम, चेन्नई है। एक सीजनल द्रोणिका सूरतगढ़, रोहतक, रीवा, रांची, कैनिंग और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का साहस, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यसभा

0: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी और घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशिकी फिल्म से, आवाज कुमार सानू की, गीतकार समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने कुमार सानू के स्वर में नाराज फिल्म का गीत, रचना कतिल शिपाई की और संगीत है अनु मलिक का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत आवाजें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। गीतकार समीर और संगीतकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम है दिल्ली।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने अलका याज्ञिक की आवाज में समीर की रचना। इस गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। फिल्म है राज़।

राज फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है परिवार नियोजन पर आधारित नाटक आकारहीन घरौंदे, लेखक और प्रस्तुतकर्ता श्री उमा शंकर पंडा और प्रस्तुति सहायक हैं प्रभा डामोर।

0: मेरा एक छोटा सा सपना था, एक छोटा सा घर होगा, चारों तरफ महकते हुए फूलों का बाग होगा, हरियाली ही हरियाली होगी, कल कल कर बहती हुई नदी के किनारे एक छोटा सा घर होगा, ऊपर होगा नीला आकाश और होंगे टिमटिमाते सितारे, जहां सपनों की परियां बुलाती होंगी मुझे।
1: मेरा भी कभी एक सपना था जो बिल्कुल ही अपना था, मगर कहां गया वो बचपन, कहां गया वो सपना।
0: मैं हर रोज बचपन में सागर के किनारे जाती थी, पैरों के ऊपर बालू दे देकर रेत के घरौंदे बनाती थी, मगर छोटी छोटी लहरें आकर उन घरौंदों को मिटाकर चली जाती थी। भीगी भीगी बालू के ऊपर मैं सीपियों के पीछे दौड़ती थी और अपने छोटे छोटे पैरों की छाप लौट लौट कर देखती थी, मगर कहां गया वो मेरा बचपन, कहां गई मेरे पैरों की वो छोटी छोटी छाप।
1: मैं कभी कभी जाकर नदी के किनारे बैठता था, क्योंकि हमारे गांव के पास न सागर था न कोई झील, पैरों को पानी में डुबोते हुए तैरती हुई मछलियों के साथ हम भी कभी खेला करते थे, छोटे छोटे चिकने पत्थर लाकर घर में संजोए रखते थे, भादों की चिलचिलाती धूप में जब सोने रंग के धान के खेतों में हवा लहराती थी, कांस के फूल चामर जैसे डोलते थे, नीले रंग की चिड़िया अपने पंख फैलाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक उड़ जाती थी, तो मुझमें खुशी नहीं समाती थी, मगर कहां गया वो मेरा बचपन, कहां गया वो मेरा बचपन।
0: संग सहेलियों के साथ अपनी अपनी मिट्टी की गुड़िया लेकर हम लोग शादी ब्याह जाते थे।
2: जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली।
3: क्यों नहीं खेलेगी?
2: खेलना रे, मैं एक सुंदर गुड्डा लाई हूँ तेरी गुड़िया के साथ उसका ब्याह रचाने के लिए। जा जा, तेरे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करने वाली, ना तेरे लड़के का घर है ना पढ़ा लिखा है।
3: पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ?
2: मेरा लड़का तो सुंदर है ना।
3: सुंदर होने से क्या हुआ?
2: तुम्हारी मांग भी तो ज्यादा है, तुम घोड़े मांगती हो, हाथी मांगती हो, जमीन जायदाद मांगती हो, इतना सारा सामान मैं कहाँ से लाऊं बताओ तुम? और मेरी गुट्टी भी तो सुंदर है।
3: तब चलो बिना किसी मांग के शादी कर ले। ठीक
2: ठीक है, बिना किसी मांग के शादी कर ले।
3: हाय रे, तू तो कितनी अच्छी है।
0: गुनगुना कर कुछ गाते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी कभार झगड़ते थे, और भविष्य में कभी साथ न देने की कसम खाकर घर को लौट आते थे। रात भर मम्मी की गोद में सोने के बाद सुबह फिर सब कुछ भूल जाते थे।
1: मैं भी चिलचिलाती धूप में आमों के पेड़ पर बैठा सोचा करता था कि ये मेरा पक्षीराज घोड़ा है और मैं हूं कोई एक अनजान द्वीप का राजकुमार, सात समुंदर पार का। मैं ले आया हूं परियों के राज से अपनी राजकुमारी को।
0: मगर ये क्या हुआ राजा?
1: और क्या होगा, मैं बड़ा होता गया, माँ और बाबा ने सब बेच बाज कर पढ़ने के लिए मुझे शहर भेज दिया। माता पिता का सपना था पढ़ाई के बाद मैं अफसर बनूंगा, कुटिया के स्थान पर महल खड़ा होगा, गांव में शान शौकत बढ़ेगी, मगर वो कुछ ना हुआ।
0: इलाज के बिना मां चल बसी, गरीबी से तंग आकर बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली, छोटा भाई आवारा लड़कों के साथ मिलकर गुंडागर्दी, चोरी डकैती छुराबाजी करने लगा।

0: कितनी बार तुझसे कह चुका हूं, तू इस घर से चला जा। तू जैसी औलाद का होना ना होना समान है। अरे भाई बहन की तरह कभी लौट कर तो देख, मंजली का शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है, और छोटी तो बीमार ही बीमार रहती है। छुटकू ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया।
1: स्कूल जाकर करेगा क्या,
2: नस्लेट है ना किताब,
1: पाल पोस कर लायक करने के लिए जब साधन न थे तब एक के बाद एक ही हीरो हीरोइन खड़े करने की क्या जरूरत थी।
0: अरे तुझे क्या और किसी को भी क्या, जुआ खेलो शराब पीकर घर को आओ और तुम्हारा काम ही क्या है।
1: मैं कह देता हूं पिताजी, मैं किसी के बाप के पैसे से शराब नहीं पीता, मैं कमाता हूं, भले ही वो चोरी या डाके का पैसा क्यों ना हो, मेरी खुद की कमाई है, खुद की। हाँ
0: जब अपने खून पसीने से कमाई करके लाओगे तब तुम्हारी समझ में ये बात आएगी कि कमाई क्या है। छोड़ो, और लड़की भी कितनी बड़ी हो गई है, घर लौटने का नाम भी नहीं लेती।
1: घर लौटेगी क्यों, यहाँ वही गुमसुम गंदी हवा, धसी हुई मिट्टी की चार दीवारी और रोना धोना, नहीं तो गाली गलौज का माहौल। कम से कम बाहर रहने से तो दिल बहल जाता है, खुली हवा मिलती है, कुछ क्षण के लिए इस गंदगी से तो दूर रहती है।
0: तुझको न शर्म है न लाज,

0: लड़की अब बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी लड़कियों का देर से घर लौटना अच्छा नहीं होता। अरे अरे, कम से कम आजू बाजू वालों का तो ख्याल करो।
1: आजू बाजू वालों का ख्याल क्यों करें? वो तो कभी हमारा ख्याल करते नहीं। हम लोग कहाँ गए, कब आए, इस पर मरते क्यों हैं? हमें कुछ कहने से पहले अपने बेटे बेटी को संभालें।
0: हाँ, ठीक कह रहे हो। जब जब मैं ही कुछ नहीं कर पाया तो तुम लोगों को दोष देने से लाभ क्या है? ठीक है ठीक है, जिसकी जो मर्जी हो करो। मैं तो एक पका हुआ आम हूं, आज हूं कल झड़ जाऊंगा। तुम लोग अपने अपने
1: रास्ते में जाना बोल रहे हो ना? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कहां गया या बड़ी बहन कब घर लौटती है, और कभी नहीं पूछना।
2: मैं उस गंदगी से ऊब कर चली आई, मगर राह कहां है? इतने लंबे रास्ते में मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है।
3: अभी मैं जो मिला, चलेंगे साथ साथ राजा और रानी।
2: मगर राजा और रानी की वही पुरानी कहानी। जंगल के किनारे धान का एक खेत था, और वहां बैठी थी अनगिनत चिड़ियां। चिड़ियां एक के बाद एक उड़ के चली गईं और फिर आकर बैठ गईं। वैसे तो राजा के दरबार में कहानी हर दम चलती रहती है। चिड़ियां आईं, बैठ गईं और फिर फुर्र से एक के बाद एक उड़ गई। ये तो कभी खत्म ना होने वाली कहानी है।
3: मगर कहानी तो एक न एक दिन खत्म होने वाली है।

0: रात के अंधेरे के बाद कभी तो उजाला आएगा। वो तुम्हारे गाने की जुल्फें क्या आने वाले सवेरे को कभी रोक सकेंगी?
1: तुम छोड़ो भी तो, हम लोग जीकर भी जिंदा कहाँ हैं? हमारे भीतर जीवन कहाँ है? हरियाली कहाँ है? सब जैसे एक बंधे हुए रास्ते में बैल गाड़ियों की बैल की तरह आंख में टोपर और गले में घंटी बांध कर चले जा रहे हैं। वही एक ही रास्ते पर जो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी।

0: गुरुजी।
1: क्या है? पढ़ के आती नहीं हो, न स्लेट है न पेंसिल, और न लिखने के लिए कॉपी है, और चली आती हो पढ़ने के लिए। तेरा बाप भी कभी स्कूल में पढ़ा था? बैठ, बैठ जा। हाँ बोलो, इस बार भाई सब मिल के बोलो। आ से अमरूद,
2: आ से अमरूद,
1: आ से आसमान,
2: आ से आसमान,
1: ई से इमली,
2: ई से इमली,
1: ऊ से ऊन,
2: ऊ से ऊन।
1: हाँ तू बोल, आ से क्या है?
0: गुरुजी, आ से आम।
1: अरे हाँ दाऊ की लड़की, तेरे बगीचे में आम फला है क्या? नहीं तो तेरी जुबान पर आम क्यों आएगा भला?
0: हाँ गुरुजी, हमारे बगीचे में बहुत से आम फले हैं, मगर पापा ने कहा है किसी को नहीं बताना।
1: ठीक है बैठ जाओ, मैं जरा बाहर से आ रहा हूँ, तुम लोग पहाड़ा पढ़ते रहो। ए लड़के इधर आ जरा। अच्छा तू इन लोगों को पहाड़ा पढ़ा है ना?

0: मेरी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। गुरुजी स्कूल छोड़कर चले जाते थे और मैं स्कूल छोड़ पहुंच जाता था दाऊ जी के आम के बाग में, जहां चोरी छिपे पके आम ले लेता और नदी के किनारे बैठकर आराम से खाता।
1: मेरा भी तो वही हाल था। पापा बोलते थे, पढ़ाई करो नहीं तो जिंदगी भर लोहे का बोझ उठाना पड़ेगा।
0: वही ना, रात और दिन भर कीड़े की तरह किताब में घुसे रहना, इम्तिहान देना, इम्तिहान के बाद छोटी मोटी जो भी नौकरी मिल जाए घुस जाना, शादी करना, शादी के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर वही कहानी, भरे हुए धान के खेत में चिड़िया आती है उड़ जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
1: और फिर लड़के लड़कियों को पीढ़ी पीढ़ी तक वही पुराना उपदेश देना, बच्चों तुम अच्छी पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो जिंदगी भर लोहे का बोझ उठाना पड़ेगा।
0: फिर वही किताब मुखस्त करना, किसी भी नौकरी के लिए दफ्तर से दफ्तर ठोकर खाना, हाथ पैर पढ़ के किटकिटाना, और शाम को थके हारे घर को लौट के बीबी से झगड़ना और फिर लेट जाना,
1: जीवन की उसी अंधेरी कोठरी में पल पल गिनना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद।
0: और गणित की वही गिनती जो कभी भी शेष नहीं हो पाती, सागर के किनारे अनगिनत सीपियों के अंदर जैसे छिपी हुई मुक्ता को ढूंढना, कोई पूछे तो मुकद्दर को दोष दे देना, जो होना था सो हुआ, सब तो उसी ऊपर वाले की देन है,
1: और जिसने दिया है वही पालेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नारियों की व्यथा कथा आज भी ऐसे ही बरकरार है, और नारी करे भी तो क्या, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष, या रूढ़िवादी समाज के शिकंजे से मुक्ति के लिए अपनी अभिलाषा लेकर समाप्त हो जाना, बुझ जाना एक मिट्टी के दिए की तरह
0: किसी अनजान गांव के आंगन में,
1: सिर्फ ढूंढते रहना, मिले या ना मिले गुनगुनाते रहना, कोई सुने या ना सुने चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों से कहना,
2: अरे मेरे साथ बच्चे हैं तो किसी को क्या, भगवान की देन है देन, बच्चा नहीं हो तो घर क्या है, शमशान है, मरो भी तो मुंह में आग देने के लिए लड़के की जरूरत है ना, और जीने के लिए भी।
3: मैं सबसे बड़ी थी, बाबा जी चल बसे तो सारे परिवार का बोझ मुझ पर आ गया, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की थी, किसी प्रकार मोहल्ले के मुखिया के जरिए नर्स की तालीम में भर्ती हो गई। भाई बहन और माँ की याद हर वक्त आती रहती है, फिर भी खुद जीने के लिए और परिवार के भविष्य के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। अपनी हालत से मैं ना खुश थी और ना खुश, ऐसे ही समय गुजरता गया, और मैं एक दिन तालीम पाकर बड़े अस्पताल में नर्स बन गई। फिर एक दिन,
1: तुम शालिनी हो ना, मुझे नहीं पहचान पा रही हो, तुम्हारे घर के नजदीक रहने वाली मैं सुमन भाभी हूँ।
3: अरे भाभी जी, तुम ऐसा चेहरा हो गया है।
1: और कैसा चेहरा होगा, हर साल जो बच्चे आने लगे, न घर में खाने के लिए दाना है और न रोग पैराग के लिए इलाज, छाती में तो दूध ही नहीं है मगर फिर भी बच्चा खींचा जा रहा है।
3: तुम ये कहती थी ना भाभी, सब ऊपर वाले की देन है, भगवान का खेल है, जिसने जन्म दिया है उसी ने कर्म भी दिया है। मगर आज किसका क्या भरोसा।
2: खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम ही कोई रास्ता बताओ।
3: मेरे सामने एक दिन सुमन भाभी भी चल बसी और उनके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर ठोकर खाने लगे। मैं भी और क्या कर सकती थी, जीवन में क्या खोया और क्या पाया इसका हिसाब। खोया तो बहुत कुछ, मगर पाया क्या। जब मैं अकेली चार दीवारी के अंदर अपने छोटे से कमरे में थकी हारी लेट जाती, अंदर से वही छटपटाहट, वही रोना उभर आता। पंख कटे पक्षी के समान इधर से उधर सिर्फ छटपटाना, और अस्पताल से घर, घर से अस्पताल चल चल के बाकी जिंदगी गुजार देना।
4: सुमन भाभी के मर जाने के बाद कोई एक तिथि की ये डायरी शालिनी की ही थी। फिर चलते चलते कैलेंडर के पन्ने बदलते गए और शालिनी को पुरानी डायरी की याद फिर हो आई।
3: मैंने सोचा था जीवन के बाकी बसंत ऐसे ही कट जाएंगे। कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आती थी, जैसे कि सुमन भाभी की परछाइयां मुझे हर वक्त परेशानियों में डाल देती थी। वो कभी हंसती थी तो कभी रोती थी। रोती रोती कहती थी,
2: मैंने कब किससे कहा कि बच्चे भगवान की देन है, मगर भगवान के सिवा तब और भरोसा भी किस पर था। जन्म लेना और मरना दोनों ही तो उसी के हाथ में है।
3: जब हम जीवन से विश्वास खो बैठते हैं तो भगवान के सहारे जीने के लिए ही तत्पर हो उठते हैं। सुमन भाभी का इतिहास भी बड़ा अनोखा था। बड़े घर की इकलौती बेटी सुमन भाभी ने क्या सोचा था कभी कि जिंदगी पानी की बूंद नहीं जहर है, और जीने के लिए जहर भी पीना पड़े तो सुमन भाभी को ऐतराज नहीं था। अपनी जान की बाजी लगाकर, समाज के सब बंधन तोड़कर जब वो बिरजू भाई के साथ शहर चली आई तो उन्हें क्या पता था कि शहर एक जीता जागता जानवर है जो टुकड़े टुकड़े करके उनके शरीर, उनकी चिंता और उनकी बची हुई बेबसी को खत्म कर देगा।
1: मगर केवल सुमन भाभी ही नहीं, उनके साथ एक दिन शालिनी भी खो गई। शालिनी भी खो गई जिंदगी नामा लिखते लिखते। सिर्फ मैं भाग निकली। शालिनी की डायरी आज भी मेरे पास है, जिसमें कभी कभार नजर डालने के लिए कोशिश तो मैं करती हूँ, मगर डर लगता है।
0: और किसका डर है, भगवान का या शैतान का? राहों में जब फूल नहीं है तो अंगारे ही सही। कांटों की चुभन को जो अपना चुका है उसके लिए रोना क्या है।
1: रोना तो कुछ भी नहीं है, मगर कभी कभी जिंदगी से जूझने के बाद जब अपने अस्तित्व को खो देना पड़ता है, तब लगता है कि हार जाने से कितना अफसोस, कितना अपमान और कितनी लांछना।
0: मगर मेरे लिए न जीत में उल्लास है न हार से बेबसी। मैं तो एक अनजान राही हूं, जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। चलते चलते जो भी मिले क्षण भर के लिए वही अपना, वो घर अपना, वो रास्ता ही अपना है।
5: शालिनी ने कभी मुझे महाभारत की कहानी सुनाई थी। उसका कहना था कि ये कहानी उसकी दादी माँ की देन है। दादी माँ हर वक्त कहती थी,
6: देखो बेटा, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, एक से एक बढ़कर बलवान थे। बच्चे पैदा करना इतना ही बुरा होता तो पुराण में भी 100-100 बच्चे पैदा करने वाले राजा महाराजा ना होते।
0: दादी जी की ये कहानी सुनकर शालिनी क्यों नहीं सोचती थी कि अतीत और वर्तमान में एक लंबा चौड़ा समय का खंडहर है।
5: सोचने से क्या होता है, सोचने से समाधान तो नहीं हो जाता। शालिनी के छोटे छोटे भाई बहन आज भी कभी कभार रास्ते में मिल जाते हैं, उनके ऊपर दया तो नहीं आती बल्कि एक अपरिसीम आक्रोश मन में भर जाता है।
0: जिस तरफ देखो वही आक्रोश, अपना अधिकार जताने के लिए दूसरों के साथ लड़ाई करना और जिंदगी भर वही सांकेतिक गणित मन ही मन गुनगुनाना।
5: शून्य से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार और चार से फिर शून्य, महाशून्य, एक अनंत विस्तार।
0: फिर कभी कभार सूखा नहीं तो बाढ़, बाढ़ की चपेट में या कहीं से रिसी हुई जहरीली गैस के प्रभाव में सैकड़ों लाखों जानों का चले जाना, ये तो नियम है।
5: मगर आज हम क्या करें, कहां जाएं एक कर की तलाश में।

0: मान लो कि यही दुनिया हमारा घर है, आकाश है छत, धरती चट्टान, और सिर्फ हमारी छोटी सी बगिया में दो सुंदर फूल, दो नन्ही सी हरी चिड़ियां।
1: नन्हे मुन्नों की मुस्कान से है होने वाली सुबह, सीमित बच्चों की लाली कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। सोचो तो दिशा विहीन रोज ये भीड़ कहां जाएगी, जिन कंधों पर बोझ निरंतर उनकी रीढ़ कहां जाएगी। टूट ना जाए डाली कोई मौसम के प्रश्नों से, अपनी मुंडेर से दूर चिड़िया लेकर नीड़ कहां जाएगी, कहां जाएगी, कहां जाएगी।
0: छोटा सा घर, छोटा सा सुंदर परिवार, और हम दोनों, भीगी हुई पलकों में बिखरे हुए सुंदर सपने, और दो उत्तर पुरुष

आकारहीन घरौंदे, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। प्रतिभागी कलाकार थे गौसुल रशीद, दिशी घी, घनश्याम शेंद्रे, ब्रिजलता वर्मा, अभ्रतिता मोइत्रा, सर्वमित्र सुरजन, मधुसूदन उषा, कमल शर्मा और प्रभा डामोर। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे श्री उमा शंकर पंडा। प्रस्तुति सहायक प्रभा डामोर और तकनीकी सहायक थे श्री द्विबिंदु मुखर्जी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, इमारतों की बुलंदी पे कोई मौसम आया क्या, कहां से आ गई कच्चे मकान की खुशबू। जैसे जैसे मौसम गुजरते हैं, किताबों में लिखे मौसमों का जिक्र हमें अपना सा लगने लगता है। जैसे मैंने अभी ये चंद लाइनें पढ़ी जिन्हें लिखा था शायर बशीर बद्र ने, और सचमुच इन्हें पढ़कर लगा कि सच ही अब शिद्दत से इंतजार है उस मौसम का जब आसमान से दुआओं की तरह बरसेगी बरसात, मिट्टी की खुशबू मोह लेगी हमारा मन और मन की बेकली कुछ कम होगी। बहरहाल बारिशों के इंतजार संग आपको भी होगा इंतजार आज के फोन इन फरमाइश का। तो लीजिए हाजिर हैं हम, स्वीकार कीजिए प्रवीणा त्रिपाठी का नमस्कार और चलिए की जाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हाँ जी, हाँ मैडम, फोन इन फरमाइश। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: हाँ जी, हाँ मैडम, मैं छत्तीसगढ़ राजनांद गांव से वीरेंद्र गंधर्व बोल रहा हूँ।
0: वीरेंद्र जी, आपका हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: वीरेंद्र जी क्या करते हैं?
1: जी मैडम, मैं एक दृष्टि बाधित शिक्षक हूँ और करीब 40 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ। ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाता हूँ बच्चों को, और कई बच्चे बच्चियाँ जॉब में भी हैं मेरे।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है।
0: जी जी, क्या बात है। तो वीरेंद्र गंधर्व जी, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप?
1: जी मैडम, मुझे तो 40 साल हो गए।
0: अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाते हैं?
1: जी मैडम, मैं प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण है, इस तरह के मेरे विषय होते हैं।
0: आज का जो दिन है वो है पर्यावरण दिवस का दिन।
1: हाँ जी मैडम,
0: तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे बदलते हुए पर्यावरण के बारे में आप?
1: जी मैडम, मैं यही कहूँगा, गर्भ ही देते हैं जीवन सबको, क्यों मिटाने पर तुले हुए हो इस दयालु रब को, रोको अपने हस्तों को, काटो ना दरख्तों को।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बताइए आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी मैडम, गीत सुनूंगा। एक बात बता दूं मैडम कि आपकी आकाशवाणी को, क्योंकि 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: इन शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा।
0: जी,
1: आकाशवाणी छा गई, 90 वर्ष की उम्र में भी हमें भा गई, मनोरंजन और ज्ञान की थाती बरसों से रही, वंदना मानस गान के जरिए

0: गई, आकाशवाणी ने सदा रखा है हर वर्ग का ध्यान, लाभान्वित महिलाएं बच्चे बूढ़े और जवान, साक्षात्कारों से ये प्रेरणा जगा गई छा गई, आकाशवाणी छा गई।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सारा धन्यवाद, आपने आकाशवाणी के बारे में इतनी खूबसूरत बातें कही। तो अब हम जानना चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनने वाले हैं?
0: बिन फेरे हम तेरे, इसका एक शीर्षक गीत है। जी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन फेरे हम तेरे।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: देवनारायण साहू बोल रहा हूँ मैडम, ग्राम भोईना पार पोस्ट लाटापुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से।
0: देवनारायण साहू जी का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या करते हैं आप?
1: बस मजदूरी काम करता हूँ मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी आपका कहाँ काम चल रहा?
1: अभी गाँव तरफ ही काम चल रहा है मैडम, बाकी समय अपन दूर के पहले तरफ ट्रेन से चले जाते हैं मैडम काम करने।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी आज का जो दिन है वो है पर्यावरण दिवस का दिन। क्या समझते हैं आप, हमारा जो पर्यावरण है वो बदल रहा है, आपको कैसा लगता है, हमें क्या प्रयास करने चाहिए इसके लिए?
1: मैडम इसके लिए आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए मैडम,
0: और जो प्लास्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं उससे भी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बहुत ज्यादा।
1: हाँ मैडम, जो प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए मैडम, क्या है आजकल कचरा ऐसी आसपास फैला देते हैं मैडम।
0: जी जी,
1: ये अच्छी बात नहीं है
0: जी। प्लास्टिक की वजह से तो हमारी जो जमीनें हैं वो बंजर हो रही हैं, और हमारे पशु जो हैं प्लास्टिक अगर खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है, तो प्लास्टिक पे प्रतिबंध बहुत जरूरी है।
1: हाँ मैडम,
0: तो इसके लिए प्रयास तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा ना, कि अगर हम कागज के या कपड़े के थैले उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक की थैलियों में कम हम सामान खरीदेंगे और कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
1: हाँ मैडम,
0: है ना।
1: और क्या डंप करने के लिए, कचरा डंप करने के लिए कचरा का घेरा बना हुआ है मैडम अपने गाँव।
0: हाँ हाँ,
1: क्या बोलते अपने यहाँ रेलवे स्टेशन है मैडम, लाटापुर रेलवे स्टेशन।
0: अच्छा अच्छा,
1: ताड़ू की तक ट्रेन चलती है मैडम अपने यहाँ।
0: अच्छा, तो मतलब आवागमन की अच्छी सुविधा है आपके यहाँ। तो बताइए देवनारायण जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैडम कयामत फिल्म की गाना है मैडम, वो लड़की बहुत याद आती है।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार मैडम, पर्यावरण दिवस के हार्दिक बधाई, आप शुभकामनाएं मैडम जी।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम।
0: नाम बताएंगे अपना?
1: नारायण लाल साहू
0: जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: अभी मानसून आने वाला है, इसके पहले पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यही
0: तो बताइए आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते
1: हैं? वो अनारी का सुना देना, फूलों सा गलियों से एक मुस्कान है, वह गाना सुना देना मैडम।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: मैडम, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा जी का हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैडम जी। और आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस, तो मैं सभी मेरे जो प्रिय रेडियो दोस्त हैं, साथी हैं, उसको मैं पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ।
0: जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी,
0: जी बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: क्या है मैडम जी, हम लोग तो खेती किसानी करते हैं और आज का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो मेरे सभी श्रोताओं से और जितने भी हमारे रेडियो प्रेमी हैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पेड़ जरूर लगाएं
0: जी,
1: और जो अपनी जिंदगी है उसको सुगम, सरल, सहज बनाएं।
0: बिल्कुल,
1: क्या है पेड़ ही तो है, और इसके द्वारा जो दी गई हमको विरासत में जो मिला है हमको, तो हमारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा योगदान है मैडम जी, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: जी जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन होगी तो हम जीवित रहेंगे। सबसे बड़ा इसका यही जो संदेश है वो यही है कि अगर हमारे पृथ्वी पर पेड़ नहीं, जंगल नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हम सब हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: जी जी,
0: तो
1: जितने भी जीव जंतु है या पर्यावरण है सभी नष्ट हो जाएंगे मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना है आप?
1: एक फिल्म है मैडम जी, आ अब लौट चलें, एक ऐसी मुलाकात है, यही गाना सुनवा दीजिए मैडम जी।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: और सबसे पहले आपको विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और मैं मैडम, मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ, यहाँ तो पानी गिरा है मैडम, और उमस गर्मी है, धूप भी है, हवा कम चल रहा है, और जंगली नर्सरी के बीच में हूँ, और बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और हवा चलता है, रुकता है, बंद होता है, इस टाइप का मौसम चल रहा है मैडम।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा मैडम कि इस मौसम में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि बरसात के दिन है, पर्यावरण में शुद्ध हवा हमें मिलता है, पौधरोपण करें, छोटे छोटे पौधे लगाएं, आम की गुठली और जामुन की गुठली भी जरूर लगाएं, जिससे कि हमको फल भी मिले, शुद्ध हवा भी मिले। वर्षा पेड़ पौधों के द्वारा ही होता है।
0: जी जी,
1: पेड़ पौधे को ना काटें, उनको समझाइश दें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हुए उनका सुरक्षा भी करें।
0: तो बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग, और गीत के बोले हवन करेंगे, हवन करेंगे।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्ते। हम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सियाराम यादव बोल रहे हैं, कांकेर से। ये
0: सियाराम यादव जी, आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: हमारे बहू, दो बहू है मेरे,
0: जी
1: उन लोग रेडियो में सुनना पसंद करते हैं, मैं
0: अच्छा,
1: सुनाता हूँ। रितु यादव है, सरिता यादव है, एक गाना सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं। गाना का नाम है पगला, कहीं के फिल्म नाम है,
0: जी
1: गाना का नाम है तुम मुझे ये भुला ना पाओगे।

0: हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं टिकेश्वर ध्रुव बोल रहा हूँ, मैं गरियाबंद खुड़गांव से।
0: टिकेश्वर जी, आपका इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद। मैं
0: क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं मैडम।
0: अच्छा, तो अभी बारिश का इंतजार है आपको?
1: हाँ, अब बारिश का इंतजार है मैडम, गर्मी बहुत है तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं हम लोग।
0: अच्छा, कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरे परिवार में मेरे माँ है, भाई है, भाभी है।
0: अच्छा,
1: सभी
0: तो
1: लोग।
0: सभी लोग रेडियो सुनते हैं?
1: जी मैडम।
0: कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं आपके घर में?
1: मुझे नमस्कार रायपुर बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: अच्छा,
1: फरमाइश फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत युवानी कार्यक्रम।
0: हाँ, तो नमस्कार रायपुर में आपको कौन सा, क्या चीज पसंद आती है आपको?
1: नमस्कार रायपुर में जो सूचना मिलता है मैडम, जो सबसे पहले नमस्कार रायपुर से ही प्राप्त होता है।
0: हाँ, सही बात है। तो उस सूचनाओं के ऊपर कुछ अमल करते हैं?
1: जी मैडम करते हैं।
0: जी, तो बताइए कि आज के कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवा दे?
1: मुझे बॉर्डर फिल्म के संदेश आते हैं।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने की थी शुक्रवार 5 जून को दिन में 11 बजे से 11:30 तक। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आने वाली बारिशों में पेड़ लगाइए और पानी को कुएं, तालाब, बावड़ी में या जमीन के भीतर इकट्ठा करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि बारिशें खुशियां लाती हैं और खुशियों को सहेज कर रखना हमारा काम है। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी को। नमस्कार।
1: फोन इन फरमाइश, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी प्रवीणा त्रिपाठी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। अब समाचार विस्तार से। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विश्वविद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि छात्र आज रात मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों की 13 पारियों में 57.3 के औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेकर ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू रसोई गैस कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं ज्योतिका रॉय के स्वर में गीत। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 9 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 9 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार यानी 9 जून को ही शाम 7:30 पर होगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और इस सूचना के बाद लीजिए फिर सुनिए ज्योतिका रॉय के स्वर में ये गीत।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे ज्योथिका रॉय के स्वर में गीत। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम सुनैया जम्मू श्रोता संगवारी मन के हम स्वागत करत हन आज के कार्यक्रम में। आओ ये कार्यक्रम ला लेके आज आपके संग में मैं हूँ अनुभा अग्रवाल। तो स्वीकार करो मोर माया ले भरे राम राम। कार्यक्रम के पहला गीत ला सुनाए बर हमला पत्र के माध्यम ले फरमाइश भेजी हैं भाटापारा ले बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोनाडीले सुब्रत चौधरी ग्रामखट्टी महासमुंद ले हैं सुभाष छाया शर्मा एसोराम साहू मालती अवलोकेश साहू हटरी बाजार भाटापारा ले मोहम्मद जावेद एकता यदु पूजा यदु और रेशमा निषाद बाजार पारा बेमेतरा ले हैं भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार और लक्की सिन्हा रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश करुणा वर्मा शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश सचिन अववाणी वर्मा गंडई टिकरीपारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई देवांगन दीपक कुमार जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन ग्राम बुड़गहन ले हैं रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला उषाशिकांता प्रजापति ग्राम बेलरगांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन और यही गीतला सुनाए बर हमला ईमेल पठोइन है ग्राम सलोनी घुमका ले देवचरण साहू हेमा साहू ग्राम गणौदा जालबांधा ले पारकदास साहू किरण साहू ग्राम पथरिया धमधा ले हैं शेष नारायण और पिंटू साहू ग्राम नागर कोहरा राजनांदगांव ले झग्गर राम साहू जामुन देवी समीक्षा उराध्या साहू यहीं ले हैं प्रेम पूजा दुष्यंत और प्रांजल साहू डबरापारा सौंगा मगरलोड ले कोमल तोषण विनायक सेन कोड़ापार अभनपुर ले हैं नारायण सेन पंकज कुमार सेन महासमुंद ले भीषमदास मानिकपुरी नर्मदा मानिकपुरी लक्ष्य दीपक दास ग्राम नेवई उतई ले की देवांगन उर्वशी जतिन जयंत उकुणिका देवांगन ग्राम बोगाटोला मोहला मानपुर ले मालिकराम सविता देवी सिन्हा तारामती अवमुनिंद कुमार सिन्हा हसदा नंबर दो ले लक्ष्मी साहू गीतांजलि आकांक्षा साहू और ग्राम सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश चंद्रवंशी और प्रतिभा चंद्रवंशी। आप सब सुनना चाहत हो झालाराम साहू और संगवारी मन के गाए ये गीत।

झुमुकलाल देवांगन अवमंजू चतुर्वेदी के गाए गीत ला सुने पर हमला फरमाइश पठोइन हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरियाना मल अनीता मोटवानी राजेश मुकेश मोटवानी नागपुर ले हैं अशोक कुमार सावलानी पटपर डोंगरगढ़ ले रामगोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता उजयंत्री ध्रुव नर्मदा धाम सुरसुली ले कैलाश यादव सुरेश टिकेंद्र योगेश यादव करही भदर ले हैं पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा शारदा निर्मलकर लोचन विद्यार्थी गीतिका गुड़िया लल्ली और गिन्नी डोंगरगांव और आनंदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का उतनमय गजभिये नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सीमा शारदा दामिनी वर्मा भाटापाराले राधेश्याम टेलर जितेंद्र साहू देवरी भाटापाराले हैं गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री बेमेतरा मुलमुलाले नेतराम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिम्पल रमेश्वर साहू ग्राम पंचायत गोंधला उदयपुर ले हैं जीवधन सिंह पैकरा धुरनी करिश्मा कलेश्वर सोमार साय पैकरा बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा सुजान वर्मा लोरमी ग्राम चचेड़ी ले जगदीश सिंह मरावी सावित्री चमन अमन सुमित मरावी ग्राम सिवनी खुर्द रेंगाखार ले तातू राम पालके मथुराबाई हेमंत और चंद्रहास पालके बाबा कुटी उफरा पाटन ले यमुना हेमलता तुलसी गोपी साहू संतोषी नगर रायपुर ले रोशन गोपाल आकाश अवसाक्षी ठाकुर भरदा कला साजा ले हैं रोम कुमार साहू किरण साहू जूट मिल रायगढ़ ले तुलसी सोनम मोहन रेशमा सोहन बागड़िया यवतमाल विदर्भ ले संतोष और विनोद खटसे।

धमनी राजीम लेहें दुष्यंत कुमार और आशीष कुमार पंजारे ग्राम जैसा कर्रा चारामाले असाड़ू राम खिलावन और ऋषभ निषाद महागांव यवतमाल ले संतोष और विनोद खड़से बठेना पाटन ले अनीता नीलू वर्मा ग्राम बन बघेरा ले योगेश और आशा सारवा संबलपुर ले हैं मास्टर दिव्यांश साहू गुड्डू साहू कोटा रायपुर ले अरुण अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा उदिनेश सेन रामनगर रायपुर ले हैं राजेश अंबादे शशिकला और पूजा अंबादे भिलाई जामुल्ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय और पूजा प्रधान चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले हैं सुशील जैन कल्पना श्रेया सौरभ शौर्य और शुभम जैन लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू लालपुर मारोले कीर्ति कुमार ध्रुव संतोषी ध्रुव बीजेतला जालबांधा ले भिनेश्वरी सुनीति कुमारी बाई देवांगन और मथुराबाई यदु कुल्हारीकोट पांडुका लेहें नरोत्तम कश्यप नीतू कश्यप भैंसमुंडी मगरलोट ले खेमेश्वरी कुमारी बाई यहीं लेहें भागवत राम और तुलेंद्र कुमार आप सब सुनना चाहत हो कृष्ण कुमार पाटिल और साथी के गाए ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से इस समय आप मन सुनत हो छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। कार्यक्रम के अगला गीत पर हमला फरमाइश ये श्रोता मन की मिली है। लाखा टोला बिडोरा ले मनु यादव, दुर्गेश गोपीचंद मुस्कान रुक्मणी यादव, सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू राम साहू लोकेश संतोष अभिषेक विश्वकर्मा, लोहारीडी जिला कवर्धा ले हैं अशोक कुमार लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू, लोरमी ग्राम करुहा नारले गोमती और काजल रजक, धमनी राजिम ले हैं दुष्यंत कुमार बंजारे आशीष कुमार बंजारे, खमार मुड़ाले शिवाय गिरी गोस्वामी एकांशी गोस्वामी, यहीं ले हैं सतीश गिरी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी, लोरमी ग्राम तिलकपुर ले चंद्र कुमार चंद्रेश कुमार मालती मयंक मरावी, भाटापारा ले हिमकेश्वर करण राहुल और चंपा साहू, भंवरपुर बसना ले हैं राधेश्याम चंपा राजू नेहा और जगदीश देवांगन, गंडई पंडरिया ले दरियाना मल मोटवानी अनीता राजेश मुकेश मोटवानी, भूतकछार लोरमी ले दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम और धनराज मरकाम, उच्च भट्टी बिलासपुर ले मुकेश मधु आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी, सिमगा ले हैं रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सनी कोमल यादव, पहांदा कोरबा ले समय लाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे, सरक बूंदिया ले गब्बर साहू निर्मला देवी साहू, कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन, हटरी चौक बिलाईगढ़ ले हैं खीख राम देवांगन रेणु रजनी और पिंकी देवांगन, सिर्री गातापार ले लावण्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज और प्रभु राम साहू, और बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल भाव्या और प्रियांश देवांगन। आप सब सुनना चाहत हो लखन नेता मऊ सीताराम वर्मा के गाए ये गीत ला।

कार्यक्रम के आखिर में आप मनला सुनवावथन नाचा गीत जे लगावत है महासिंह चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार और फरमाइश आप सबके है। बिहारी कॉलोनी लोनीले परवीन डोम सरफुरुद्दीन डोम कुमारी वली डोम कुमारी डब्लू डोम जेल रोड मथुरा ले हैं वसीम आसमा बेलदार अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार ग्राम सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले हेमा दामले कांतिबाई राजेंद्र कुमार दामले ग्राम चनागांव धमतरी ले लालिमा मरकाम जयंती शोरी आशीष नेताम कोमल शोरी नंदलाल मरकाम धवलपुर ले धनंजय मिश्रा अर्चना मिश्रा चंद्रकांती अवगेंदलाल मिश्रा ग्राम पंचायत बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौद ले सुजान वर्मा सोहद्रा आयुषी अवकृत वर्मा दत्रेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीणा यदु दरचूरा ले फिरंता साहू दुलौरीन साहू कामेश्वरी औ प्रीतम कुमार साहू औ मोपका भाटापारा ले हैं दयालु राम तेज राम वर्मा सहदेव रामजी औ चिरंजीवी वर्मा।

यही गीत संग अब होवत हे हमर जाए के बेरा। फिर जाए के पहली आप मन ला बता दन, आज के कार्यक्रम में गीत ला जोड़े रहिन बीरभान साहू। तो अब देवो अपन संगवारी अनुभा अग्रवाल ला बिदा। जय जोहार।

0: आप मन के गीत छत्तीसगढ़ी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 1 बजे हैं। हिंदी समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक

0: की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

समाधि फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है मस्ताना।

अभिनेत्री फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार की।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

स्पोर्ट्स केन रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में सुनिएगा कर्नाटक गायन में MSN मूर्ति का कर्नाटक वायलिन वादन। इस कार्यक्रम को भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे। आज रात 9:25 पर आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर

विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत वंचितों को वरीयता इस विषय पर कार्यक्रम। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की पांचवी कड़ी सुनिएगा आज रात 8:15 पर।

आज शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात होगी खरीफ फसल में ट्राइकोडर्मा विरडीले रोग प्रबंधन इस विषय पर। और आज की सलाह में वर्षा जल संरक्षण एवं शून्य भू परिष्करण विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर के साहू वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के।

कानून की बात इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर सुनिएगा। संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता श्री आशुतोष द्विवेदी द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति होगी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय रहेगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही होंगे क्रम आज मेरी बारी है और नए तराने। शाम 6:05 पर होगी जिले की चिट्ठी। इसमें आज आप सुनेंगे बिलासपुर जिले की चिट्ठी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ होगा शाम 5:00। अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय रहेगा खाद्य पदार्थों को व्यर्थ बर्बाद न करें। क्रम आपकी रसोई से और गीत संगी। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00 2:30 पर। शाम 7:00 रात 8:00। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

सुनिए ना, हम कुछ पल ही सही साथ साथ चलते हैं, रास्ते में मिले सुनहरे सपनों के गुलमोहर से ढेर सारी बातें करते हैं, मुस्कान के कचनार से कुछ रंग चुराते हैं, नेह के गुलाब के पास कुछ ठहर जाते हैं, चुनौतियों की चंपा से नजरें मिलाते हैं। आइए ना कुछ देर के लिए महत्वाकांक्षा के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, खुशियों के झरनों के साथ खिलखिलाते हैं, आपके सानिध्य की उंगलियां थामे समझौतों के पुल से भी गुजर जाते हैं, मौन की भाषा का शब्दों से श्रृंगार करते हैं। आइए सखियों, हम और आप साथ गुनगुनाते हैं, कुछ अपनी कहते हैं और कुछ आपकी सुनाते हैं। जून महीने के पहले रविवार की सुनहरी दोपहरिया में बिंदिया कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी का प्यार

से नमस्कार। जी हाँ सखियों, प्रारंभ से हम सुनते आ रहे हैं। हमारी दादी माँ कहा करती थी, उतना अन्न लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। अनाज के एक एक दाने का सम्मान करना, भोजन को ईश्वर मानना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ हमारी थाली में आता है उसमें माटी के देवता किसानों का श्रम है, पिता का परिश्रम है, प्रकृति का अनुदान है और माँ का प्यार समर्पण और उनके हाथों का वो स्पर्श है जो उसे सिर्फ भोजन नहीं ईश्वर का प्रसाद बना देता है। खाद्य पदार्थ आज हमारी मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिंदगी को गति। अब प्रश्न यह है कि भोज्य पदार्थ को हम व्यर्थ होने से कैसे बचाएं? उसके कुछ बिंदु हैं जिस पर हम बातें करेंगे सखियों। जैसे कभी भी बाजार से ज़रूरत से ज़्यादा राशन, सब्जियां और खाद्य पदार्थ खरीद कर ना लाएं, क्योंकि कई बार ऑफर के लालच में तो कभी बार बार बाजार जाने से बचने के लिए बहुत सारा सामान हम ले आते हैं, फिर उसे रखने में परेशानियाँ होती हैं और वो ख़राब भी होने लगता है। साथ ही उतना ही भोजन बनाएं जितनी की आवश्यकता हो। अगर कुछ बच रहा है तो उसे किसी को तभी दें जब तक वो ताज़ा हो। बची हुई सब्जियों को, दूध दही भोजन को साफ डब्बों में रखकर रेफ्रिजरेटर में रखिएगा सखियों। मेवे और कुछ सूखे अनाज फल को भी उपयोग के बाद अच्छी तरह से फ्रिज में रखिएगा। सखियों, आज है 7 जून और इस दिन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श कर देश में उसकी आवश्यकता और भरपाई के लिए लोगों को जागरूक करना है, भोजन की गुणवत्ता के महत्व को सबको समझाना है। हाँ, और एक बात, जब कभी भी आप भोजन करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी ने बहुत मन से, मेहनत से और समर्पण से आपके लिए थाली परोसी है, तो उसके लिए मन में सम्मान की भावना ज़रूर रखिएगा। जब भी परिवार में कोई आयोजन हो तो बचे हुए खाद्य पदार्थ को ज़रूरतमंद लोगों में वितरित करवा दीजिएगा। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपकी इसमें मदद करेंगी। आप सभी को खाद्य सुरक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी हौले हौले तो कभी लहरा कर भागती है, कभी हौले हौले तो कभी लहरा कर भागती है, कभी रुकती नहीं ना जाने कहाँ चली जा रही है। कहो ना पवन, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, आखिर किसकी तलाश है तुम्हें।

लता मंगेशकर के मधुर स्वर में सखियों, अभी आपने जो गीत सुना वो फिल्म हरजाई से लिया गया था। रचना निदा फाजली की थी और संगीत की लहरियों से सजाया था आर डी बर्मन ने। हाँ जी सखियों, किसी नारी का आर्थिक स्वावलंबन परिवार के विकास के साथ सुख शांति और खुशियों के लिए भी ज़रूरी है। अगर नारी अपनी प्रतिभा पहचान लेती है तो उसे मेहनत करके और भी निखार कर आमदनी का साधन बना सकती है। मेरी एक परिचित सरला दीदी हैं जिनके ऊपर घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां थीं, जैसे बुज़ुर्ग सास ससुर, बच्चों की देखभाल। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे घर पर ही रहकर कुछ आय अर्जित कर लें। सरला दीदी शिक्षित हैं तो उन्होंने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लास शुरू की। पहले तो बच्चों कम आए, लेकिन उनकी मेहनत और लगन से बच्चों की संख्या बढ़ती गई और दिन पे दिन उनकी ट्यूशन क्लास सरला दीदी की चल पड़ी। अब वे घर पर ही रहकर आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने लगी हैं। ऐसी बहुत सारी सखियां हैं जो किसी न किसी कारणवश घर से बाहर नहीं जा सकती, तो घर पर ही रहकर छोटे छोटे गृह उद्योग लगा सकती हैं, जिसमें हमारी सरकार उनकी सहायता भी करती है। अगर आप शिक्षित हैं तो ये बहुत अच्छी बात है सखियों। और अगर आपके भीतर कोई कला है, जैसे गायन, नृत्य, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग और भी कोई हुनर, तो उसकी क्लास चलाकर घर पर ही धन कमा सकती हैं सखियों। आज की नारी सब कुछ कर सकती है अगर उसे अपने परिवार का प्यार, सहयोग और विश्वास मिल जाए तो। पैरों में हैं अगर विपरीत हालातों की बेड़ियाँ तो वो हौसलों के पंखों से उड़ लेती है। पैरों में है अगर विपरीत हालातों की बेड़ियाँ तो वो हौसलों के पंखों से उड़ लेती है। आज की नारी है वो, तदबीर से अपनी बिगड़ी तकदीर भी बना लेती है।

साहिर लुधियानवी का लिखा गीत सखियों अभी आपने सुना, जिसे संगीत की लहरियों में पिरोया था एस डी बर्मन ने, आवाज का जादू गीता दत्त का था और फिल्म थी बाजी। सखियों, किसी का साथ हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब कोई हमारे साथ हो तो धूप छांव दिन रात सब कट जाते हैं। हमारा और आपका साथ भी तो इतना ही बेमिसाल है ना सखियों।

सौदागर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सकी हूँ। रचना और संगीत रविंद्र जैन का था और स्वर था लता मंगेशकर का। हाँ जी सखियों, एक माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। वो उसे जितना बेहतर पहचानती है उतना शायद दुनिया में कोई नहीं। बच्चा शाला तो बाद में जाता है पर माँ उसे संस्कारों के साथ शिक्षा देना पहले ही प्रारंभ कर देती है। अगर पढ़ाई को भारी भरकम बोझ की तरह हम बच्चों में ला देंगे तो वे उससे दूर होने लगेंगे। सखियों, हमें खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे उन्हें गिनती सिखाना है तो गाकर कुछ रुचिकर बनाकर सिखाएं, या फिर रसोई में उन्हें कुछ सामान दे दें जिसे वे गिनकर आपको दें। रंगों से परिचित कराना है तो उन्हें रंग बिरंगी खाने वाली चॉकलेट या फिर उनके मनपसंद फलों से उन्हें रंगों से अवगत कराएं। उनके साथ अंताक्षरी खेलें, कभी गीतों की तो कभी शहर के नामों की, कभी राज्यों के नामों की तो कभी फल फूलों के नामों की। इस तरह हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखा सकते हैं। सखियों, इतनी ढेर सारी बातें हो गई सखियों, लेकिन अभी भी आपसे विदा लेने का मन ही नहीं कर रहा। कितनी भी कर ले बातें, कुछ दास्तां अधूरी रह जाती हैं। कभी मन की बात अधूरी तो कभी अनकहे जज्बात अधूरे।

आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में हम दोनों फिल्म का गीत सखियों अभी आपने सुना। रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत से गीत का श्रृंगार किया था जयदेव ने। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा सखियों, पत्रों एवं ईमेल के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही दीजिएगा अनुमति अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी को। नमस्कार।

ये था महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहले सुनिए गुलजार का लिखा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है देवता।

0: रजनीगंधा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। योगेश की रचना थी, संगीत था सलील चौधरी का। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: घर फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत के लिए संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार की शब्द रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का था और फिल्म थी घर। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी कार्यक्रम में कुछ और गीत सुनिएगा दोपहर 2:30 से। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8 बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
5: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत

0: प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: पुष्पा फिल्म का ये गीत था, जावेद अली और साथियों की आवाज़ों में। गीत रकीब आलम का था और संगीत था देवी श्री प्रसाद का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत के लिए संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल।

0: रईस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और पावनी पांडे की आवाज़ों में। गीत इंदिवर का था और संगीत था प्रीतम का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: पल पल दिल के पास, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाजों में। शब्द रचना सिद्धार्थ गरिमा की है और संगीत है सचेत परंपरा का।

जीनियस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीत कुमार का था और संगीत था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं इरशाद कामिल की रचना अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में, संगीत शाश्वत सचदेव का है और फिल्म है धुरंधर।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इसी मीटर्स पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
1: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सहअध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया

0: है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला है। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और कई अन्य भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 15वें ओवर में 2 विकेट खोए और 49 रन बनाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sunil Verma. India-Indonesia Joint Commission meeting is underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono are co-chairing the meeting. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
2: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years we made good progress in our bilateral relations. Today I look forward to extensive discussions with you covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
1: Indonesian Foreign Minister Sugiono also said this is an important meeting to allow both the countries to review the progress of cooperation since the last Joint Commission meeting held in 2022.
3: I think it is important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held 2022 to address outstanding subjects to our common interests and follow up the result of the leaders meeting during President Prabowo's visit to India, and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes.
1: Union Home Minister Amit Shah has called for a close watch on financial and property transactions along international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern states. The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighbouring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada.

आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। गीत है फिल्म मेरे सनम से, आवाज है मोहम्मद रफी आशा भोसले की, संगीत बनाया ओपी नैयर ने और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। गीत के बाद ठीक 3:30 पर प्रसारित करेंगे प्रोग्राम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं प्रोग्राम रेडियो किड्स में और मेरा नाम जिनिशा सुलानिया है।
1: मेरा नाम वंशिका ठाकुर है।
2: मेरा नाम नव्या ठाकुर है।
3: मेरा नाम आव्या यादव है।
0: आज मैं दैनिक दिनचर्या बनाने के फायदे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दैनिक दिनचर्या हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है। इससे हमारा हर काम समय पर होता है और हम अनुशासित बनते हैं। नियमित दिनचर्या से पढ़ाई, खेल, आराम और सभी के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम तनाव से दूर रहते हैं। मेरे दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, खेलना और रात को जल्दी सोना है। इसलिए हमें एक अच्छे दिनचर्या को अपनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। वंशिका, आप क्या कहना चाहते हो?
1: मेरे दिनचर्या में रोज थोड़ा समय किताब पढ़ना और संगीत सुनने के लिए भी निकालती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे दिनचर्या हमें सफल और व्यस्त बनाने में बहुत मदद करते हैं। आव्या, आप कुछ कहना चाहते हो? आप इतना चुप क्यों बैठे हो?
3: मेरी दिनचर्या तो बहुत मज़ेदार है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश करती हूँ, फिर ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पीती हूँ, फिर एक्सरसाइज करके नहाती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके स्कूल की रेडी हो जाती हूँ, फिर स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद लंच करती हूँ, फिर थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ, उठने के बाद स्केटिंग जाती हूँ, स्केटिंग से आने के बाद पढ़ाई करती हूँ, फिर डिनर करके सो जाती हूँ। डेली रूटीन बनाने से हमारा काम भी समय से हो जाएगा और हम हेल्दी भी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे।
0: वाह अव्या, बहुत अच्छी जानकारी दी। तुम्हारा रूटीन तो बहुत अच्छा है।
3: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: जरूर सुनाइए।
3: सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठकर झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना, नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, माँ का हरदम कहना सुनना, ऐसे राजा बेटा बनना।
2: मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ।
0: हाँ नव्या, बताओ।
2: पर्वत कहता शी

0: छोड़ो कितना ही पो सर पर बार, नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार।
1: बातें बहुत हो गई, क्यों ना कुछ गाना सुन ले।

0: गाना सुन के तो बहुत मजा आया। अब हम आकाशवाणी के अपने पसंदीदा कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं।
1: जिनिशा, तुम्हारा आकाशवाणी का पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
0: मुझे आकाशवाणी के रेडियो किड्स और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है। इन कार्यक्रमों में रोचक कहानियाँ, कविताएं, सामान्य ज्ञान और प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलती हैं। इन्हें सुनकर मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है।
1: और मुझे संगीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। पुराने गीत सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है।
2: अगर मैं आकाशवाणी में एक दिन के लिए आरजे बन जाऊं, तो फिर सबसे पहले मैं बोलूंगी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आप नानी आरजे आव्या, वेलकम टू माय रेडियो शो। फिर सुनाऊंगी मजेदार कहानियाँ और फिर पूछूंगी फन क्वेश्चन और बच्चों को कहूंगी खेलो कूदो सीखो और हमेशा खुश रहो। बीच बीच में सबके लिए प्यार प्यार मैसेज भी दूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा रेडियो प्रोग्राम? फिर मिलते हैं आपकी अपनी आरजे आव्या के साथ। बाय बाय।
0: अरे वाह, हम लोग भी अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। अगर तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत श्रोताओं का स्वागत करके करूंगी। मैं बच्चों के लिए नए नए गीत लाऊंगी और मजेदार पहेलियां लाऊंगी।
3: मैं युवाओं के लिए प्रेरणादायक बातें और सफलता की कहानियां सुनाऊंगी और मैं श्रोताओं से बातचीत करूंगी, उनके पसंद के गाने चलाऊंगी और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहूंगी।
0: वंशिका, तुम एक बार आरजे बन के तो दिखाओ।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम और मैं हूँ आपकी दोस्त वंशिका। मौसम सुहाना है तो मुस्कुराइए और एंजॉय कीजिए शानदार गाने। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर हर पल मस्ती और एंजॉयमेंट का है। धन्यवाद।

0: गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अब समय है मस्ती, खेल और ढेर सारी कहानियों का। जिनिशा, तुम अपनी छुट्टियों में क्या क्या करना पसंद करोगी?
1: मैं अपनी छुट्टियों में अपने नानी के घर जाऊंगी और बहुत सारे मजे करूंगी। मेरे नानी के घर पे मेरी एक छोटी बहन है, मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है और मैं रोज स्विमिंग जाती हूँ शाम को और पार्क में खेलने भी जाती हूँ। नव्या, क्या अब तुम कुछ बोलना चाहोगी?
2: ना स्कूल की टेंशन, ना होमवर्क की टेंशन, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट।
3: अव्या, क्या अब तुम कुछ बताना चाहोगी?
4: मैं गर्मी की छुट्टी में रोज शाम को स्केटिंग जाती हूँ। मैं गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी के घर जाऊंगी और वहाँ पे मेरी बड़ी बहन रहती है, मुझे उसके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है।
0: साथ ही साथ मोबाइल थोड़ा कम और आउटडोर गेम्स थोड़ी ज्यादा खेलनी चाहिए। मस्ती करो, खुश रहो और छुट्टियों को यादगार बनाओ।
1: नव्या, आप क्या करने वाली हो गर्मियों की छुट्टी में?
2: तो दोस्तों, इस बार मैं अपने गांव जा रही हूँ और वहाँ पे मेरे कजन जा रहे हैं। वहाँ पे हम रोज हर दिन खेलते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं।
0: सही कहा नव्या, जब भी हम अपनी नानी के घर या दादी के घर जाते हैं बहुत मजा आता है। अपने कजन्स के साथ खेलते हैं, पूरे दिन मजे करते हैं और वो एंजॉयमेंट वापस कभी नहीं आता। इससे हमारे रिश्ते या फिर रिलेशंस जुड़े रहते हैं।
1: गर्मी बहुत है इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए और ज़्यादा बाहर नहीं चलना चाहिए, और अगर हम बाहर चले तो फिर हमें बुखार भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने आप को ढककर जाना चाहिए।

0: अब बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की।
1: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत देशभक्त और साहसी थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें साहस, देशभक्ति और कठोर संकल्प की प्रेरणा देता है। हमें उनका आदर्श का पालन करना चाहिए और अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए।
0: आव्या, क्यों ना तुम कुछ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोलो।
2: मेरे प्रेरक पुत्र हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें हम प्यार से नेताजी भी कहते हैं, और उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे बहुत बहादुर थे और अपने देश से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमेशा हमें साहसी बनना चाहिए और हमेशा हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलके कहें जय हिंद। धन्यवाद।
1: वाह वाह, कितनी अच्छी कविता थी।
0: उनका जीवन हमें साहस, अनुशासन और देश प्रेम की प्रेरणा देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों बाद सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने का उत्सव मनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हुर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई तथा 1996 में सिद्दीकी शमी के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नुरवुट्टम से सिनेमा जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मंडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के आज दूसरे दिन 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 82 रन बना लिए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूरे देश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India-Indonesia Joint Commission meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. In a social media post, Dr. Jaishankar said, "The comprehensive strategic partnership between both nations has witnessed a strong growth in recent years." He said the substantive discussions were held on political, defence and security, maritime and shipping, trade, fintech, health, pharmaceuticals, fertilizer, critical minerals, as well as tourism, education and cultural cooperation. Both leaders also exchanged perspectives on regional developments, advancing our multilateral coordination and deepening India-ASEAN ties. Earlier, in his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for Class 12 examination. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The foreign portfolio investors offloaded Indian equities worth 42,927 crore rupees in the first week of June, remaining net sellers across all 5 trading sessions during the week. With this, the total FPI outflows from the equity market have crossed 2.67 lakh crore rupees so far this year, according to depository data. The continued selling by foreign investors is largely attributed to ongoing tensions in West Asia, which have now reached the 100-day mark as the United States and Iran have yet to reach a peace agreement despite multiple rounds of negotiations. In West Bengal, 4 bodies of a family have been recovered from Teesta River near Rambhi of Kalimpong district after 48-hour search operation this morning. The deceased family was travelling from Gangtok to Siliguri in a car. The vehicle went missing on the National Highway 10 near Rambhi alongside Teesta River on Friday afternoon. The NDRF, SDRF, West Bengal Police and Teesta River rescue teams helped in the search operations. Rescue teams recovered vehicle and 4 bodies locked inside the car. National award-winning Malayalam actor Salim Kumar passed away.

वक्त बदलता रहा लेकिन कुछ नगमे आज भी दिल के बेहद करीब हैं, होते हैं ना। ये गीत याद नहीं करने पड़ते तो खुद ब खुद होठों पर चले आते हैं। इन गीतों में सिर्फ सुर ही नहीं, बीते लम्हों की गर्माहट भी होती है। और सदाबहार गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है, हर बार सुनो तो कुछ नया महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ हूं मैं नूपुर। पहुंच रहा है आप तक फिल्म साथी से ये नगमा। आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत रचना है नौशाद की और बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
5: और अब एफएम गोल्ड पर एक और सदाबहार तराना, फिल्म अप्रैल फूल से आवाजें मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार हसरत जयपुरी। गीत के बाद सुनिएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: registrar in the appellate tribunal constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act 1976. The post is located in New Delhi and is to be filled on deputation basis and carries pay level 11 as per the 7 CPC. The selected officers will be responsible for judicial and administrative functions relating to tribunal proceedings. Applications must be submitted within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.dor.gov.in. Rajiv Gandhi National Aviation University, a central university under the Ministry of Civil Aviation, has launched a special recruitment drive for SC, ST, OBC, NCL, EWS and PWBD candidates to fill teaching positions across multiple disciplines. Vacancies available for professor, associate professor and assistant professor in aviation science, engineering and technology, and management and business administration. The university is India's premier institute dedicated to aviation education, training and research. Interested candidates can apply online through the university's recruitment portal after reviewing the detailed eligibility criteria and experience requirements. Kindly do refer to the website for details, that is at www.rgnau.ac.in. I repeat, it is www.rgnau.ac.in. The All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Rajkot, an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for faculty positions in its College of Nursing. The vacancies include Associate Professor, Reader in Nursing, Assistant Professor, Lecturer in Nursing and Tutor Clinical Instructor. A total of 10 nursing faculty positions are available across various categories. These posts offer pay scales ranging from level 10 to level 14 as per the 7 CPC and provide an opportunity to contribute to nursing education, research and clinical training at one of India's newer AIIMS institutions. Detailed eligibility criteria, experience requirements and application procedures available on the institute's website. Kindly do refer to www.aimsrajkot.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
2: भारत सरकार का उद्यम राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। ऑपरेटर HEMM ग्रेड 3 कुल पद हैं 6, खनन मेट ग्रेड 3 कुल पद हैं 21, कनिष्ठ फोरमैन कुल 8 पद, कनिष्ठ फोरमैन इलेक्ट्रिकल कुल 3 पद, SUPT ऑपरेटर कुल 55 पद, ऑपरेटर ग्रेड 3 कुल 55 पद, SUPT फिटर कुल 12 पद, तकनीशियन फिटर ग्रेड 3 कुल 13 पद, SUPT इलेक्ट्रिकल कुल 35 पद, तकनीशियन कुल 35 पद, SUPT प्रयोगशाला कुल 6 पद, SUPT इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक कुल 10 पद, तकनीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 कुल 10 पद। पात्रता संबंधी शर्तों, वेतनमान और आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए नालको की वेबसाइट www.nalcoindia.com। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है वरिष्ठ सलाहकार आपदा डाटाबेस के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत नियम और शर्तों और नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, टर्म ऑफ रेफरेंस आदि की जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट ndma.gov.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर एक सलाहकार आईटी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thsti.res.in।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार आकर्षिता, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन लिसनिंग। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आई एम रेशमा तिवारी एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता सिंह, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade and critical minerals.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।
2: CBSE to close class 12 re-evaluation application window tonight.
1: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन।
2: IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days.
1: और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी 564 रन पर घोषित की।
2: And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Food Safety Day.
1: क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी प्लेट में रखा खाना भले ही ताजा दिखे, उसकी खुशबू अच्छी हो और स्वाद भी बढ़िया हो, लेकिन हमें असल में कैसे पता चलेगा कि वो सुरक्षित है? हम अक्सर खाने को हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी उन अनगिनत प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हैं जिनसे गुजरने के बाद हम उसका पहला निवाला लेते हैं?
2: द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ कंटामिनेटेड फूड इज दैट इट ऑफन लुक्स कम्प्लीटली नॉर्मल, येट अनसीन बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड केमिकल्स मे बी लर्किंग विद इन इट। What would happen if the very thing meant to nourish us became a threat to our health? Food has the power to sustain life, but only when it is handled, prepared and consumed safely.
1: जरा सोचिए, एक परिवार किसी लोकल मार्केट से सब्जियां खरीद रहा है। हो सकता है कि ये सब्जियां सैकड़ों किलोमीटर दूर उगाई गई हों। उस परिवार की रसोई तक पहुंचने से पहले ये सब्जियां खेतों, स्टोरेज सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों, गोदामों और बाजार के स्टॉल से गुजरी होंगी। हर स्टेज पर उस खाने को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि खाने की सुरक्षा रसोई से शुरू नहीं होती, ये खेत से शुरू होती है और जब तक खाना खाया नहीं जाता तब तक हर कदम पर ये प्रक्रिया जारी रहती है। और रेशमा, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं अपने श्रोताओं को कि अगर हम कहीं से सब्जियां खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि जहां से हमने सब्जियां ली, जिन खेतों से वो आई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया हो, बहुत ढेर सारे, क्योंकि आजकल हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो है ऑर्गेनिक का, हर चीज ऑर्गेनिक क्यों, जो हम अपनी प्राचीन परंपराओं में फिर से जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे गाय के गोबर से जो है खाद बनाया जाता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं मार्केट में बहुत ढेर सारे फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं सब्जियां तो बहुत हरी भरी रहती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ढेर सारे ऐसे कीटनाशक तत्व भी मौजूद रहते हैं जिनसे हमें बहुत खतरा हो सकता है बाद में।
2: Right. You absolutely correct. And the most surprising fact is that every year around 600 million people across the world suffer from foodborne illnesses. That's nearly one out of every 13 people on earth. Even more alarming is the fact that more than 4 lakh people lose their lives annually after consuming contaminated food. Among them, children carry the heaviest burden. Children under the age of 5 account for nearly 40% of foodborne diseases worldwide, leading to more than 1 lakh deaths every year.
1: और रेशमा, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि हम वो कीटनाशक से भरे हुए सब्जियां खरीद रहे हैं बाजार से और उसको हम लाते हैं और उसको नॉर्मली ऐसे साफ करके हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन कहीं कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें जो तत्व रहता है कीटनाशकों का वो रहता है और हमने उसको खाने के लिए दे दिया. तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं आजकल तरबूजे में जो है बहुत तरबूजा खाया आपने और पेट में दर्द शुरू हो गया. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एडल्ट्स हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं तो झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों पर इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उनके बढ़ते शरीर में अक्सर इन्फेक्शन और जहरीले पदार्थों से जो लड़ने की क्षमता होती वो उतनी विकसित नहीं हुई होती या कम होती है. तो हर आंकड़े के पीछे एक असल कहानी होती है. गंभीर फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी बच्चे का स्कूल ना जा पाना, बीमारी के कारण किसी मजदूर का एक दिन की कमाई ना कर पाना और किसी परिवार का एक ऐसे मेडिकल खर्चों का सामना करना जिनसे बचा नहीं जा सकता था. तो रेशमा, अगर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जो मजदूर वो पूरा उसका जो जीवन यापन है वो एक दिन की कमाई पर जो है टिका हुआ है, जिस दिन वो कमाता है उस दिन वो खाता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाता है तो उसका पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है.
2: राइट, एंड दैट इज व्हाई वी से फूड बोर्न डिजीजेस डू नॉट ओनली अफेक्ट हेल्थ, दे इंपैक्ट education, livelihoods, economies and entire communities. So if these diseases affect so many people, are they unavoidable? Fortunately, the answer is no. Many foodborne illnesses can be prevented. That is exactly why World Food Safety Day is observed every year on June 7. This global observance serves as a reminder that safe food is everyone's responsibility.
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया. श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% तक कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी. तो रेशमा, हम देख रहे हैं आजकल हम बहुत ढेर सारा ऐसा जंक फूड खाते हैं, तले भुने चीजें खाते हैं जो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होती हैं. मैदे की चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं हम. तो कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी देशवासियों से आग्रह किया है कि आप जो है अपने जो आप खाने में तेल खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी कटौती करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और आप कहीं ना कहीं देश का भी ध्यान रखेंगे इससे.
2: एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग दिस फूड सेफ्टी डे टुडे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. दिस ओकेजन इनकरेजेस गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, साइंटिस्ट्स, फार्मर्स, food producers and consumers to work together to prevent, detect and manage food-related risks. The day is jointly facilitated by the World Health Organization or WHO and the Food

0: Food and Agriculture Organization of the United Nations, known as FAO. The United Nations General Assembly officially established World Food Safety Day in 2018.
1: जी हाँ, जब भोजन सुरक्षित होता है तो समुदाय ज्यादा स्वस्थ होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और बाजार का विस्तार भी होता है। तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के मामले में भारत ने भी काफी तरक्की की है। पिछले कुछ सालों में देश ने वैज्ञानिक नियमों, संस्थागत सुधारों और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने वाली पहलों के जरिए खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार करने की दिशा में काम किया है।
0: एंड अ मेजर माइलस्टोन केम विद द फूड सेफ्टी एंड Standards Act of 2006, which replaced multiple food-related laws with a unified framework and created a modern, science-based regulatory system. At the heart of this system is the Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, which regulates food standards, licensing, testing, labeling, hygiene norms, consumer awareness, and enforcement across the country. But regulations alone are not enough. Public participation is equally important. That is why initiatives such as Eat Right India have focused on encouraging healthier eating habits, improving food hygiene awareness, and empowering citizens to make informed choices about the food they consume. At its core, the objective of all these efforts remain the same: to ensure safe and nutritious food for every citizen, to reduce the burden of foodborne diseases, strengthen public trust in the food system, and support a healthier and more sustainable future.
1: लेकिन रेशमा, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम उसकी फूड सेफ्टी की बात करें तो उसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम भी कुछ खुद से कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जो है फूड सेफ्टी, हम खुद पे घर पे भी इसका फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि हम खाना बना तो देते हैं लेकिन उसको जो है 7-8 घंटे हो जाते हैं उसको खाते रहते हैं,
0: राइट।
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम नॉर्म्स को, जो रूल रेगुलेशंस कह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि 4 घंटे बाद वैसे भी उसमें फंगल बैक्टीरिया या कुछ भी उसमें आ जाता है।
0: Absolutely. So when we prepare food, we should ensure that within 4 hours, we either consume it, finish it, or we keep it in the refrigerator, or else it'll start contaminating. And similarly, when you are keeping stuff in your kitchen, make sure that you follow FIFO, that is first in, first out. Whatever you purchase from the market first, you consume that first, and whatever you've purchased later, that should be consumed later.
1: और रेशमा, जैसे हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कीटनाशक तो अब हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो बाजार में आ रहा है और हम उसको खरीद रहे हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। हम आजकल क्या करते हैं कि हम गर्म पानी में अगर अपनी वेजिटेबल्स को, सब्जियों को थोड़ा देर रख दें तो भी होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कीटनाशक जो है वो हट जाते हैं। या हम बाजार से आम लेके आ रहे हैं, वो कार्बाइड में पका हुआ आम है, हम उसको थोड़ा देर पानी में रख सकते हैं तो उससे क्या होगा कि जो उतना इफेक्ट करता था 90% उसकी मात्रा थोड़ी कम जाएगी और शायद हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हम खुद से ही कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ढेर सारे फूड्स में जो खाने में कलरिंग का प्रयोग है वो भी बहुत नुकसान करता है, तो कलर का उपयोग करते समय खाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपको नुकसान कर रहा है कि नहीं। मार्केट से कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसके पीछे जो चीजें लिखी रहती हैं कि कौन सी मात्रा में क्या चीज है, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे भी हम बहुत ढेर सारी चीजों से बच सकते हैं क्योंकि सिर्फ रंग बिरंगे पैकेट्स को देख करके जो है चीजें खरीद लेना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैकेट्स पे तो हमेशा लिखा रहता है कि हाँ, दिस इज विल बी वेरी हेल्दियर और समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं,
0: राइट। इन अदर वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग द बर्डन हेल्प्स अस डिस्कवर द सॉल्यूशन। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? डू वी एक्सेप्ट अ वर्ल्ड वेयर फूडबोर्न इलनेसेस कंटिन्यू टू इंपैक्ट मिलियंस, और डू वी वर्क टुवर्ड अ फ्यूचर वेयर सेफ फूड इज अवेलेबल टू एवरीवन? The answer lies in our collective responsibility and our willingness to act.
1: जी हाँ, जिम्मेदारी से फसल उगाने वाले किसान, खाने पीने की चीजों को सावधानी से संभालने वाले कारोबारी, स्टैंडर्ड लागू करने वाली सरकारें, जोखिमों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और हर दिन सुरक्षित चीजें चुनने वाले ग्राहक। क्योंकि सुरक्षित खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये लग्जरी है, ये एक आजकल की आवश्यकता है, जरूरत है। तो ये हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है सुरक्षित भोजन की, और ये हमारा अधिकार भी है।
0: बिल्कुल, दिस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, लेट्स रिमेंबर, सेफ फूड इज इन समवन एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज द फाइनल लिंक इन द फूड सेफ्टी चेन इजंट अ फैक्ट्री, अ मार्केट और अ किचन, इट्स अस, आवर वेरी ओन बॉडी, एंड टुगेदर थ्रू अवेयरनेस, एक्शन एंड शेयर्ड कमिटमेंट, वी कैन मूव फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस एंड हेल्प मेक सेफ फूड अवेलेबल एवरीवेयर.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: अ कैंपेन टू सेव फार्मलैंड, कंजर्व रिसोर्सेज एंड एम्पावर फार्मर्स इज गेनिंग मोमेंटम इन सिक्किम. Under the nationwide Khet Bachao Abhiyan, experts and farming communities came together to discuss sustainable agriculture. The initiative underscores the collective responsibility of safeguarding the region's agricultural future. More from our correspondent.
2: As part of the nationwide Khet Bachao Abhiyan being observed from 1st to 30th June, the College of Agricultural Engineering and Nanotechnology, that is CAE PhD Ranipur, recently organized awareness program at Lingmo village in South Sikkim. The program aimed to educate farmers and rural communities on their importance of protecting agricultural land, conserving soil and water resources, and adopting sustainable farming practices in the fragile Himalayan ecosystem. The occasion also marked the observance of World Environment Day. During the technical sessions, experts interacted with the farmers on various aspects of sustainable agriculture and resource management. The Khet Bachao Abhiyan at Lingmo reinforced the importance of conserving agricultural resources and highlighted the collective responsibility of farmers, researchers and institutions in building sustainable agricultural future for Sikkim. Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok.
1: और रेशमा, आजकल सोशल मीडिया पर एक जगह है जो काफी जो है सुर्खियों में है, लोग उसकी बातें कर रहे हैं, वहां जाने के लिए सोच रहे हैं कि वो कैसे जाए. आप गेस कर सकते हो वो कौन सी जगह है? उत्तराखंड में.
0: I was about to say this, Akashita. If you're mentioning it right now, I am seeing many destinations though, but most of them are hill stations.
1: जी.
0: So I was assuming that it must be somewhere in Uttarakhand or Himachal, but you mentioned Uttarakhand already.
1: Yes.
0: So now my next guess would be Valley of Flowers.
1: Yes, that's right. तो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों की नरम चादर ओढ़ी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महकती एक ऐसी दुनिया जहां पहुंचकर लगता है मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर रूप बिखेर दिया हो. हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की, जिसके द्वार इस वर्ष भी 1 जून को पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये घाटी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है बल्कि हिमालयी जैव विविधता का एक अनमोल खजाना भी है. एक सप्ताह पहले खुले इस पर्यटन सत्र के साथ घाटी में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहां प्रकृति अपने सबसे आकर्षक रूप में दिखाई देगी. तो और इसी बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता.
3: 1 जून को खुलने के बाद फूलों की घाटी एक बार फिर प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों का स्वागत कर रही है. लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये घाटी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के उन चुनिंदा प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है जहां हिमालयी वनस्पतियों की असाधारण विविधता देखने को मिलती है. समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी में मॉनसून के आगमन के साथ जीवन जैसे नए रंगों में खिल उठता है. जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं और पूरी घाटी रंगों के विशाल प्राकृतिक उद्यान में बदल जाती है. ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली और अनेक दुर्लभ हिमालयी पुष्प प्रजातियां इस क्षेत्र की विशेष पहचान है. फूलों की घाटी तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक अनुभव है. गोविंद घाट से घांगरिया तक की यात्रा और उसके बाद घाटी तक पैदल ट्रैक पर्यटकों को हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक छटा से रूबरू कराता है. रास्ते में बहती नदियाँ, झरने, घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियाँ इस यात्रा को यादगार बना देते हैं. घाटी के खुलने के पहले दिन ही 49 पर्यटकों ने यहाँ पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और हर दिन इस घाटी का दीदार के लिए पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है. पर्यटकों के लिए प्रवेश अनुमति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है. घाटी के खुलने से स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिली है। होटल, होमस्टे, स्थानीय गाइड, घोड़ा खच्चर संचालन और छोटे व्यवसायियों को आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुँचने की उम्मीद है। प्रकृति के इस अनुपम धरोहर का महत्व केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र हिमालयी परिस्थितियों, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण भी है। 1 जून से शुरू हुआ ये नया पर्यटन सत्र आने वाले महीनों में हजारों पर्यटकों को हिमालय के उस अनोखे संसार से परिचित कराएगा, जहां हर फूल प्रकृति की एक नई कहानी कहता है और हर कदम एक नई सुंदरता का एहसास कराता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
0: What if a simple bicycle could help reduce pollution, ease traffic and improve health at the same time? Well, that message took center stage in Hyderabad as cyclists joined a grand rally today. The event was flagged off by Telangana Governor Shiv Pratap Shukla amid enthusiastic public participation. Amid enthusiastic public participation. More from our correspondent.
4: Speaking on the occasion, the Governor Shiv Pratap Shukla said that cycle plays a very crucial role in protecting the environment and promoting a healthy lifestyle inspired by the Fit India initiative of Government of India. He stated that cycling is an excellent way to reduce pollution and traffic congestion and to build sustainable cities. He called upon people to make cycling a habit in their daily lives. State IT and Industries Minister Duddilla Sridhar Babu and State Sports Minister Vakiti Srihari, along with Telangana Sports Advisor Jitendra Reddy, a large number of youth sportspersons and cycling enthusiasts participated in this massive rally. Saptagiri for Parikrama, Akashwani News, Hyderabad.
0: The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, EPIDA, under the Ministry of Commerce and Industry, has facilitated the export of the first commercial consignment of Amrapali mangoes from Jharkhand to the United Kingdom. The shipment comprises 1.5 metric tons of fresh mangoes sourced from Beura Farmer Producer Company Limited in Simdega District. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the export of Amrapali mangoes grown by a women-led farmer-producer company in Jharkhand to the United Kingdom as a strong example of local goes global. He said that EPIDA's sustained efforts are helping farmers secure better prices, providing women with new opportunities and recognition, and giving fresh momentum to India's agricultural exports.
1: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
0: In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 111 for 4 in their first innings when reports last came in. For India, skipper Shubman Gill scored 126 while KL Rahul contributed 100. Apart from them, Rishabh Pant and Sai Sudarshan scored 81 each while Washington Sundar made 52 not out. For Afghanistan, Salim Safi took 6 wickets. Earlier, India won the toss and elected to bat first. The one-off test match is being played outside the World Test Championship cycle.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: 7 जून डुंडई खान की पुण्यतिथि है। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो स्वतंत्रता सेनानियों से मिल गए। उन्होंने सैनिकों के समूह का नेतृत्व किया और संपत्ति तथा हथियार जुटाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमला किया। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान कंपनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने के आरोप लगाए गए। दोषी ठहराकर खान को जुलाई 1857 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। 7 जून 1858 को सेलुलर जेल में डुंडई खान का निधन हो गया।
6: हम आज शहीद निशान सिंह को भी याद कर रहे हैं। वे बिहार के शाहबाद जिले के निवासी थे। निशान सिंह कुंवर सिंह के निकट सहयोगी थे। उन्होंने 1857 में कुंवर सिंह के साथ मिलकर जगदीशपुर, जौनपुर, हाजीपुर, कानपुर, लखनऊ और बांदा में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। निशान सिंह को उनके गांव से पकड़ लिया गया और 7 जून 1858 को उन्हें तोप से निर्दयता पूर्वक उड़ा दिया गया। शहीद निशान सिंह को शत शत नमन। 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका में युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला की तरफ से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब रेलगाड़ी पीटर मारिट्सबर्ग रुकी तो कंडक्टर ने गांधी जी को आदेश दिया कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरकर निचली श्रेणी के डिब्बे में जाओ। जब गांधी जी ने मना करते हुए कंडक्टर को अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया तो उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया।
5: जहां गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से उतारा गया था तो ठीक उसी जगह प्लेटफॉर्म पर पट्टिका लगाई गई, जिसमें लिखा है, इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक ए अन्ना मलाई ने गांधी जी के जीवन पर इस घटना के प्रभाव के बारे में चर्चा की।
7: Continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi, but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred,
6: पीटर मारिट्सबर्ग की घटना के उपरांत गांधी जी ने भेदभावपूर्ण नीतियों के शांतिपूर्ण विरोध, पक्षपातपूर्ण मतदान नियमों और असहनीय कार्यदशाओं के विरोध का रास्ता चुना। इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने सबसे पहले नस्ली भेदभाव के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और उसके उपरांत भारत में ब्रिटिश उपनिवेश से लड़ाई की।
1: आज भारत के नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण की पुण्यतिथि है। वे आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। वे एक विद्वान और संगीतज्ञ भी थे। नटराज रामकृष्ण को 700 साल पुराने नृत्य रूप पेरिनी शिवतांडवम को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुचिपुड़ी को पारंपरिक नृत्य रूप के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने चिंदू यक्षगानम का प्रचार करने में अहम योगदान दिया, जो तेलंगाना का एक प्राचीन लोकरूप है। उन्होंने श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों के टपेटा गल्लू, पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के वीरा नाट्यम और गरगालू देवदासी जैसी अनेक लोक कलाओं को भी पुनर्जीवित किया। नटराज रामकृष्ण ने डोमा रस, गुरवाय यालू, उरू मुलू और वेदी भगवतू लू जैसे नृत्य कलाकारों की भी मदद की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के जीवन की रचना नृत्य नाटक के रूप में की थी।
0: And today is also the death anniversary of Henry Valentine Miller. He was an American writer. He was known for breaking with existing literary forms and developing a new type of semi-autobiographical novel that blended character study, social criticism, philosophical reflection, stream of consciousness, explicit language, surreal free association, and mysticism. His most characteristic works of this kind are Tropic of Cancer, Black Spring, Tropic of Capricorn, and the Rosie Crucifixion trilogy, which are based on his experiences in New York and Paris. He also wrote travel memoirs and literary criticism and painted watercolors. Judy Holliday also died on June 7. The year was 1965. She was an American actress, comedian, and singer. She began her career as part of a nightclub act before working in Broadway plays and musicals. Her success in the 1946 stage production of Born Yesterday as Billy Dawn led to her being cast in the 1950 film version of for which she won an Academy Award for Best Actress and a Golden Globe Award for Best Actress, Motion Picture, Musical or Comedy. She appeared in several films during the 1950s. She was known for her performance on Broadway in the musical Bells Are Ringing, winning a Tony Award for Best Performance by a Leading Actress in a Musical and reprising her role in the 1960 film adaptation. Edwin Morgan Foster was an English novelist, short story writer, essayist and librettist. He also died on 7 June 1970. Many of his novels examined

0: Class Difference and Hypocrisy, including A Room with a View in 1908, Howards End in 1910, and A Passage to India in 1924. A Passage to India brought him his greatest success.
1: काम किसी गरज से नहीं किया जाता, इंसान काम से अपनी पैदाइश का मकसद पूरा करता है. आज प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की जयंती है. वे उन कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया. एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया. बॉम्बे क्रॉनिकल में ये लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे. इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाला स्तंभ था. ये 1941 से 1986 तक चला. 1945 में ख्वाजा साहब का एक निर्देशक के रूप में करियर शुरू हुआ था जब उन्होंने इप्टा के लिए धरती के लाल नामक फिल्म बनाई. ये 1943 के बंगाल में पड़े अकाल पर आधारित थी. 1951 में उन्होंने नया संसार नाम की अपनी खुद की कंपनी खोली जो अनहोनी जैसी सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों का निर्माण करने लगी. आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, कोल्हुआ, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मण गढ़, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, बोरो, लैलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, छाल, लोटान, आमापाली, पंडो पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

0: चार है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है।
0: ये तालदादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है।
0: ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठा पारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
3: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के अंतर्गत रात 10:00 सुनिएगा MSN मूर्ति का कर्नाटक वायलिन वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम वंचितों को वरीयता आप सुनेंगे रात 9:25 पर। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी में सुनिएगा बिलासपुर जिले की चिट्ठी। कानून के बाद शाम 6:30 पर आप सुनेंगे संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता चंद्र ऋषि ठाकुर, प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की होगी। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी। शाम 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल में ट्राइकोडर्मा विरिले रोग प्रबंधन। आज की सलाह में वर्षा जल संरक्षण एवं शून्य भू परीक्षण के बारे में डॉक्टर के साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक मुद्रा वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर देंगे जानकारी। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:30 पर। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की होगी। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर। वार्ता आप सुनेंगे पर्यावरण और हम, वार्ताकार होंगे अमर प्रकाश सावंत। समय होगा कल सुबह 9:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे कृष्ण कुमार पाटिल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 आप सुनेंगे उस्ताद अमीर खां का गाया राग भटियार में ख्याल। फोन करो छत्तीसगढ़ी की सुनो ये कार्यक्रम कल सुबह 11:05 पर। लोक रंजनी कल दोपहर 12:30 पर, कलाकार होंगे पंचराम चरण और साथी। बिंदिया कार्यक्रम कल दोपहर

5:30 पर आज की बात का विषय होगा स्वस्थ समाज के लिए संवाद जरूरी। श्रोता पत्रों पर केंद्रित कार्यक्रम आपके अनुरोध से आप सुनेंगे और होंगे कुछ टिप्स। कल शाम युवावाणी कार्यक्रम में 5:10 पर आजकल का विषय होगा विश्व महासागर दिवस, सुनिए का हेलो युवावाणी और दृष्टिकोण। कल शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी राजकुमारी। और कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा फसल की अच्छा पैदावार पर बीजोपचार और महत्व। आज की सलाह में हल्दी अदरक के उत्पादन लिए भरपूर कमाई, इस विषय पर डॉक्टर गुंजन झा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव देंगी जानकारी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: चेहरे की मुस्कान से हर गम को छुपा लो, भूल कर सारी बातें बस दिल से दिल मिला लो।
1: आ गए हैं आपके हम सफर रेडियो पर, अब अपनी शाम को थोड़ा और खुशनुमा बना लो।
0: नमस्कार दोस्तों,
1: स्वागत है आप सभी का आज की शाम आज की युवाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त राजलक्ष्मी।
0: और मैं अंजलि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बातों का सिलसिला।
1: भाई दोस्तों, जब अंजलि ने बात करने की परमिशन दे ही दी है तो भला मैं कैसे चुप रह सकती हूँ।
0: हाँ हाँ राजलक्ष्मी, बिल्कुल बोलो, भला मैं तुम्हें बोलने से कैसे रोक सकती हूँ। और वो भी जब जानते हुए कि तुम्हें बोलना कितना पसंद है।
1: वैसे अंजलि, बात करने के साथ साथ एक चीज और है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
0: हाँ राजलक्ष्मी, मुझे पता है कि तुम खाने की कितनी शौकीन हो, खाना तुम्हें कितना पसंद है।
1: सच में तरह तरह के व्यंजन मानो मेरी पहली मोहब्बत है। पता है, आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, तो रास्ते में वो गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे कढ़ाई से बाहर निकल रहे थे। भाई साहब, वो खुशबू सीधे दिल के पार हुई।
0: अरे
1: और वही मेरा सारा डाइट प्लान धरा का धरा रह गया। सच बताना अंजलि, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है?
0: हाँ राजलक्ष्मी, आखिर बाहर का खाना किसे नहीं पसंद होता। हाँ, ये बात अलग है कि मैं खाने को लेकर तुम्हारे जितनी पागल नहीं हूँ।
1: हाँ, ये बात तो सच कही तुमने। मैं तो इतनी पागल हूँ बाहर के खाने को लेके, सच में ना, कि मैंने इस अनहेल्दी फूड के कारण ना जाने कितनी बार अपनी तबीयत को बिगाड़ा है।
0: इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, यानी हमेशा सोच समझ कर खाओ। और साथियों, इसी बात को समझाने आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।
1: जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसे WHO और संयुक्त राष्ट्र मिलकर मनाते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक है कि हम जो खा रहे हैं वो सुरक्षित हो।
0: क्योंकि दूषित खाना खाने से हर साल राजलक्ष्मी तुम्हारी ही तरह ना जाने कितने लोग बीमार पड़ते हैं।
1: सही कह रही हो तुम अंजलि। और मैंने तो ये भी सुना है अंजलि, इस साल की थीम है खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें।
0: बिल्कुल सही सुना है तुमने राजलक्ष्मी। इसका मतलब है कि भोजन की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
1: वैसे आज से मैं भी खाने को लेकर ना थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी। बाहर के खाने से पहले वहाँ की साफ सफाई को ध्यान में रखकर ही कुछ खाऊंगी।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने राजलक्ष्मी। और दोस्तों, आप सब भी आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन अपने भोजन को लेकर सुरक्षित हो जाएं।
1: बिल्कुल। और मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि

0: ये काम ना आज से ही अपने घर अपने किचन से ही इसका शुरुआत करूं। फ्रिज में रखे पुराने खाने से बचें, इसके बजाय ताजे फल सब्जियों का उपयोग करें।
1: बिल्कुल, और हम सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ही इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे बाजार से आकर हाथ और सब्जियों को अच्छे से धोएं।
0: बिल्कुल, भोजन को सही तापमान पर अच्छी तरह पकाएं। बाहर का खुला या बासी खाना खाने से बचें। बाहर का खाना गलत नहीं है साथियों, लेकिन अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करना वो गलत है।
1: तो चलिए आज इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में हम भी अपना कुछ योगदान दें, सुरक्षित भोजन करें और सेहत के लिए अच्छा हो।
0: याद रखिए दोस्तों, सुरक्षित भोजन कोई विलासिता नहीं,
1: हमारा
0: हमारा
1: अधिकार
0: अधिकार
1: है।
0: है।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
6: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
7: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
6: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
7: 47 सालों से निरंतर सेवा में
6: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
0: दोस्तों, समय है क्रम आज मेरी बारी है का, और आज बारी है रूपल आसूदाने की। तो चलिए सुनते हैं क्रम आज मेरी बारी है।
8: नमस्कार दोस्तों, आज मेरी बारी में मैं हूं आपके साथ रूपल। आज मैं एक ऐसे सवाल पर बात करना चाहती हूं जो हर युवा के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, क्या मैं वो कर रही हूं जो मुझे सच में करना है। हम बचपन से एक रास्ते पर चलते हैं, अच्छे नंबर, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं हमारा पैशन, हमारी असली पहचान पीछे छूट जाती है। घर वाले कहते हैं पहले पढ़ो, और मन कहता है पहले जियो, और हम दोनों के बीच अटके रह जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ किताबें थी तो दूसरी तरफ वो चीज जो मुझे सच में खुश करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि पढ़ाई और पैशन दुश्मन नहीं है। पढ़ाई वो नींव है जो हमें मजबूत बनाती है, और पैशन वो छत जो हमारी जिंदगी के मकान को घर बनाती है। जिस दिन मैंने दोनों को साथ लेकर चलना शुरू किया, उस दिन से रास्ता मुश्किल नहीं, मजेदार लगने लगा। तो पढ़ाई को बनाइए अपनी ताकत और पैशन को अपनी पहचान। दोनों का बैलेंस ही लाइफ की असली सक्सेस है, और अपने सपनों का साथ कभी भी ना छोड़िए।

दोस्तों, और अब बात करती हूँ आजादी की, उस आजादी की जो हर लड़की का हक है, लेकिन जो अक्सर लोग क्या कहेंगे कि चादर में दब जाती है। रात को बाहर जाना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, अपनी पसंद का करियर चुनना हो, हर कदम पर एक सवाल खड़ा मिलता है, हर फैसले पर नजर टिकी मिलती है। जैसे आजादी कोई इनाम हो जो कमाना पड़े, अधिकार नहीं जो जन्म से मिले। लेकिन मैंने देखा है, आज की लड़की सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देती, वो सवाल खुद पूछती है। वो डॉक्टर भी है, पायलट भी और खिलाड़ी भी। उसने साबित किया है कि पंख हो तो आसमान खुद झुक जाता है, और अगर पंख काटने की कोशिश भी की जाए तो वो नए पंख उगाना जानती है। आजादी मांगी नहीं जाती, जी कर दिखाई जाती है। तो हर उस लड़की को मेरा सलाम जो हर रोज अपनी एक छोटी सी एक लड़ाई लड़ती है, जो घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने सपने नहीं भूलती, और जो थकने के बाद भी मुस्कुराती है।

दोस्तों, आज मैं बात करना चाहती हूँ उस घर की जिस घर में हम सब रहते हैं, हमारी धरती माँ की। पिछले कुछ सालों में बाढ़ आई, सूखा पड़ा, जंगल जले, ग्लेशियर पिघले और हम सोचते हैं ये तो कहीं और हो रहा है, हमसे क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि सब हमारे ही तो घर में हो रहा है और हम इसकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। एक युवा के रूप में मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी। एक प्लास्टिक बॉटल कम करना, एक पेड़ लगाना, बिजली का सोच समझ कर इस्तेमाल करना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, जब भी कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक खोले तो ज़रा ध्यान से फाड़िए। वो पॉलीथीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो हमें दिखता भी नहीं है, वो मिट्टी में, फिर नाली में और फिर नदी में पहुंच जाता है। इतनी सी सावधानी से हम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो चलिए एक वादा करते हैं खुद से और अपनी धरती से, कम लेंगे और ज्यादा लौटाएंगे। हम वो पीढ़ी हैं जिसने क्लाइमेट चेंज को किताबों में नहीं अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए बदलाव भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये धरती हमें विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। इसे संभालना भी हमारा ही फर्ज है।

0: इस गीत के साथ ही मुझे यानी रूपल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज मेरी बारी है। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपल आसुदानी के विचार और उनके पसंद के गीत। हवा में घुली है एक नई सी ताजगी, आज सुनने वालों के दिलों में है कुछ खास बात। आज
2: शब्दों और सुरों का ये समा है बड़ा ही प्यारा, कानों में गूंजेगा अब एक नया तराना हमारा।
1: थाम लीजिए दिल क्योंकि सुरूर छाने वाला है, रेडियो पर आपका ये नया पसंदीदा गाना आने वाला है।
2: समझ गए ना दोस्तों हमारा इशारा। समय है आपके पसंदीदा क्रम नए तराने का, तो शुरू करते हैं नए तराने। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आपने अभी सुना फिल्म रागनी MMS 2 का। ये गीत स्वर था मुस्तफ़ा जाहिद का, गीतकार थे कुमार और संगीत दिया था प्रणय रिज्जा ने।
1: और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहब।

0: सुजाता, शशांक, सीमा साहू, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान, हाव्या, तन्नु रजक, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारणी सूरज, ज्योति ठाकुर, धमतरी से राहुल, सविता माखीजा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। क्या बात है अंजलि, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। आखिर किसका चेहरा देख कर उठा था सुबह तुमने?
1: अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है।
0: बोलो भी, अब क्या मुझसे भी छुपाओगे तुम? तुम तो बिल्कुल जुगनुओं की तरह जगमगा रही हो भाई, आखिर बात क्या है?
1: राजलक्ष्मी, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा तो होगा ना जिसके बस होने से तुम्हारी लाइफ खुशनुमा हो जाती हो, एक सुरक्षा सी महसूस होती हो उसके साथ, ना कोई डर होता है ना कोई घबराहट, जैसे अंधेरे में किसी ने उजाला कर दिया हो।
0: अच्छा, लगता है तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसका बस दीदार ही तुम्हारे लिए काफी है, क्यों?
1: अरे, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तो बहुत प्यारा सा गाना याद आ गया, तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये गीत।

0: जन्नत टू का ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। गीतकार थे संजय मासूम और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: और फरमाइश थी इन श्रोताओं गणों की, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश और अनुराग कश्यप, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से जग्गर राम साहू, जमुना देवी, प्रेम पूजा लल्ला, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा साहू, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, ग्राम साले खुर्द धमधा दुर्ग से तोरण साहू, याचना शिवानी, जयदेव साहू, रानी गांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम, सेजल साहू, ग्राम भानपुरी मुसरा से आत्मराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमू मनेश्वर यादव, गांव तेंदू भाटा मगरलोड जिला धमतरी से उम्मेद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन निषाद।
0: दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कभी कभी खुद को खोजने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है? अजीब बात है ना।
1: हाँ, मतलब जब तक आप नहीं थे मैं सिर्फ जीवन काट रहा था, पर अब आपके आने से मैं आपसे ही आपके ही ख्यालों में जीने लगा हूँ,
0: आपके ही हवाओं में बहने लगा हूँ।
1: जाने अनजाने में बस आपका हो जाना लगता है मानो कोई दुआ कबूल हो गई हो।
0: तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम आपके एहसास को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: और सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरी का ये प्यारा सा गीत। गीत था कुमार का, संगीत दिया था विशाल शेखर ने,
1: और फरमाइश थी इन श्रोताओं की। सारंगपुरी उमरगांव नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई, उमा शंकर, ठामेश्वरी रागिनी साहू, ग्राम फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू, टुमेश्वरी यामिनी मुस्कान कोकिला साहू, सासा होली तिलदा नेवरा से गजेंद्र सिंह, गणेश सोनी, वीरेंद्र यदु, बलराम यादव, शनि निषाद, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, परसाटोला जिला मोहला मानपुर से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी मसिया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, चंपा करण राहुल साहू, लुकाऊपाली छतवन जिला बलौदा बाजार से पुनित राम सूर्यवंशी, निर्मला निहारिका सिंह, पंकज सिंह सूर्यवंशी। राजलक्ष्मी, तुमने कभी कोई सौदा किया है क्या?
0: सौदा? कैसा सौदा अंजलि? सौदा तो बहुत प्रकार का होता है, जमीन का सौदा, सामान का सौदा। आखिर तुम किस सौदे की बात कर रही हो?
1: नहीं नहीं इनकी बात नहीं कर रही, इनमें तो इंसान बस अपना फायदा देखता है। मैं तो उस सौदे की बात कर रही हूँ जहाँ जितना मिलता है उससे कहीं ज्यादा लौटाने का मन करता है।
0: तुम भी ना अंजलि, अजीब बातें करने लगी हो आजकल। तुम्हारा भी कोई सौदा रुका हुआ है क्या आखिर?
1: लगता है तुम समझी नहीं, ये प्यारा सा गीत तुम्हें बता देगा। तो साथियों चलिए सुनते हैं नए तराने की अगली प्रस्तुति।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म आक्रोश का ये गीत। शुरू से सजाया था जावेद अली ने, गीत था इरशाद कामिल का और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, पथरिया से नारायणी वान्या सिंगरेल,

0: छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार साहू, नंदिनी मनीष मयंक साहू। इसी के साथ दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले बता देते हैं कल के आकर्षण, कल की युवाणी सजेगी हिंदी में, जिसमें आप सुनेंगे हेलो युवाणी, जिसमें युवा साथियों से बातचीत करेंगी अपेक्षा शुक्ला, और इसी के साथ क्रम दृष्टिकोण। इसी के साथ आपकी दोस्त राजलक्ष्मी
1: और अंजलि को
0: दीजिए इजाजत और स्वीकारे हमारा
1: नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान

0: विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है, कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में सुनिए बिलासपुर जिले की चिट्ठी।
2: श्रोताओं नमस्कार, जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बिलासपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के तहत प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मल्हार में 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पट्टिकाएं पांडुवंशी वंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिलालेख 6वीं-7वीं सदी के हैं और प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 4 जून को बिलासपुर में मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, राजस्व प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, पेयजल व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और किसानों को समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। इसी दिन मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,00,000 रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मधुबन जूना क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर और एजुकेशन हब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, खेत बचाओ अभियान के तहत तकतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत खजूरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरक का संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त संचालक आर के राठौर ने किसानों को नील हरितकाई के उत्पादन और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार मोनिका सिंह ने पिछले दिनों तखतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत निगारबंद, राजाकापा, बहुरता और हरदी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छाग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। उन्होंने ग्राम सरपंचों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी जाए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार 6 जून से आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 9 जून तक हर दिन 2 पालियों में हो रही है। 6 जून को भाषा और निबंध तथा 7 जून को सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। वहीं कल 8 जून को सामान्य अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र तथा 9 जून को सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में हो रही है। श्रोताओं, राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों

0: के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर के कोने स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कोपा विद्युतकार, फिटर, शीट मेटल वर्कर, स्टेनो हिंदी अंग्रेजी, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित 32 व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिल्हा स्थित आईटीआई में व्यवसाय, कोपा, स्टेनोग्राफी, हिंदी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले करीन गोट बात। घरेलू रसोई गैस के कीमत मा 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना मा अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर मा शुरू। राज्यपाल रमेन डेका हा इस सम्मेलन के करीन उद्घाटन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा राजधानी के राज अतिथि गृह पहुना मा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट करीन। ए दौरान साध्वी निरंजन ज्योतिहा प्रतिनिधि मंडार ले बताए गए समस्या के संगे उखर मांग और सलाह बारे मा जरूरी कदम उठाए के भरोसा देवाइन। ए मौका मा राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद, उपाध्यक्ष चंद्रकांत वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा और लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा समेत पिछड़ा वर्ग मा अवैया कई ठिन समाज मन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अपन दौरा बेरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल रमेन डेका ले लोक भवन मा सौजन्य मुलाकात करीन। उन्हें साध्वी निरंजन ज्योतिहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले घलो आज रायपुर स्थित उखर निवास कार्यालय मा भेंट करीन। ए दौरान इखरवन बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शिक्षा मा विकास और सामाजिक आर्थिक विकास ले जुड़े कतकोन विषय मा गोट बात होइस। घरेलू रसोई गैस के कीमत मा 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। नवा रेट रतिहा 12 बजे ले लागू हो गए है। दिल्ली में आज ले घरेलू रसोई गैस के कीमत 913 रुपया ले बाढ़ के 942 रुपया हो जही। इही बीच केंद्र सरकार हा कहे है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG के कीमत मा बहुत ज्यादा बाढ़े के बावजूद भारतीय घर मन मा रांधे पसाए वाले गैस हा विश्व स्तर मा सबले कम कीमत मा मिलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हा एक ठिन बयान मा कहे है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना मा सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा असन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कमती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बेचे के दावा बारे में खंडन करी है। NTA हा कहे कि यह हर विद्यार्थी उनकर परिवार वाले मन के संसो के फायदा उठैया नकल गिरोह के काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून के दुसरैया नागरिक अलंकरण समारोह में ए बछर के 65 झिन मनखे मन ला पद्म पुरस्कार देही। एकर पहली पाछू महीना श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति भवन में होय पहलैया नागरिक अलंकरण समारोह में 66 झिन प्रतिष्ठित मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दे रही। यहाँ बता दें कि ये पुरस्कार ला हर बछर गणतंत्र दिवस के मौका में घोषित करे जाते। केंद्र सरकार हा कानूनी माप सिस्टम के चलत खाद्य तेल पर मानक पैकिंग लागू करे है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हा कहे है कि संशोधित नियम ले प्रमुख खाय के तेल मन पर मानक पैक आकार तय करेगी है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर संभाग के समीक्षा बैठक में कहीन है कि किसान मन ला खाद और बीज मिले बारे में कोनो प्रकार के हलाकानी नहीं होना चाहिए। उमन निर्देश दे है कि छोटे और सीमांत किसान मन ला प्राथमिकता के आधार में खातू और बीजा दे जाए और एक जवाबदेही संबंधित कलेक्टर के होही। मुख्यमंत्री नैनो उर्वरक के बउरई ल बढ़ावा दे बर और गैर कानूनी ढंग ले रेती खनई पर कड़ा कार्रवाई के निर्देश घलो दे है। छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति

0: शक्ति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान पढ़ियालय का मंबर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत एडमिशन के काम शुरू कर दी है। योजना के माध्यम ले चुने गए पढ़ियालय का मल्ला प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय मन मा कक्षा छठवी ले बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाही। आवेदन जमा करे की आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है। एक हर बार चयन परीक्षा 5 जुलाई की हुई। ए बच्चर विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लयिका मन पर पहली बेर 2% आरक्षण घलो रखे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बांचे समाचार डहार। देश भर के सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू हो गए है। राज्यपाल रमन डे कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन के उद्घाटन करीन। एमा बोला तो मन कहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के काम न केवल वित्तीय सलाह है भल्लुको मन कई ठिन व्यवसाय के सफलता में एक ठिन सुघर मार्गदर्शक के भूमिका घलो निभाते। ओमन यहू कहीन कि आम लोगन के सहूलियत ला ध्यान में रखत टैक्स सिस्टम ला और ज्यादा सरल बनाया जाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के कई ठिन जिला मन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम रखे गए रही। एक हर चलत उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा जगदलपुर में रखे गए कार्यक्रम में शामिल हुई। ये मौका में श्री सावहा खुदे साइकिल चला के पर्यावरण संरक्षण और खुद के फिट रहे बर आरो दिन। ये कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश शिकारा घलो शामिल हुई। उन्हें कोंडागांव जिला में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकालेगी। ये कार्यक्रम में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना समेत अन्य अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी और आम लोगन मन घलो शामिल हुई। ई कड़ी में मुंगेली पुलिस डहर ने जिला मुख्यालय और लोरमी में साइकिल रैली रखे गई रही। उन्हें कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में साइकिल रैली निकालेगी जेमा कलेक्टर रोक्तिमा यादव समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में देश भर में कई ठिन कार्यक्रम हुआ थे। यही कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में साफ सफाई के अभियान चलाएगी। ये मौका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन अस्पताल कैंपस के साफ सफाई करके स्वच्छता के आरो दिन। आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर ढाले काली 8 जून के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश ढाले बनाए गए एक कार्यक्रम के प्रसारण बिहनिया 8:30 बजे ले 9 बजे तक होही। छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक कार्यक्रम ला एक ही संग्रह प्रसारित करही। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे के चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरा पर करेगी है। एकर संगे ओमन सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनिया छत्तीसगढ़ के पहले या क्रिकेटर बन गए हैं। आयुषा पिछला रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ बस 60 मैच के 13 पारी में 57.3 ले 3 के औसत ले 573 रन बनाए हवे जेमा 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन में माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग काम पर 9 जून ले 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम हुई। ए पाए के कई ठिन यात्री गाड़ी प्रभावित रही जेमा रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर समेत 8 ठिन डेमू और मेमू गाड़ी मन 10 और 11 जून के कैंसिल रही। अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्माला संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्य नामित करे गए है। राज्यपाल रमन डे कहा रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राजाभिषेक समारोह दिवस में उनकर मूर्ति के अनावरण करीन। ए मौका में ओमन महाराष्ट्र मंडल ला एम्बुलेंस दे के घोषणा घलो करीन। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हरे। ए बच्चर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के विषय है समस्या ले समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधिमन ले करीन गोठ बात। घरेलू रसोई गैस के कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी उन्हें केंद्र सरकार।

0: रहा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के दो दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमन डे कहा इस सम्मेलन के करीन उद्घाटन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीयदलेन अफगानिस्तानदलस्य सम्मुखे अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं चतुष्षष्ट्यधिकपञ्चशतधावनाङ्कान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता. भारतीयमल्लक्रीडकाः मङ्गोलियायाः उलान् बटार् ओपन् क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः. इति वार्ताः.
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है. कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी रायपुर है. कानून की बात आज इस कार्यक्रम में सुनिए. संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंटवार्ता. भेंट करता है चंद्र ऋषि ठाकुर. प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की है.

0: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद से संबंधित सभी कानूनी मामलों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री आशुतोष द्विवेदी जी को। आप जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है द्विवेदी जी आकाशवाणी जगदलपुर के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये संपत्ति विवाद क्या होते हैं, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार के विवाद ज़्यादातर देखने को मिलते हैं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, संपत्ति विवाद में चल अचल संपत्ति शामिल है। चल संपत्ति से मतलब यह है जिनको इधर से उधर किया जा सकता है, और अचल संपत्ति में अस्थायी संपत्ति जो जल जंगल जमीन ये सारी। तो अब चल और अचल संपत्ति के विवाद के विषय में जहाँ तक प्रश्न है, प्रमुखतः विवाद मालिकाना हक से होता है, वसीयती अधिकार के संबंध में होता है, वारिशों के संबंध में होता है। ये प्रमुख तीन प्रकार के विवाद होते हैं। संपत्ति के अधिकार को लेकर के लोगों के बीच में जहाँ असहमति बनती है वहाँ पर ये विवाद शुरू होते हैं, और चल और चल संपत्ति के संबंध में वारिशों के बात को, विरासत हक को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के, उसकी सीमा को लेकर के जहाँ पर विवाद उत्पन्न होते हैं उसे संपत्ति विवाद कहा जाता है। भारत देश में जैसा कि आपने पूछा कि बहुतायत कौन से विवाद ज़्यादा आते हैं, हमारे देश में अज्ञानता है, अशिक्षा है। भारत देश के सारे प्रदेशों में भूमि से संबंधित कानून बने हुए हैं जो कि प्रादेशिक कानून होते हैं, और कुछ सेंट्रल लॉ हुआ करता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें कई तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम बनाया गया है, उसमें इन सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि एक संपत्ति दूसरे के पास किस तरीके से जा सकती है। लोगों को इसका ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, परचेज करने के बाद पता चला कि म्यूटेशन की एक कार्रवाई होती है, जमीन पे अपना नाम दर्ज कराना। जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं हमारे, जो छत्तीसगढ़ के कंसर्न में अगर बात करें तो किस्तबंदी खतौनी B1 होता है, खसरा होता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है या जमीन को किसी अधिकार के तहत प्राप्त करता है तो उस बारे में राजस्व अधिकारी को सूचना दी जानी होती है। राजस्व अधिकारी का मतलब है तहसीलदार हो गया, इनको सूचना देनी होती है। गांव में पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, इन लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ती है। सूचना देते हैं तो बाकायदा उस सूचना को दर्ज किया जाता है, तहसीलदार के पास ले जाया जाता है कि पहले इस संपत्ति की ये मालिक थे। इस मोड से हमने बताया आपको, संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से, इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है तो जो जिस व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है उसको आप B1 में दर्ज करो, उसके स्वामित्व में दर्ज करो, खसरा में दर्ज करो।
0: ज़्यादातर जब ऐसे ज़मीन के या फिर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं तो पैतृक संपत्ति

0: पिता की संपत्ति और स्वयं की संपत्ति की बात भी आती है। लोगों को जानकारी होती है कि पैतृक संपत्ति क्या है, पिता की संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती है। तो इन तीनों संपत्तियों में क्या अंतर है, और इन मामलों को, जैसे अगर कोई संपत्ति का विवाद आ भी जाता है तो ऐसे मामलों को सुलझाने में वसीयत क्या भूमिका निभा सकती है?
1: देखिए, प्रॉपर्टी दो तीन प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति माने अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पैतृक संपत्ति होती है। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर्ड, स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति से आशय है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को स्वतः परचेज किया या अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने परिश्रम से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मतलब है पिता, बेटा, बेटी, भाई, इन लोगों ने सामूहिक धन से अगर कोई उस प्रॉपर्टी को परचेज किया तो ये संयुक्त संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि सारे वारिशों को, यानी तीन पीढ़ी मान लीजिए, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे को और उसके नाती को उसमें बराबर का अधिकार होता है। यहाँ तक है कि अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो भी उसका अधिकार बन जाता है। इसमें महिलाओं को लेकर के पहले कानून थोड़ा संकीर्ण था। संकीर्ण से आशय यह था कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में बच्चियों को हक नहीं हुआ करता था। अभी 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया और उसमें बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी बाई बर्थ यानी जन्म से ही उनका पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से अधिकार दे दिया गया है। अब आया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाता है। इसमें जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जीवित है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता।
0: तो उसमें वसीयत की बात आ जाती होगी।
1: हाँ, उसमें यह होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड स्वार्जित संपत्ति होती है उसका वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, उसको बयानित कर सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, गिरवी कर सकता है।
0: और वसीयत अगर वो बना दे तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत के माध्यम से अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी को दे सकता है।
1: हाँ, मैंने बताया ना कि अपने मर्जी से उस प्रॉपर्टी को व्ययनित कर सकता है, उसको किसी को भी दे सकता है, और उसने अगर वसीयत कर दिया किसी तीसरे के पक्ष में तो जो उसके वारिस होते हैं वो दावा नहीं कर सकते
0: जी। और जब हम संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं, कोई संपत्ति हम अक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए?
1: संपत्ति खरीदते समय सबसे पहले तो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति में मालिकाना हक आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, किसी दूसरे का, यानी संपत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसकी तस्दीक सबसे पहले कर लेना चाहिए। अभी तो काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है उसकी फ़ोटो भी नहीं लगती थी, उसका आधार कार्ड की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, नक्शे नहीं लगते थे, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री की जा रही उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते थे, बहुत सारी इररेगुलरिटी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें, कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा एक चीज़ बताया कि उसके पूर्वजों की संपत्ति तो नहीं है, यदि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसकी जाँच करें, और उनके कौन कौन वारिस हैं उसकी भी जाँच कर लें, पुराने रिकॉर्ड की भी जाँच कर लें
0: जी।
1: कैसे, एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, जैसे जमीन, जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की जमीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय का ना हो नहीं खरीद सकता। दूसरी चीज़ें हैं जो हमको खरीदी में ध्यान देना चाहिए, कुछ अलाटेड ज़मीनें हैं, जो ज़मीनें गवर्नमेंट ने आवंटित कर दी है, पट्टे पर दी है, लीज पर दी है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है

0: तो विदाउट परमिशन आप गवर्नमेंट आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं आवंटित जमीन तो नहीं है, अगर आवंटित जमीन है तो इस जमीन के लिए कलेक्टर से परमिशन ली गई है सेल आउट करने के लिए कि नहीं ली गई है। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को बारीकी से जांच करने के बाद जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि भविष्य में विवाद नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे।
1: जी, आपने तो बहुत सारी जानकारियां दे दी हमारे श्रोताओं को संपत्ति विवाद से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो जरूर कहें।
0: देखिए, अभी जो स्थितियां बनी हैं हमारे देश में, जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं और बढ़ने के पीछे कारण यह है जिन व्यक्तियों को जमीनों की जरूरत है उनके वश के बाहर हो रही है। उसका कारण ये है जमीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, जो मीडिएटर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो ज़मीनें उनके पास जा रही है। ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला तो ये करना चाहिए कि ज़मीनों के संबंध में जांच पूरी तरीके से करिए। ज़मीनों की जांच करने के बाद उसमें आप आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, अभी नालसा, सालसा और डालसा। नालसा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। स्टेट स्तर पे भी विधिक सेवाएं चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विधिक सेवा दी जा रही है। इसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारियां दी जाती है और गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं और जिला विधिक सहायता की ओर से एक वकीलों का पैनल है जो बिना कोई शुल्क के आपको हमेशा जानकारी देने के लिए तैयार है। तो संपत्ति के मामले में यदि आपको कोई जानकारी लेना है, परचेजिंग करना है या कहीं कोई आपको समस्या आ रही तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विधिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में बताऊँ आपको, लोक अदालतों का आयोजन। लोक अदालत का मतलब यह है कि आपसी झगड़े को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाना। लोक अदालत में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती,
1: आपसी समझौता हो जाता है।
0: अदालत में फैसला होगा, एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। उसमें क्या है, वो जो सामाजिक सद्भाव है वो जो है नहीं दोबारा वापस आएगा। लोक अदालत के माध्यम से आप निपटारा करो, आपके केस का जल्दी निपटारा हो जाएगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
1: आगामी लोक अदालत कब?
0: आगामी लोक अदालत अभी 12 सितंबर महीने में लगभग नेशनल लोक अदालत तीन होती हैं, कम से कम तीन से चार, तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत है और इसके बारे में खूब सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे संपत्ति के मामले हों, सारे मामले एक ही छत के नीचे देन एंड देयर तुरंत जो है निपटाया जा सकता है। नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को ज़रूरत है तो 15100 इस नंबर पे फ़ोन करके वो पूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टेट लेवल की जो विधिक सेवा है उसके भी नंबर्स हैं, हर जगह आज ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे नंबर है, यहाँ पर एक एडवोकेट की हमेशा नियुक्ति रहती है, उनका अलग से विभाग है, उनका अलग से चैम्बर है, उनसे जाकर के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। विधिक सहायता उन मामलों में भी मिलती है अगर आप पैसे नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हमारा विधिक सहायता मिलता है। तो कानून के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो अदालतें हैं इनके द्वारा जो सुविधाएं लीगल एड की दी जा रही हैं, जिला विधिक सहायता के माध्यम से, राज्य विधिक सहायता के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर पे विधिक सहायता के अथॉरिटी के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोग ले भी रहे हैं।
1: जी, आशुतोष द्विवेदी जी, आपने संपत्ति से संबंधित विवाद के मामलों में जितनी भी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है, हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें ज़रूर लाभ पहुंचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: कानून की बात आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे। संपत्ति विवाद के संबंध में अधिवक्ता जगदलपुर श्री आशुतोष द्विवेदी से ली गई भेंट करता थी चंद्र ऋषि ठाकुर। प्रस्तुति आकाशवाणी जगदलपुर की थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
13: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
12: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
11: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
14: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपये का गांजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने इन प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं के अलावा उनकी मांगों और सुझावों पर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल रमन डेका से लोकभवन में सौजन्य मुलाकात की। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक उन्नयन तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नई दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913

0: 13 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ती है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या को कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य केवल वित्तीय सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विभिन्न व्यवसायों की सफलता में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। इस सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे 1000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने स्वयं साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण और फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा भी शामिल हुए। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बस्तर क्षेत्र में 3 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश कार्य समिति में भी एक नए सदस्य को शामिल किया गया है। पार्टी ने दिनेश कश्यप को बीजापुर और रूप सिंह मंडावी को कोंटा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। वहीं श्रीनिवास राव मद्दी को बस्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा माया झाड़ी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी ने उर्मिला तोकल को बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल नाके पर पुलिस ने तलाशी के दौरान करीब 125 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहे एक वाहन को तलाशी के

0: रोका। इसमें कटहल की सब्जियों की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़मा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक बरामद किए हैं। इसके अलावा माओवादियों की वर्दी और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। अभियान के बाद सुरक्षा बल के जवान सुरक्षित रूप से अपने शिविर स्थल लौट गए हैं। दुर्ग जिले के रौंदा स्थित सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में 560 क्विंटल धान कम पाया गया, वहीं करीब 2100 वारदाने भी कम थे। शिकायत मिलने पर दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक ने समिति प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम के लिए जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी मौसम में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों के 13 पारियों में 57.3 की औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन की कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले गाड़ियों की परिचालन स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इस बीच बिलासपुर से बेंगलुरु तक एक समर स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है। ये ट्रेन बिलासपुर से 12 जून को चलेगी। यह इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है। और अब पेश मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ सहित कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के कुछ भाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 12 जून से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने के आसार जताए हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र की कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि घोषित की है। सीबीएसई ने बताया है कि छात्र आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बचे हुए किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए कल पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। सक्ती जिले के लक्ष्मणभाटा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की विशेष उड़नदस्ता टीम ने 15 स्थानों पर छापा मारकर 14 गाड़ियां और मशीनें जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो
5: पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय पहली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं काश आप हमारे होते इस फिल्म का गीत, आवाज़ी सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की, समीर के बोल आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

0: Akashvani at 90.
1: लव के चक्कर में इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं शान और साधना सरगम की आवाज़ी आनंद राज आनंद का संगीत।

अलका याग्निक और शान की आवाज़ों में अभी आपने सुना लव के चक्कर में इस फिल्म का गीत, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फिदा का गीत, समीर के बोल अनु मलिक का संगीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मैंने दिल तुझको दिया इस फिल्म का गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत डब्बू मलिक का।

इसकेत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम निर्मल,
1: राम राम नीतू, संगे संग चौपाल सुनैया जम्मो संगवारी मन ल हमर दुनो के
0: राम राम। निर्मल, हमर संगवारी मन ह खरीफ फसल बर खेत के तैयारी करत हे ताकि अवैया बेरा म फसल म कीड़ा या बीमारी या खरपतवार के जन समस्या है वह झन होए या कहन कि कमती ले कमती होए और उत्पादन ज्यादा होए।
1: अब कहेस नहीं तो सूरता आगे, पहली हमन 4 बजे उठ के गाड़ा फांद के खातू पाले बर जान खेत में, है ना। थोक बहुत नोता पंप पानी वानी गिरे ना एकाद कनी तहन खेत थोकिन गीला हो जाए, तहन कान काटा कोड़े टाइम हो जाए तो बढ़िया कोड़ाई हो जाए, अच्छा से मेड़ मेड़ के सफाई हो जाए और जिसे घाम करे तहन वो सब कचरा मन सुखाए, ओला जला देन हमन बीच में इकट्ठा करके और जेन है सड़क लेकर रहा है ओला गड्ढा बना के दबा दे ताकि खादू बनाई सके के। तो ये सब प्रक्रिया भी चला थे और एक चले के संगे संग एक ठन बात और है कि देख अभी नो तब पछ रही फिर गर्मी कम नहीं हुआ थे,
0: है ना।
1: फिर गर्मी घलो अपन मजा नहीं तू का फिर देख अभी आमा कतका सुंदर सुंदर आवा थे आमा खाए के मतलब ज्यादा दिन तक हम आनंद ले सकते हैं इसी है। अब देख मोर पैतृक गांव कांकेर जिला में चारामा ब्लॉक, नाम है से चारामा मतलब पूरा समझ लेते हैं आजू बाजू आमा का पेड़ बढ़े, खेत खार में आमा का पेड़ बढ़े, हमारे घर 5-6 ठन आमा का पेड़ है। अब कोई भी आमा मांगबे ना वहां जाके एक ठक मांगबे तो 4 ठन मिल जाए अपने अपन। अब कहा हुई सब बीच के बात है परम दिन के एक ठक सुंदर आमा जो खाए मन हुई देखे तहन ओला काटे में काटत काटत गोही कटा गए तू। अब गोही कटा गए तो आश्चर्य की बात हुई इसकी गोही के भीतरी में कीड़ा निकली।
0: अच्छा,
1: अब मैं बड़ा आश्चर्य की बात हो गया कि भाई कीड़ा कैसे निकला थे,
0: आमा बने ऊपर ले बने हैं।
1: हाँ, आमा सुंदर दिखा थे ऊपर भला खाक फेंक देते हैं जानते नहीं कि गोही के अंदर कीड़ा है। अब यह आश्चर्य की बात हुई तो कृषि वैज्ञानिक के लिए मैं फोन लगा मैं भाई इसे कैसे हो गए तो बताई से कि फूले के दौरान कोनो वाहक मक्खी मन अपन संग कोनो जीवाणु विषाणु चिपका के लेके छोड़ दिस वहाँ, जिससे जिससे फूल फले वाला हुई तो अंदर रही गए पर एकदम छोटे हो दिखे नहीं इसने आंखी से। अब ओकर बाद जिस फल बड़े हो इस तो गोही के अंदर चल दिस हुआ वही हा अनुकूलित वातावरण पाके अंदर अंदर बड़े हो गए, है ना। तो ऐसने ढंग ले नीतू हमार कतको अकन बीज रहते जे हमन फसल के रूप में बोथन खेत में और वो बीज में कहूँ कोनो प्रकार के जीवाणु विषाणु पहले चिप के है तो ओकर संग संग रोग घलो बड़े होते बाढ़ते जेला हमन हा बीज जनित रोग के नाम ले जानथन।
0: वैसे खरीफ फसल के बात करन ना तो भाई रोग तो हर फसल में लगते हैं, फिर विशेषज्ञ मन कथे है कि अगर फसल में रवि या विशेष रूप से खरीफ फसल में भी के बेरा में अगर रोग प्रबंधन करना है तो एकर एक ठन तरीका है वो है ट्राइकोडर्मा विर्डिले।
1: ट्राइकोडर्मा विर्डी की बात करें नीतू तो ये बिल्कुल करना चाहिए जिसे मैं कहूँ ना बीज जनित रोग होते थे, है ना। तो बीज जनित रोग झन हो एक संगे संगे एक ठन और रोग होते जैसे हम मिट्टी जनित रोग कथन मृदा जनित रोग। तो दो प्रकार के रोग प्रमुख रूप ले होते हालांकि मौसम जनित घलो होते कत्यो कन्हा।

0: लेकिन दो प्रकार के प्रमुख रूपले होते हैं। बीज अच्छा नहीं है आपके, उपचारित नहीं करे हो आप बीजला, जिसे बीज कमजोर है वो बीज लेते पौधे जागे बार तो जागी, लेकिन ओकर से जो फसल तैयार हो ही वो मजबूत नहीं हो, रोग ले लड़े को मैं क्षमता नहीं रहे, वो बाढ़ जाए तो मैं अच्छा ढंग से फलन नहीं आए। तो यही एक प्रकार के बीज जनित रोग हरे, लेकिन कोनो विषाणु जीवाणु वायरस का कहते होला फफूंद चिपके है पहले ले तो वही ओकर संगे संग बाढ़ी वातावरण मिल के मिली तहन होला, तहन ओकर बाद फिर वह बीमारी पैदा कर ही है ना।
1: जैसे कि बताए ना कि कीट के सेती है ना रोग हो जाते या माटी जनित रोग हो जाते, तो वो दोनों ला विशेषज्ञ मन की थे कि डाइकोटर्मा वीडे ले कर सकते थे और ये उखर प्रबंधन कर सकते थे। और डाइकोटर्मा वीडे ले कई लाभ इसे विशेषज्ञ मन बताते, जैसे कि जड़ सलन तनागलन और उकटा जैसे रोग है ओला एम से नियंत्रित करते और पौधा के जड़ विकास ला बढ़ाते। संगे संग डाइकोटर्मा वीडे माटी के स्वास्थ्य ला तको सुधार करते, ये रासायनिक फफूंद नाशक के जरूरत ला तको कमती करते और फसल में वृद्धि करके उत्पादन ला बढ़ाते।
0: जो पौधगलन रोग होते है ना, ये एकर से निजात पाना है। जैसे अभी टमाटर के थरहा लगा देते हैं या धान के थरहा लगा देते हैं, ज्यादा घना होते तहन ना देखबे खाली डहन गले चालू हो जाते और पेड़ अपने अपन गिर जाते, एकर से हमारे थरहा खराब होते। और हम सोचथन कि ज्यादा घना हो ही का, लेकिन ऐसे नहीं है, ये हा मिट्टी जनित जो रोग है ना, जेला हम पौधे वाला रोग कथन ओकर सेती होते। अब एकर से निजात पाना है तो भाई पहले तो आपला बीजला उपचारित करे लागही, दूसरा जेन माटी में बोआ था वह ट्राइकोडर्मा वीर्डिस उपचारित करे लागही आपला, और कतका मात्रा में करना है कैसे ढंग के करना है एला विशेषज्ञ मन बेरा बेरा बताते है ना।
1: जैसे बताए ना कि विशेषज्ञ मन बताते कि बीज उपचार कैसे करना है, तो मन बताते कि 1 किलो बीज में 4 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीर्डिस मिला के उपचार करे जा सकते, एकर ले बीज और अंकुर रोग ले बांचे जा सकते है ना। वैसे अगर माटी के उपचार करना है तो ओखर बर 2.5 से 5 किलोग्राम ड्राइकोटर्मा ला 50 से 100 किलोग्राम गोबर खातू में मिला के 7 से 10 दिन तक छाव में रख के बाद में ला खेत में बगरा देना चाहिए, ऐसे विशेषज्ञ मन सलाह देते। और पौध जड़ उपचार बर विशेषज्ञ मन बताते कि रोपा लगाए के पहली पौधा के जड़ ला ड्राइकोटर्मा घोल में 20 से 30 मिनट डुबो के रखना चाहिए।
0: जैसे हमन टमाटर के थरहा लगाते हैं, मान लो टमाटर उखाड़ रहे हैं, उखाड़े के बाद हम लोग खेत में बोना है या अपन बाड़ी में बोना है, तो वो ट्राइकोडर्मा वीर्डी के घोल तैयार करके वो में आधा घंटा कम से कम डुबा के रखे रहे छाव में, तो ओकर से का है वो पूरा ओकर ऊपरी परत में पूरा जम जाते हो। अब ओला लगाबे तो एक तो जड़ मजबूत भी करते हो, माटी में कोनो रोग है तेकर से रक्षा करते होकर, और सबले बड़े बात ये है कि कई प्रकार के रोग से वह हमारे पौधा बचाते हैं। तो पौधा जब स्वस्थ रही अच्छा से ओकर जड़ जतका ज्यादा फैली जमीन के अंदर उतना जल्दी जल्दी बाढ़ी और हमारे फलन अच्छा है, तो ये सब फायदा है उपचारित करे के।
1: तो ये रकम ले देखा निर्मल, तो ड्राइकोटर्मा वीडे के खरीफ फसल में रोग प्रबंधन के एक सस्ता सुरक्षित और पर्यावरण मित्र उपाय हरे, एखन नियमित उपयोग ले माटी के उर्वरता बढ़ते, रोग कम होते और किसान मल्ला ज्यादा उत्पादन मिलते।
0: तो किसान भाई मान लीजिए चाहिए जब भी कोनो बीज बोवा है तो पहले उपचारित करें, बीज उपचार करें और संगे संग माटी के घरों उपचार करना बहुत जरूरी है। सुनथन ये संदेश, ओकर बाद फिर आगू और चर्चा करबो।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: नीतू भाई, संदेश तो बढ़िया रही से। अब देखो का है कि हम अनत्ताकन वोट बात करें।
8: हाँ।
7: किसान मन खेत डहार सिधार चुके हैं, गर्मी कतको रहा है, किसान के हाड़ा भिलई के तिपत लोहा।

0: अभी सुनत रहें सुघर गीत जीवनदास सिंधे ओखर संगवारी के स्वर में।
1: नीतू देख, अभी 1 जून से 30 जून तक चलत है विशेष अभियान, जला हमन खेत बचाओ अभियान के नाम ले जानथन। अब खेत बचाओ अभियान काबर चलत है, काबर की हमर माटी के गुण ऐसे होते जिन कठोर होवत जात है। और कारण है अंधाधुन रासायनिक खाद के उपयोग और रासायनिक दवा के उपयोग। एकर से हमर जो खेत में उपजाऊपन है या खेत के हमारे जो मित्र कीट है वो नष्ट हो जाते हैं, और एकरे कारण हरे की केचुआ वेचुआ जब खत्म होंगे तो हमारे खेत की माटी कठोर हो जाते
0: हैं।
1: कहूँ एकर से हमें बचना है तो भाई जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ऐसे है कि खेती के आधार हवे हवा पानी माटी, तीनों ला सुरक्षित राखबो ना निर्मल तो निश्चित ही अवैया पीढ़ी भर जिन खेत है वो बाची। और कहते ना खेत बाची तभी मानव बाची भाई, खेती के आधारे हरे। तो एखर से ती हमार विशेषज्ञ मन बताते कि अभी जिन अभियान चलावा थे वो मन हमार जिन कृषि वैज्ञानिक है वो मन जा जाके गाँव मन में कृषक मन ला बताही कि कैसे खेत

0: बचाए सकते जैविक कृषि करके या रासायनिक जन दवाई है ओखर कमती से कमती उपयोग करके ओमन ह खेत ला कैसे बचा सकत हे और वैसे कौन से तरीका है जेखर ले ओमन ह उत्पादन बढ़ा सकत
1: एकर संगे संग कतको किसान ऐसे है जिन अनुभवी है और जेकर मन के चर्चा बहुत दूर दूर तक होते जेमन जैविक खेती करके अच्छा लाभ कमात है, जेमन नवाचारी कृषक के रूप में हमारे सामने आए हैं, युवा कृषक के रूप में हमारे सामने आए हैं, ऐसे किसान मन के अनुभव घलो किसान मन तक लेके जाए जाही और ओकर अनुभव ले बाकी किसान मन घलो सीख के अपन खेती किसानी सुघर ढंग ले बनाए के प्रयास करें। तो बहुत सुंदर अभियान है, किसान भाई मन जुड़े और पता करे कि अपन आस पास कहाँ है अभियान जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी मना है, अपन समस्या के समाधान खोजें और जैन समस्या आपके खेत में आवत है वो समस्या दुरिहाय आप संगे संग प्रयास करो।
0: निर्मल ऐसे है कि जैसे बात करे ना कि अभी किसान भाई मन ज्यादा से ज्यादा रासायनिक दवाई या रासायनिक खातु के उपयोग करते ना तेखर पाए के पर्यावरण समस्या दिनों दिन बढ़त है। पेड़ के कटाई, खनन, ऊर्जा के ज्यादा उपयोग, चराई, पानी के बर्बादी जम्मो हमला पाछू धकेला थे। आज चारों मुड़ा प्रदूषण और बिजली पानी के समस्या हमला देखे बर मिलते। अगर अभी हम नई चेतबो तो निश्चित ही अवैया बेरा में बहुत ही समस्या
1: बिल्कुल खड़ा होने वाला है।
0: देखरे पाए के विशेषज्ञ बताते हैं कि पेड़ लगाना, बिजली पानी, माटी, पेट्रोल, हवा बचाना है, स्वच्छ रखना है हमारे पर्यावरण ला। और अब तो थोकिन दिन में बरसात आने वाला है तो ए बेरा में सबले अच्छा पर्यावरण ला बचाए के दिन हरे कहना चाहिए। पेड़ तो लगाबो, फिर जो वर्षा के पानी है वो ला संरक्षित हम कर सका था।
1: बिल्कुल नीतू बने कहा था, वर्षा जल संरक्षण किसान में ज्यादा अच्छा कौन कर सकते है ना, लेकिन वर्षा जल संरक्षण कैसे करना है और संगे संग शून्य भू परिष्करण कैसे करना है, ये आज के हमार आज के सलाह के विषय है। तो आवाज सुनथन वार्ता, वार्ताकार है डॉक्टर के साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान रायपुर।
2: नमस्कार जम्मू किसान भाई बहनी मन, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, आप मन मैं आज बताऊं कि कैसे हमर छत्तीसगढ़ में वर्षा के जल प्रबंधन है वो कैसे करें, ओकर कैसे हम लाभ ले सकत हन, और जो शून्य भू परिष्करण का है जिला जीरो टीलेज कथे, हमर छत्तीसगढ़ में बारिश होते वो अतका होते कि हमर धान के खेती के अलावा दूसर फसल के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बारिश होते, लेकिन आवश्यकता ये बात के है कि अगर यदि हम सही प्रबंधन नहीं करबो तो हर तीन चार साल में हमन देखथन कि हमर धान के जो खेती है वहू में अकाल के जैसे स्थिति बन जाते। एकर कारण ये है कि वर्षा के मात्रा तो पर्याप्त मात्रा में बारिश हमन ल मिलते, लेकिन उकर जो वितरण है एक घाव में कतका पानी गिरना चाहिए उकर सही एक नियंत्रित व्यवस्था नहीं है, वो कभू कम गिर जाते कभू ज़्यादा गिरते। तो जो हमर धान के तीन चार जो प्रमुख अवस्था है क्रांतिक अवस्था कथे, जैसे आपके ब्यासी के समय हो गए, आपके कंसा फूटे के अवस्था हो गए, दाना भरे के, फूल आए के, गभोट के, तो ये सब जो स्थिति होते वो अवस्था में यदि पानी एक बार भी पानी के कमी पड़ते या कई घो बोए के समय ही पानी कम हो जाते, तो ये जो पानी के कमी है वो आपके फसल के उत्पादन में बहुत विपरीत असर पड़ते, और बाद में चाहे ज़्यादा पानी गिरे ऊपर से मतलब नहीं है। तो औसतन वर्षा जो है वो तो 1200 मिलीमीटर हमर होते तो वो काफ़ी पर्याप्त है कि दो फसल लिए जा सकत। तो ये परिस्थिति में अब हमन आइए हमन किसान भाई मन ये विषय में चर्चा करबो कि वर्षा के जल प्रबंधन छत्तीसगढ़ में कैसे करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के तीनों प्रकार के जो भू परिस्थिति है, चाहे वो बस्तर के पठार हो, छत्तीसगढ़ के हमर मैदानी भाग हो, या सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र, तीनों में जो सबसे सरल और प्रभावी तरीका है वो डबरी निर्माण। तो डबरी जो है हमर पुराना परंपरागत ढंग से हमर किसान भाई मन इला जानत हैं कि बड़े बड़े किसान मन गांव में बड़े बड़े डबरी बनाए, 2 एकड़, 4 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ के भी डबरी रहे, और ये डबरी के निर्माण उमन वो अकाल के समय में अपन गांव के और किसान भाई हैं उमन भूखमरी के शिकार ना हो करके जो वहां के पुराना गौटिया है, जमींदार हैं, माल गुजार हैं, उमन अपन बड़े किसान मन करे रिन हैं और ओकर उपयोग होत रही से, लेकिन जैसे जैसे नहर या ट्यूबवेल के नलकूप के प्रचलन बढ़ीस, सुविधा बढ़ीस, तो डबरी के उपयोग धीरे धीरे नंदात गईस। और ये सिर्फ बड़े किसान मन बनात रिन है। तो ये विषय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 1990 से अनुसंधान प्रारंभ हुई, जो 2005 तक उम काफ़ी अनुसंधान चलीस, विकास हुईस, किसान मन के खेत तक हमन वैज्ञानिक मन पहुँचेन। और ये निष्कर्ष निकलीस के यदि भूमि जत का भी रकबा है, जैसे 2 एकड़ 2.5 एकड़ के किसान हैं, तो 8 से 10वां हिस्सा जो है ओला हम यदि अपन डबरी निर्माण के लिए निकालबो, जैसे 30 मीटर बाई 30 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर गहरा अपन यदि डबरी के निर्माण करबो, तो वो 1 हेक्टेयर के खेती में वो उपयोगी होतरी से। तो ये अनुसंधान में पाए गई, तो एमा का है कि जो छोटे छोटे डबरी है ओकर उपयोग से हम वर्षा जल के पानी लो में इकट्ठा कर सकत हन, और ओकर बाद जब 1 या 2 पानी के कमी हुई तो ओमा हम सिंचाई करके ओकर जो एकत्रित जल है ओकर सिंचाई करके हम फसल बचा सक। और ये भी पाए गई इस अनुसंधान में कि यदि वर्षा सामान्य गिरत है और आखिरी में हमर करे डबरी में पानी बचे हुए है, तो वो पानी से हम वर्षा आधारित जो दूसरा फसल है वो हूल ले सकत। तो ये डबरी के निर्माण जो है हमन ल करना चाहिए। और किसान भाई मन ल तो मैं अतके चर्चा करी हूँ कि कोनो साल अकाल है, वो साल आप मान लो कि हमारे यहाँ दुकाल है, और वैसने मेहनत करो, कम खर्चा करो, अपन खर्चा से भी स्वयं के खर्चा से आप डबरी निर्माण करिए, भविष्य आपके उज्ज्वल रही। शून्य भू परिष्करण का है, जिला जीरो टीलेज कथें, मतलब ओमा खेत के जुताई जो हमन गहरी जुताई खास कर कहन, वो गहरी जुताई के तो कल्पने नहीं है, उमा बिल्कुल मना है वह। और एमा ये जो जीरो टीलेज है ये कृषि के आधुनिक तकनीक है, एमा बिना खेत ल जोते जो पहली हम फसल ले रहे हैं ओकर अवशेष के बीच में ही हम जो बीज ल सीधा बुआई कर देथन मशीन के द्वारा, वो तकनीक ला शून्य भू परिष्करण या जीरो टीलेज तकनीक कथें। और ये तकनीक जो है वो खासकर जीरो टील सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बोए जाते, तो एमा लाइन से हम जो बीज ला बोथन, एमा हमार बीज के बचत भी होते, और जो भूमि के जो अधिक ज़्यादा टीलेज करे से या जुताई करे से जो भूमि के गुणवत्ता में विपरीत असर पड़त रही से ओकर से भी बचाव होते। और ख़ासकर जो हमर जो वर्षा आधारित क्षेत्र है जिसमें पानी के कमी है और हमर पोषक तत्व ऑर्गेनिक कार्बन के कमी है, वहाँ ये दोनों के समस्या से निपटे बर ये जीरो टीलेज तकनीक है बहुत उपयुक्त पाए गए हैं। और एमा जो अतिरिक्त जो अनावश्यक जो जुताई है उकर खर्चा से भी बचत होते। अब तो एमा 2 प्रकार के चीज़ हम देखें कि जैसे मान लो लागत और समय में बचत, ये सबसे मुख्य एकर आकर्षण है कि पारंपरिक जुताई करे में ईंधन है, श्रम है और समय है, ओमा बहुत कमी आते। और ये जो कमी होते तेन है हमर 2000 से 2500 रुपया तक के 1 हेक्टेयर के पीछे किसान भाई मन के बचत भी हो जाते। तो ये आम के आम गुठली के दाम भी कह सकत हन। वैसने मिट्टी के संरक्षण का है, बिना जुताई के मिट्टी के नमी जो है वो बने रहते, ओमा ओकर नुकसान नहीं होए। खासकर जैसे धान के बाद हम रबी फसल ले थन तो और कम सिंचाई है या वर्षा आश्रित हम खेती करत हन, तो ओमा हमर नमी के बनाए रखना भू नमी वो जरूरी है। और एकर से भूमि के कटाव में कमी आते, मतलब ज़्यादा आप जोत दे है तो मिट्टी है पानी के साथ घूल के भूमि कटाव ज़्यादा होते, तीनों में भी रुकावट पैदा होते, उमें सुधार होते और हमर मिट्टी है कम कटाव से नुकसान ओला खेत ल पहुँचते। और एकर अलावा एक और विशेष बात है कि एकर से जैविक कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी हमार खेत में ज़्यादा बने रहते। और खरपतवार जो है ओकर चौड़ी पत्ती के खरपतवार के भी कमी होते और हमार एकर से जो नुकसान है खाद के जो उपयोग हो कर लेतरी से ओकर से बचत होते। अवशेष जो के सदुपयोग भी कर सकत हन, जैसे हमार पुराना पिछला फसल के अवशेष है ओला बिना जलाए हम जुताई करे बर जब शुरू करथन तो वो हर एक प्रकार से मल्चिंग के भी काम करते और वह खाद के भी काम करते। और जैसे हमार जो पराली है हमार धान के जो पैरा है डंठल है वो जो बचे है ओला बिना जलाए भी हम खेती कर सकत हन, तो एकर से प्रदूषण में भी कमी होते और हमार भूमि के स्वास्थ्य भी है सुधरते, उकर पोषक तत्व में ज़्यादा संरक्षित होते। और एकर लिए एक चीज़ आऊ है कि कौन से प्रकार के मिट्टी है कौन सा फसल है ये भी भू परिष्करण में विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। तो आइए हमन ये चीज़ में चर्चा करें हन। तो आप मन यदि धान के बाद दूसर रबी फसल लेत हो तो शून्य भू परिष्करण तकनीक के आप उपयोग कर सकत हो।
0: संगवारी अभी सुनत रहें जानकारी वर्षा जल संरक्षण और शून्य परिष्करण विषय में। जानकारी देबर हमर बीच रहने डॉक्टर के साहू, वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विभाग रायपुर ले।
1: अनितु भाई सूचना है संगवारी मन पर, संगवारी हो अवैया मंगलवार 9 जून 2026 के प्रसारित होइया हलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही वर्षाकालीन सब्जियों की नर्सरी। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर कमल नारायण वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमारे फोन लगा सकत हो। हमारे पहली फोन नंबर है 4003-482-4003-483, ये है हमारा दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर है 4003-484, रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 9 जून के बिहनिया 11:30 लेके 12 के बीच करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण वही दिन यानी मंगलवार के संझा 7:30 में करे जाही। हम अल्लाह आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही, सूचना यही मेर सिरावत है। और नीतू देख भी सूचना घलो हो गए संगवारी मन पर, गोड बात घलो हो गए। अब आप संगवारी मन हाँ तैयार हो ही काफी पेन लेके आज के प्रश्न लिखे बार। तो भाई कृषक प्रश्न मन शुरू करथन, बता दे हमारे संगवारी मन ला आज के हमर का प्रश्न है।
0: तो संगवारी हो लिख लो आज के प्रश्न। आज के प्रश्न है के मीटर लंबा चौड़ा डबरी निर्माण करे ले 2.5 एकड़ खेत के सिंचाई करे जा सकत है। एक पैत और सुन लो संगवारी हो, के मीटर लंबा चौड़ा डबरी निर्माण करे ले 2.5 एकड़ खेत के सिंचाई करे जा सकत है।
1: अब ये प्रश्न के जवाब हमारे तीर ईमेल के माध्यम ले 1 हफ्ते के भीतर पहुंच जाना चाहिए। जवाब भेजे पर हमारे ईमेल पता है raj@gmail.com। इला अच्छा से सुन ले raj@gmail.com। और नीतू अब बता दे संगवारी मन ला पाछू हफ्ता पूछे गए सवाल और कर सही जवाब।
0: पाछू हफ्ता पूछ रहे हैं संगवारी हो हमन ला कि कौन कौन से कृषि यंत्र के उपयोग करे जाते, कौन कौन से कृषि यंत्र के उपयोग कृषि में करे जाते। ये प्रश्न के सही उत्तर आप मन हा लिख के भेजे हो। एक उत्तर है ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीडलिंग, प्लांटर, ये जम्मो कृषि यंत्र के उपयोग कृषि में करे जाते। और ये प्रश्न के सही सही उत्तर कौन संगवारी मन भेजे हैं निर्मल बता दे।
1: एकर जवाब तो संगवारी मन लिखे है नीतू, और अलग अलग प्रकार के जवाब संगवारी मन लिखे है, जैसे कि कुदारी है, रापा है, यहू मन है शामिल, मतलब कतको अकन कृषि यंत्र है, लेकिन मुख्य मुख्य रूप जो संगवारी मन लिखे है जितने बता है पिछने, तो ये संगवारी मन बठेना पाटन जिला दुरुगले बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, बंटी, बबली वर्मा, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले हैं कमल कान मरावी, प्रमिला, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, तेंदुभाटा मंगलौर जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद,

0: महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन, दिव्यांश, भूपेश, शिवा, निषाद, कांकेर, संबलपुर लेह, फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव, परसाटोला, अम्बागढ़ चौकी लेह, ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारनी, खुमेंद्र मसिया, मदनपुर कवर्धा लेह, श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और गर्रापार बांधा बाजार लेह, गंगाराम साहू, सुलोचना, मानवेंद्र, राकेश साहू। तो सही जवाब भैया जम्मो संगवारी मतलब हमार कोती ले कोरी कोरी बधाई। एरी संगवारी हो कृषक प्रश्न मंच के अंतर्गत आज के प्रश्न, तो आज के प्रश्न ही मेरे चिरावा थे, लेकिन उम्मीद है कि आप मन हाँ ये बखत अब बड़ा कन मेल के माध्यम ले हमार ला सही जवाब भेजो और ये कार्यक्रम में अपन भागीदारी सुनिश्चित करो।
1: निर्मल, ऐसे है कि बात करत रहे शुरू में हमन हा पर्यावरण ला बचाए के है नहीं, जब मैं अपन बताएं भी कि जैविक खेती करना चाहिए, पानी के बचत करना चाहिए, फिर आऊ का हमार संगवारी मल्ला अभी के बेरा में इसे का काम करना चाहिए।
0: देखो सबसे मैं बता सकता हूँ, पहली बात जिनमें करा था अभी है ना, थोकिन मेन चौड़ा करवाए हमें यहाँ काबर का वो में नींबू लगाना है मोला भी।
1: हाँ।
0: काबर पहली नींबू पेड़ तेरा मर गए, काबर मरीज तेरा इस बात इसे कि फफून हो जाते जमीन के अंदर और फफून हो जाते तो जड़ ला वहा खत्म कर देते, पेड़ पुराना भी हो गई से कतको जन सोचते कि हमारे पेड़ ला कोनो हा काकरो नजर लगे कैसे हाँ, नहीं है
1: कुछ काहे कर दी हाँ, थे
0: मिट्टी में फफूंद थे और मट्टी जनित रोग वाला लग गए तेकर से पेड़ हा सुखा गए और मर गए। लेकिन अब लगाना नींबू, पपीता लगाना है, छोटे किस्म के मतलब सीताफल लगाना है, जामुन लगाना है, आम लगाना है, पपीता लगबे करते, केला हावे एक कोंटा में और गजब के फर थे और कतको झन मन तोड़ के ले जाते अलग बात है, लेकिन हमारा लगाना है कि जन मन सोचते खेत में बाहर में रहे कोनो तोड़ भाई लगा देते हैं तोरो बार बाछी
1: माटी तो सुरक्षित है बाछी
0: और सब जन लगाबो अपन अपन खेत में कक दो दो पेड़ ना तो सब जन घर हो ही और नीतू एकर से अच्छा आमदनी है। तो एक पेड़ आम हो गया आपके अच्छा मीठा वाला और आप तोड़ के या फिर आचारी आम है बोला आप थोड़ा था तो कम से कम 20-25 क्विंटल तक आम निकलते। अब सोचो उत्कल बाजार में बेचो आप तो 10,000 तो फायदा हुई एक पेड़ ले, दो चार पेड़ हो गया था। इसने गर्मी के समय जब हमारे कुछ काम नहीं है तब हम देखते हैं सड़क किनारे किनारे कतको झन किसान मन बढ़िया अपन पेड़ के पके आम ना लेके सड़क किनारे बैठते और बेचते वाला उसने चना बूट लगा लो बेचते
1: इमली है
0: उसने कंद मला भी बेचते बैठ के और अवैया जो है मन खड़ा हो के लेते काबर एकदम शुद्ध मिलत होला डायरेक्ट किसान से मिलत होला तो दो पैसा सस्ता भी मिलत है और किसान लगा लो दो पैसा फायदा हुआ थे सीधा सीधा बेचे से। तो ये फायदा हमारा लेना है तो भाई अपन खेत के मेड़ के उपयोग भरपूर करना है।
1: ऐसे है निर्मल, बात करें ना कि आमा के या कोनो भी फल के एक फल के पेड़ हो जाए तो आमदनी हुई, वैसे पपीता के बात करबे ना तो अगर पपीता के फल देखबे ना तो ते देखबे नीचे पाकथे पपीता है नहीं और एक एक करके पाकत जाते तो रोज ओलते तोड़ सकत हस और रोज तोड़ के ओला बेच सकत है हमारे किसान भाई, माने निश्चित रूप से अगर रोज आमदनी पाना है तब पपीता के पेड़ एक बहुत अच्छा साधन हमारे किसान भाई बन बार हो सका थे।
0: बिल्कुल सही कहे सो हम तो भाई लगा है अपन घर के खाए बल लगा है और दूस पड़ोसी मन घलो सगा जाबे ना कहूं डहन दू ठन तोड़ के रख ले पर दम ले नहीं लागे तो वो पैसा बच जाते।
1: और पपीता ना स्वास्थ्य पर तक बहुत अच्छा रही थी कि थे है ना, सस्ता सुलभ बढ़िया फल हरे की थे है नहीं। अब ऐसे है निर्मल की गोड़ बात तब बढ़ हो गए हैं, फिर मनोरंजन के बेरा है और संगवारी मल्ला सुनाथन सुघर गीत आमची रिबाई और राम कुमार अग्रवाल के स्वर्मा।

0: तो संगवारी हो, इस उघरा कन गीत ला सुनते हैं अभी अपन सोले सजारी रामचिरी बाई और राम कुमार अग्रवाल। और नीतू एक ठन पेड़ छूटत रही से मेड़ में लगाए बार, और हाँ। हरे यह ऐसे जगह लगा जे जहाँ जेकर छैया और हर जाए मत है ना, बहरी डहा रहा है यानी बाहरी मेड़ में लगावे तो अच्छा है। और ये हरे मुनगा के पेड़
1: हाँ।
0: जेकर कहूँ कहूँ हमन कभू कभू कुछ जलात रहन हमन हाँ है ना काजरी कचरा मल्ला और धुआं पर्याप्त मिलना चाहिए। तभी कहा है श्याम पहली ना ओला रसोई घर के आसपास लगा रहे देखबे, धुआं पर्याप्त चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होला, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम ओकर से लेके अच्छा फलन हो सके कहीं के। तो मुनगा कहूँ किसान भाई मन लगा है तो 12 महीना अच्छा फल देते, अच्छा किस्म लगावे तो और बेचबे तो अच्छा भाव घलो मिलते कर, और घर के खाए बार तो होना अच्छे बस भाजी ओकर घलो है तो भाजी छही हम सुखा कर रख ले पाउडर बना कर रख ले घर में, ओकर बाद फिर बीच बीच में ओला पियात रहे या फिर सब्जी दाल में डालत रहे तो स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा रहते। तो कुछ कुछ छोटे छोटे चीज जला हम अल्लाह भुलाना नहीं चाहिए, श्यामन बताया उन्हें चलना चाहिए। जाय खमरोमन के बेरा होते तो जाय पहले बता दे संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम
1: काली चौपाल में आज की बात के संक्रम आज की सलाहमा जानकारी सुनो। हल्दी अदरक के उत्पादन ले भरपूर कमाई, ये विषय में जानकारी दे बर हो ही डॉक्टर गुंजन झा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव ले और कृषक प्रश्न पंच और गीत संगीत के रंग तको बगर ही संगवारी हूँ। तकाली फिर भेंट हुई, तब तक नीतू शर्मा
0: और निर्मल साहुल देवा विदा। आप जमो संगवारी मल्ला हमर दोनों के राम राम, राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं रात और दिन इस फिल्म का गीत, आवाजी मन्नाटी और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हमसाया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी। ओपी नैयर का संगीत और गीतकार थे हसरत जयपुरी।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो, संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राज्य लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
3: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
4: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलकर मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
3: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
4: मेरा सहयोग दिए।
3: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
4: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
3: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
4: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
3: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
4: सर बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहां कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहे अभी वाला जो पर से हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
3: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
4: सर मैं पहले माइक्रोवाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रोवाटर शेड में काम किया, माइक्रोवाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके

0: नीचे करेंगे उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी अपने कार्ययोजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी,
0: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां हैं, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ताह में हम जैसे हम लोग पूरे गांववासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर, मैं उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी कर्म शासन काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घरे में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है। मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी,
0: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हरेक व्यक्ति तक पहुँचे के लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाइए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों में जो खास खबरें रखी हैं उनके बारे में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो जो

0: की हेडलाइंस हैं, उन पर नजर डालते हैं। अलेक्जेंडर ज़वरेव और फ्लेवियो कोबोली के बीच फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स फाइनल जारी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने उलानबाटोर ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल खिताब जीता। फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पकड़ और मजबूत की। पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 451 रन आगे। और संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण का देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजन। खेल, सिनेमा और राजनीति की दिग्गज हस्तियां शामिल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ज़वरेव अपने करियर का 4th और कोबोली अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक ज़वरेव ने पहला सेट 6-1 से जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चवालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
1: 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में माया चवालिंस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसी के साथ 8वीं वरीयता प्राप्त रूस की खिलाड़ी साल 1992 में मोनिका सेलेस के लगातार 3रा खिताब जीतने के बाद से पेरिस में सबसे युवा महिला सिंगल्स चैंपियन बन गई हैं। स्टेड रोलैंड गैरोस में 1 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में इस युवा खिलाड़ी ने 6-3, 6-2 से बाजी मारी। एंड्रीवा ने पूरे खेल में शानदार संयम दिखाया जो उनके खेल की पहचान बन गया। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। कड़े मुकाबले वाले शुरुआती सेट से आगे बढ़कर उन्होंने 6-3, 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने युवा करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता और फ्रेंच ओपन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जीत के बाद एंड्रीवा ने कहा कि इस टूर्नामेंट को जीतना हमेशा से उनका सपना रहा है।
2: Congrats to Maya for these amazing 3 weeks, passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well. You're a very tricky opponent. I wouldn't want to play against you one more time. So I wish you the best of luck for the rest of the season and hope we play many, many more finals together in the future. I want to thank myself for believing in myself, always giving my 100%, even when it's tough.
1: जीत के बाद भावुक एंड्रीवा जश्न में कोर्ट पर गिर पड़ी और फिर अपनी कोच कोंचिता मार्टिनेज को गले लगाया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 और 1994 की विंबलडन चैंपियन मार्टिनेज ने एंड्रीवा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात करते हैं कुश्ती की। मंगोलिया के उलानबाटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के ओसिम जान दस्तान बेग और विक्की ने 97 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के गंग खुयान गन बटेर को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने 7 वर्ष बाद सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। गोवा के मडगांव में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार इस खिताब पर कब्जा किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने आत्मविश्वास से भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को खेल के हर मोर्चे पर शिकस्त दी। मैच के 42वें मिनट में प्यारी खाखा ने पहला गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के अंतिम क्षणों में बांग्लादेश की ऋतुपूर्णा चकमा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के शुरू होने के सिर्फ 40 सेकंड ही हुए थे कि भारत की सनफीदा नोंगरम ने ब्लू टाइग्रेस को फिर से बढ़त पर ला दिया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिंडा कॉम सर्टो ने 82वें मिनट में गोल करके मेजबान भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद जैसे ही खेल समाप्ति की सीटी बजी, भारतीय टीम और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। पूरे टूर्नामेंट में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सनफिदा नोंगरम घुटनों के बल बैठ गई और अपनी साथी खिलाड़ी डैंगमी ग्रेस को गले लगाया, जिन्होंने मैच के बाद संन्यास की घोषणा की। साल 2013 में अपने करियर की शुरुआत के बाद से भारतीय महिला फुटबॉल की इस दिग्गज खिलाड़ी ग्रेस ने 95 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और अपना तीसरा सैफ खिताब जीतकर शानदार अंदाज में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। ये जीत मेजबान टीम के लिए एक शानदार अभियान का समापन थी, जिसने अपने चारों मैच जीते। इस दौरान 18 गोल किए अविका सिंह 4 गोल के साथ प्रतियोगिता की शीर्ष स्कोरर रही। सनफिदा नोंगरम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जबकि पंथोई चानो इलांगबम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। नेपाल की टीम ने फेयर प्ले पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई नेताओं तथा खेल प्रेमियों ने भारतीय महिला टीम को एक ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और श्रोताओं, फुटबॉल के बाद अब आप लोग ले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान में। न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.747 सेकंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। ये उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले कल शैली सिंह ने लंबी कूद और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
4: न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जीत का सिलसिला जारी है। भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ नया मीट रिकॉर्ड भी बना लिया है। श्रावणी नंदा, एसएस नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की टीम ने ताइवान के बानकियाओ स्टेडियम में शानदार 44.07 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान पर अपना कब्जा जमाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पिछला मीट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिले में जीत के अलावा लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। शैली ने 6.24 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया और अपने प्रतियोगी से आगे रही। उन्होंने मीट में भारत की पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। भारत के तेजस सिरसे ने भी ट्रैक पर प्रभावित किया और पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय वुमेन्स रिले टीम ने भी अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां भारत ने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते थे। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान पर पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने आज 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। तो सुनते हैं मैच के दूसरे दिन का हाल।
5: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी मेजबान भारत के नाम रहा। भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को दिन का पहला झटका अपना शतक पूरा कर चुके कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 177 गेंद में 126 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने भी 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी। इससे पहले मैच के पहले दिन केएल राहुल ने शानदार 100 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 6 विकेट, जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्ला साहिदी ने 1-1 विकेट लिया। इसके बाद भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अभी भी भारत से 451 रन पीछे है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात रविवार के दिन साइकिल पर फिटनेस की सवारी की। आज देश भर के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल के आयोजन में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर फिट रहने का संदेश दिया।
6: We'll be right back. विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के जे

0: एन स्टेडियम में किया गया। इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, मुक्केबाज नुपुर शोराण और एक्टर मॉडल रागनी द्विवेदी शामिल हुई, जिन्होंने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एक पहल से शुरू हुई यह मुहिम आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।
1: संडे ऑन साइकिल का आज 77 एडिशन है। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी, आज देश में 10,000 स्थान पर हुई। देश के नागरिकों को एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आसानी से उपलब्ध होती है और कई समस्या का समाधान हो? ये साइकिल है। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मेंटली फिट रहते हैं, फ्यूल का बचत होता है, प्लेनेट शुद्ध रहती है। तो इतनी सारी चीजें एक साइकिलिंग करने से समाधान देती है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें।
0: फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि रविवार की यह सुबह उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना बेहद आवश्यक है।
2: 1.5 साल से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, संडे को साइकिल का, हर हफ्ते होता है, कई शहरों में होता है। आज के दिन अगर आप पूछे तो कम से कम 400 शहरों में चल रहा है। तो देखिए, सेहत के बारे में सब जानते हैं कि रियल सक्सेस इज गुड हेल्थ, और सक्सेस के महीने बदलते रहते हैं, पर ये एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी। तो प्लीज फिट रहें, और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे।
0: इस अवसर पर मुक्केबाज नुपुर शोराण ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। नुपुर ने कहा कि सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए समय निकालकर 10 से 15 मिनट साइकिल जरूर चलानी चाहिए।
3: संडे और साइकिल जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो मैंने आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक है आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज है, फिजिकल भी फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए।
0: दिल्ली के अलावा मुंबई, भोपाल, जम्मू और बीकानेर में भी लोगों ने सुबह साइकिल की सवारी करते हुए फिटनेस का संदेश दिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
4: और अब चर्चा योगासन की। गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे अधिक पदक जीतकर भारत तालिका में शीर्ष पर है।
5: पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कुल 30 मेडल जीतकर मेडल टैली में अपना दबदबा बनाए रखा है। इसमें कुल 24 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि सिंगापुर 6 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। योग में जबरदस्त स्किल, डिसिप्लिन और बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय योगा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया और इस खेल में ग्लोबल लीडर के तौर पर देश का रुतबा मजबूत किया। इस चैंपियनशिप में 75 देशों के 500 से अधिक योगा खिलाड़ियों हिस्सा ले रहे हैं। 4 जून से शुरू हुए इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप का कल आखिरी दिन है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 254 रन का लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रुक के 56 रन की पारी के बावजूद पहली पारी में 140 रन बना सकी थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में 113 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त मिली थी और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एमिलो गे के 57 रन की मदद से 256 रन बनाए थे। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स फाइनल खेला जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव और इटली के फेवियो कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। तो श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्पोर्ट्स कैन इसी तरह आप सुनते रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो sportscan@sportscan.air@gmail.com पर भेजें। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
8: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
6: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित

0: मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
5: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said, India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
4: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy as well as generate employment opportunities. Ms. Paul said strict measures will be taken to improve urban infrastructure and cleanliness. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and the government of West Bengal will sign a memorandum of understanding tomorrow for the implementation of the ABPMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, and West Bengal Chief Minister, Suvendu Adhikari. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said the Narendra Modi government has transformed India in the past 12 years into an aspirational nation driven by opportunity, innovation and self-belief. Speaking to media, Dr. Singh said governance reforms, technological democratization and citizen-centric policies have fundamentally changed the way people of the country view their future prospects. He said India's space economy, currently valued at nearly $9 billion, is expected to grow to about $45 billion over the next 7 to 8 years. He added that the startup ecosystem has expanded from around 400 startups in 2014 to more than 2.3 lakh at present, generating nearly 25 lakh jobs. Lok Sabha Speaker Om Birla today asserted that the vision of Viksit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation building must progress hand in hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility and active citizen engagement. Highlighting the role of the youth in shaping the future, Mr. Birla stated that educated, skilled and technologically enabled young people constitute the greatest strength of Viksit Bharat 2047. He urged the younger generation to embrace

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये था फिल्म राजकुमार का गीत।
1: वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
0: महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आवाज किशोर कुमार की।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम वंचितों को वरीयता।
1: This is Akashwani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं, तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
3: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है पहली बात, और दूसरी बात हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
4: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है, ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है, और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
3: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
4: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
3: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
4: बिल्कुल,
3: और इसमें मेरा ख्याल है AI की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में, तो AI और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
4: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा AI इंडिया इम्पैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
5: जी।
4: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं, तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
5: सर्जरीज में भी इसकी काफी
4: बिल्कुल
5: उपलब्धि है,
4: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में AI टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन TB अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने AI ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे AI कैसे मदद करता है कि AI टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, AI टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
5: यानी AI के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
4: बिल्कुल,
5: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
4: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नज़दीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
5: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
4: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
5: जी,
4: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
5: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
4: देखिए, TB के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, TB एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है TB के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो TB में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सघन है। ऐसे में TB मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम TB की रोकथाम से लेकर TB की जांच से लेकर TB के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। TB के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम TB की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ TB में जो उपचार के लिए दवाओं की ज़रूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जाँच के साथ साथ एक ज़रूरी पक्ष ये भी है कि TB के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर TB के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो TB के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने TB पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव TB ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये TB का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
5: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
4: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं,

0: या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए। और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके ज़िले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड 19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3rd नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14th नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेज़ी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक ज़बरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम वंचितों को वरीयता अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 10 बजने को है अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एमएसएन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रेकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एमएसएन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु। ही सर्व्ड आकाशवाणी विशाखापट्टनम एज अ स्टाफ आर्टिस्ट फॉर टू डेकेड्स। A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkataramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापु ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति बिगिंस दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापु तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृतवर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकम्पनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमन मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।